जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के हां है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम था अली और दूसरे का नाम था हसन। अली और हसन बचपन के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इस कदर गहरी थी कि गांव वाले अक्सर इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अली बहुत ही मेहनती और जहीन लड़का था, जबकि हसन थोड़ा शरारती और खुश मिजाज बच्चा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो अक्सर खेलते, पढ़ते और मिलकर वक्त गुजारते थे। इनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन अली और हसन गांव के करीब एक झील के किनारे खेल रहे थे। वहां एक बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव में बैठना बहुत आरामदेह था। अली तो बड़े मजे से जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ गया, जबकि हसन कुछ छोटे पत्थरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हसन ने अली से कहा, ये झील कितनी अजीब है, कभी कभी यहाँ आना मुझे बहुत आरामदेह महसूस होता है। अली मुस्कुराकर बोला।

हम जरूर अपनी मेहनत का फल हासिल करेंगे। हसन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, तो आपका मतलब है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे? अली ने सर हिलाया, हाँ यही सच्ची दोस्ती होती है। हसन और अली की दोस्ती का ये जज्बा दोनों दोस्तों के दरमियान हर दिन मजबूत होता चला गया। इन्होंने मिलकर स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल किए, खेलों में हिस्सा लिया और हमेशा एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश की। हर मुश्किल में अली और हसन एक दूसरे का साथ देते रहे और हर कामयाबी का जश्न मिलकर मनाते रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा खेलों का मुकाबला था। ये मुकाबला शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ था और गांव वाले बहुत खुश थे। अली और हसन ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी महारतों को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुकाबले की शुरुआत से पहले अली और हसन ने एक दूसरे की हौसला अफजाई भी की। याद रखो हसन, हमने ये सब मेहनत से हासिल किया है, अब हमें सिर्फ अपने दिल की सुनने की जरूरत है, अली ने कहा। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जानते हो ना अली, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से कुव्वत हासिल करता हूँ। चाहे हम जीतें या हारें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुकाबला शुरू हुआ। अली और हसन ने अपने अपने इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एक साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाई। जब आखिरकार गांव की टीम जीत गई तो गांव वालों ने खुशी से शोर मचा दिया। अली और हसन ने एक दूसरे को गले लगाया, हमने ये सब मिलकर किया और यही सच्ची दोस्ती है, अली ने कहा। फतह के बाद गांव के बुजुर्गों ने दोनों दोस्तों के लिए मोहब्बत और तारीफ का इजहार किया। ये तुम्हारी सच्ची दोस्ती और मेहनत का नतीजा है। तुमने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ तब मिलती है जब हम एक दूसरे की मदद करें और साथ चलें। अली और हसन की दोस्ती इस बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद और भी मजबूत हो गई। इस कामयाबी के बाद दोनों दोस्तों की गांव में शोहरत और एहतराम भी बढ़ गया था। गांव वाले इनके बारे में बात करते हुए मिसालें दिया करते थे और इनकी दोस्ती को मिसाल के तौर पर पेश करते थे। अली और हसन खुश थे कि ना सिर्फ वो एक दूसरे की हिम्मत का बाइस हैं, बल्कि पूरा गांव भी उन्हें बहुत इज्जत से नवाजता है। एक दिन अली और हसन ने गांव के बाहर चलने का फैसला किया। वहां एक खूबसूरत पहाड़ था जो उनके गांव से थोड़ा सा दूर था। दोनों दोस्तों ने उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। ये फैसला करने के बाद वो हंसते हुए पहाड़ की तरफ रवाना हुए। याद रखो हसन, इस पहाड़ पे चढ़ना आसान ना होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, अली ने कहा। हसन ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम मिलकर इस सफर को बहुत आसान कर देंगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए दोनों दोस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ता मुश्किल था और कई जगहों पर पत्थर फिसलने वाले थे, जिसकी वजह से चढ़ाई मुश्किल होती चली गई। लेकिन जब भी हसन थका हुआ महसूस करता, अली उसे हौसला देता और कहता, सिर्फ थोड़ा सा और, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत घंटों की चढ़ाई के बाद दोनों दोस्त बिलाखिर थक गए, लेकिन वो एक दूसरे पर हार नहीं मानना चाहते थे। एक मौके पर हसन ने कहा, अली मुझे लगता है कि हम मजीद नहीं जा सकते आगे, मैं बहुत थक चुका हूँ। अली ने हसन की तरफ हमदर्दी से देखा और कहा, अगर तुम थके हुए हो तो तुम आराम कर सकते हो, लेकिन याद रखो, अगर हम अभी रुक गए तो हम इस खूबसूरत मंजर को कभी नहीं देख पाएंगे। हसन ने एक गहरा सांस लिया और अली की बात को दिल पर लेते हुए चल पड़ा। वो फिर से उठा और दोनों दोस्तों ने अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचे। वहां से पूरे गांव का मंजर देखा जा सकता था और मंजर इतना खूबसूरत था कि हसन की थकान तो जैसे गुम ही हो गई। अली तुम ठीक कहते थे, अगर हम रुक जाते तो हम इस मंजर को कभी नहीं देख पाते, हसन ने खुशी से कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा,

सच्ची दोस्ती है। हमने एक दूसरे की मदद की और उसका इनाम इस मंजर की सूरत में मिला। ये लम्हा दोनों दोस्तों की जिंदगी में एक नया सबक था। उन्होंने सीखा कि जब जिंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, तो सच्चे दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इनकी दोस्ती ने उन्हें ये सिखाया कि हिम्मत, मेहनत और बाहमी मदद से जिंदगी के बड़े तरीन चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है। गांव वापस पहुंचकर दोनों दोस्तों ने अपने वालिदैन और गांव वालों को अपने सफर के बारे में बताया। सबने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। ये दोनों बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बने रहना होता है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। अब अली और हसन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। उनकी दोस्ती ने पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का नाम है, जहां मोहब्बत, एहतराम और हिम्मत मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती खुशियों के वक्त ही नहीं बल्कि मुश्किलात के वक्त भी काम आती है। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने का राज सच्ची दोस्ती है। साथियों, ये याद रखें कि सच्चे दोस्त बड़े चैलेंजेस के मौके पर एक दूसरे की मदद करके कामयाब हो सकते हैं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, अरबी जबान की कहावत है तैर बहर, इसी तरह अरब कहते हैं तैर बर, तैर हौरान, तैर सिंजार, यानी ऐसे परिंदे जो सिर्फ अपने मखसूस जगह, अपने मखसूस मौसम और अपने माहौल में ही जीते हैं। अरब सकाफत में तैर बहर उस शख्स की मिसाल है जो सिर्फ अपनी जाने पहचाने माहौल में काम कर सकता है, नए हालात, नए लोगों या नई जिम्मेदारियों में फौरन नाकाम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर उसे उसकी असल जगह से बाहर निकाला जाए तो वो न जी पाता है न कारकर्दगी दिखा पाता है। जैसे कि समंदर का परिंदा खुश्की में रह नहीं सकता और बयाबान का परिंदा जजीरे या साहिल के माहौल में जी नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में चलते हैं, बाहर निकलें तो गोया सांस ही रुक जाता है। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब किसी शख्स की सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए, मगर हकीकत ये हो कि वो सिर्फ अपने छोटे माहौल में ही फिट है और किसी बड़ी जिम्मेदारी, बड़े मनसब या नए मकाम के लायक नहीं। हमारे यहाँ भी कहते हैं घर का शेर बाहर ढेर या बाहर बिल्ली, जो भी कहें, यानी घर में मजबूत और बाहर सिफर। आज की अरबी कहावत हमें सिखाती है कि हर शख्स के अंदर कुछ खूबियां और कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन असल ताकत उस शख्स में है जो हर माहौल में खुद को साबित कर सके। सिर्फ अपनी जगह का माहिर होना कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि इंसान नए हालात का मुकाबला कर सके और जहां भी जाए अपना लोहा मनवाए। इसी वजह से अरब कहते हैं तैर बहर, अरे ये तो समंदर का परिंदा है, ये यहाँ काम आने वाला नहीं, अपनी जगह से बाहर कुछ नहीं कर सकता।

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: एस्टेब्लिशमेंट्स और अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जेर इंतजाम स्पोर्ट्स सिक्योरिटी सेक्शन ने दोहा बैंक स्टार्स लीग के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी किरदारों के इत्तेहाद के उन्वान से दूसरा सालाना फोरम मुनक्किद किया, जिसमें रियासत में खेलों की तकरीबात के इंतजाम और सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। फोरम में डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अल्फानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कतर स्टार्स लीग हानी तालिब बल्लान ने शिरकत की। फोरम के दौरान सिक्योरिटी और सेफ्टी प्लान्स, सिविल डिफेंस प्लान्स और मेडिकल प्लान्स पर तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा मुतालिका इदारों के दरमियान राबते और हम आहंगी के तरीकाकार पर भी जायजा लिया गया, ताकि एक महफूज खेलों का माहौल फराहम किया जा सके जो स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए रियासत कतर की विजन के मुताबिक हो। फोरम के अख्तिताम पर डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अल्फानी ने शिरकत करने वाले इदारों को फोरम की कामयाबी में उनकी कोशिशों के एतराफ में तकरीबी शील्ड्स और तकरीमी असनाद पेश की। वज़ारत दाखला ने आवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नेहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके जराए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार किया गया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में हजारों अफराद तक पहुंच सकती है। वज़ारत दाखला ने जोर दिया है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और रस्मी ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर अफेयर्स शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल्फानी ने रियासत कतर में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सफीर होंग जेपीओ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुस्तहकम रवाबित का जायजा लिया गया और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई दूसरे उमूर पर भी बातचीत की गई। सामईन, अपनी गाड़ी के टायर्स को अच्छी हालत में रखना सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की हिफाजत के लिए भी बहुत अहम है। खराब या घिसे हुए टायर्स ब्रेकिंग को कमजोर कर सकते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम हो सकता है और हादसात का खतरा बढ़ सकता है। टायर्स की बेहतर मेंटेनेंस के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले टायर्स की हवा यानी एयर प्रेशर बाकायदगी से चेक करते रहें।

और कंपनी से बताए गए एयर प्रेशर को हमेशा जहन में रखें। घिसे हुए या खराब टायर्स को फौरन तब्दील करवा लें। टायर्स की ट्रेड डेप्थ चेक करते रहें ताकि सड़क पर बेहतर ग्रिप बरकरार रहे। टायर्स की रोटेशन और व्हील अलाइनमेंट वक्त पर करवाएं। सफर से पहले टायर्स में कट्स, बल्जेस या किसी भी किस्म के नुकसान का जायजा लें। गर्म मौसम में टायर्स की हालात पर खास तवज्जो दें क्योंकि ज्यादा गर्मी टायर फेलियर का सबब बन सकती है। याद रखें, टायर्स आपकी गाड़ी और सड़क के दरमियान वाहिद राब्ता होते हैं। उनकी मुनज्जम देखभाल हादसात से बचाव और महफूज सफर की बुनियाद होती है। वजारत दाखिला का कहना है कि गाड़ी के टायर्स का ख्याल रखना आपकी रोड सेफ्टी को बेहतर बनाता है। रियासत कतर ने जमहूरिया तुनिशिया में अरब वज़राए दाखिला काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक्किद नवी अरब कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनलिटी एंड सिविल स्टेटस डिपार्टमेंट्स की कार्रवाइयों में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत डायरेक्टर ऑफ द नेशनलिटी एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट मेजर जनरल हमद अब्दुल वाहब अल मुतवा ने की। कॉन्फ्रेंस में एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर गौर किया गया और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरब ममालिक के दरमियान नेशनलिटी और सिविल स्टेटस से मुतालिक तजुर्बात के तबादले और मुश्तरका तआवुन को मजीद मजबूत बनाना था। समीन, गाड़ी के अंदर बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हमेशा उनकी उम्र और कद के मुताबिक मुनासिब चाइल्ड सीट का इंतखाब किया जाए और सीट बेल्ट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को गाड़ी में कभी भी बगैर सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट के सफर नहीं कराएं। सफर छोटा हो या लंबा, हिफाजती कवायद पर अमल करना उनकी जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। बच्चों की उम्र और वजन के मुताबिक चाइल्ड सीट इस्तेमाल करें। चाइल्ड सीट को गाड़ी में ठीक तरीके से इंस्टॉल करें। सीट बेल्ट को हमेशा सही तौर पर बांधें। छोटे बच्चों को मुमकिन हो तो पिछली सीट पर बिठाएं। सफर से पहले चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट की जांच करा लें। वजारत दाखिला का कहना है कि हमारे लिए आपके बच्चों की सलामती सबसे अहम है। उनकी हिफाजत आज का एहतियात और कल की मुस्कुराहट है। दोस्तों, आपका ट्रैम से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। रियासत कतर स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबर्ग में 7 से 29 अगस्त तक मुनक्किद होने वाली रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू 2026 की सरगर्मियों में शिरकत कर रही है। इस बैनुल अक्वामी फेस्टिवल में रियासत कतर के सफीर बराए यूनाइटेड किंगडम शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद अल्फानी और लीगल एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और जनरल सुपरवाइजर ऑफ द पुलिस अकेडमी मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अल माल ने शिरकत की। कतर की शिरकत में वजारत दाखिला की पुलिस अकेडमी के नुमाइश परफॉर्मेंस शामिल हैं, जो दुनिया भर की अस्करी और सेरेमोनियल बैंड्स के साथ अपने फन और सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही है। इस अहम बैनुल अक्वामी इवेंट में कतर की शिरकत मुल्क के उस अज़्म को जाहिर करती है जो आलमी फोरम में मुअस्सर मौजूदगी, तआवुन और तजुर्बात के तबादले को फरोग देने और कौमी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। सामीन, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी आपकी और दूसरे रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। फास्ट लेन यानी सबसे बाईं तरफ वाली लेन में मुकर्रर करदा कम से कम रफ्तार से कम स्पीड पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर सकता है और कानूनी खिलाफ वर्जी का सबब भी बन सकता है। फास्ट लेन का इस्तेमाल सिर्फ मुनासिब रफ्तार के साथ करें। मुकर्रर करदा मिनिमम स्पीड से कम रफ्तार पर गाड़ी चलाने से गुरेज करें।

0: लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें और बिला वजह फास्ट लेन में ना रहें। दूसरी गाड़ियों के लिए रास्ता खुला रखें ताकि ट्रैफिक बआसानी रवां रहे। ट्रैफिक साइंस और स्पीड लिमिट्स पर हमेशा अमल करें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी सिर्फ जुर्मानों से बचाती नहीं बल्कि सड़कों पर बेहतरीन नज्म व जब्त और सबकी सलामती को भी यकीनी बनाती है। महफूज ड्राइविंग करें और जिम्मेदार रोड यूजर बने। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अरबी जबान की कहावत है जो इंसान के एक आम रवैये की तस्वीर भी, तर्रार व तशर्रत, यानी मांगने वाला और ऊपर से शर्तें भी लगा रहा है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई मोहताज या साहिल आपसे मदद मांगे, जब उसे कुछ देते हैं तो उसे लेने में तरद्दुद करे या कहे ये कम है, ज्यादा चाहिए, मैं ये नहीं लूंगा, उसकी जगह वो दे दो, या शराइत तय करने लग जाए। गोया वो खुद तो मोहताज है मगर मुतालिबे उसके बड़े हैं। अरब इस रवैये को मजाकन और तंजन बयान करते हुए कहते हैं, तर्रार व यश्तरित, यानी भिखारी और नखरे भी। हमारे यहाँ भी मशहूर मुहावरा है कि भिखारी के नखरे। गोया मांगने वाला शर्तें लगाए तो बहुत ताज्जुब की बात समझी जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी हालत के मुताबिक गुफ्तगु, रवैया और तवक्कात रखनी चाहिए। जो मदद ले रहा हो उसमें शुक्रगुजारी होने चाहिए, न कि नखरे और मुतालिबे। इसीलिए अरब कहते हैं, तर्रार व तशर्रत, भिखारी और ऊपर से शर्तें भी लगाता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हमारे फुट, हमारे पाँव की जो सेहत है और रोज़ाना देखभाल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे पाँव हमें चलने, दौड़ने और डेली जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें मदद देती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हम किस तरह से चल सकते हैं, यानी अपने पाँव की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलना तो है ही, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, ब्रीदेबल सॉक्स आप देखिए, और इसी तरह से बहुत हाई हील जो हैं और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप उसे ना पहनिए, और जो अगर आपके पुराने शूज़ हैं ठीक नहीं आपसे चला जा रहा है या आपको वो डिसकम्फर्ट कर रही हैं तो आप उन्हें बदल दीजिए। और इसी तरह से जो अपने पाँव हैं उनकी जो डेली फूड हाइजीन है उसकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी है, उसे वॉश करना है, अपने जो पाँव हैं

0: और उन्हें ड्राई करना है मुकम्मल तौर पर। इसी तरह नेल ट्रिमिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना है टू प्रिवेंट द क्रैक्स। क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो इससे प्रिवेंट भी होंगी, और मतलब आप फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत आम है पाँव में हो जाती हैं, तो उससे हम दूर रह सकते हैं। और अगर खासतौर कोई डायबिटिक है तो फिर उसके लिए बहुत स्पेशल केयर ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका सही नहीं है तो उससे जो हमारे पाँव की सेहत है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से अगर कोई छोटा भी ज़ख्म है तो उसे चेक कीजिए, देखिए कि आपके पाँव के ऊपर कोई रेडनेस तो नहीं है या कहीं कोई सूजन कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से आप रुजू कीजिए, और रेगुलरली अगर आप अपने पाँव चेक करवाते रहें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि अपने पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए टो कर्ल्स हैं, एंकल रोटेशन हैं, और इसी तरह से जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज है। इससे सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है, और फिर बैलेंस जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, उनकी तरफ आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। और जो टाइट शूज़ हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, और रोज़ या रोज़ाना की बुनियाद पर चेक ज़रूर कीजिए अपने पाँव को। और इसी तरह से अगर कोई भी मसला नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। सेहतमंद पाँव रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी होती है, और मोबिलिटी जो है वो होती है। रोज़ाना छोटे इकदाम से पाँव मजबूत और महफूज रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर फारिस इब्राहिम के बारे में। फारिस इब्राहिम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ दो ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किए। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में फारिस ने मजमी तौर पर 402 किलोग्राम वेट उठाया। बहुत ये जो वेट कैटेगरी के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी यू नो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। उन्होंने स्नैच में 177 किलो और क्लीन एंड जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 225 किलोग्राम लिफ्ट किया, जिसकी बदौलत वो ओलंपिक चैंपियन बने। इसके बाद फारिस ने अपनी वेट कैटेगरी तब्दील कर ली और 102 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबले किए। अब वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 94 केजी वेट क्लास में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बताता चलूं 2028 का जो ओलंपिक होने जा रहा है वो लॉस एंजलिस में होगा। फारिस आज भी दुनिया के बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने IWF वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और कतर इंटरनेशनल कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कई गोल्ड मेडल्स जीतकर कतर का नाम रोशन किया है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स आज हम एक ऐसी नियमत के बारे में बात करेंगे जिसकी कदर अक्सर हमें उस वक्त होती है जब इसमें कमी आना शुरू हो जाती है और वो है हमारी हेयरिंग हमारी समात आजकल हेडफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है चाहे आपको म्यूजिक सुनना हो ऑनलाइन क्लासेस हों या फ़ोन कॉल्स हों बहुत सारे अफराद कई कई घंटे कानों में हेडफोन लगाए रखते हैं अगर इनका इस्तेमाल एहतियात से ना किया जाए तो ये हमारी समात को नुकसान पहुंचा सकता है ये कि ज़्यादा आवाज़ जो है हमें समझना यह है कि क्यों नुकसानदेह है हमारे कान के अंदर नहायत बारीक सेल्स होते हैं जो आवाज़ को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ या तवील अरसे तक शोर में रहने से ये खलिये मुतासिर हो सकते हैं और एक बार नुकसान पहुंच जाए तो फिर अमूमन दोबारा ठीक नहीं होते आवाज़ को मुकम्मल तेज़ करने के बजाय आप उसे दरमियानी सतह पर रखें 60/60 उसूल जो है वो माहरीन तजवीज़ करते हैं यानी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% रखें और एक वक्त में 60 मिनट से ज़्यादा मुसलसल हेडफोन इस्तेमाल ना करें हर एक घंटे के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें

वक्त हेडफोन लगा कर ना सोए और इर्द गिर्द के अफराद भी आपके हेडफोन की आवाज़ सुन सकते हैं तो समझें कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें मालूम हो कि समात हमारी ख़राब हो रही है तो इसमें इस तरह से भी जाहिर होती है कि दूसरे अफराद की जो बात है वो बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। टीवी या मोबाइल की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद करना हो, इसी तरह कानों में मुसलसल सीटी या फिर घंटी जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाए, शोर वाली जगह पर बात समझने में मुश्किल हो, और अगर ये अलामत महसूस हों तो आप जल्द से जल्द कंसल्ट कीजिए। अपने कानों का ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि अच्छी समात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, काम और रिश्तों के लिए बहुत अहम है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ विमेन इन स्टेम शेपिंग द फ्यूचर। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से तेजी से तब्दील हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फील्ड्स मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं। और इन तमाम फील्ड्स का ताल्लुक स्टेम से है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। विमेन इन स्टेम, इससे मुराद उन फीमेल से है जो इन फील्ड्स में तालीम हासिल कर रही हैं और अपने आइडियाज, रिसर्च और इन्वेंशंस के जरिए दुनिया को बेहतर बना रही हैं। माजी में स्टेम फील्ड्स को ज्यादा मर्दों की फील्ड समझी जाता था, लेकिन आज फीमेल साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स के तौर पर काम कर रही हैं। उनकी मेहनत ने साबित कर दिया है कि टैलेंट और कैपेबिलिटी का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया को ज़्यादा इनोवेशन और नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। जब सिर्फ सोसाइटी का एक हिस्सा सॉल्यूशंस डेवलप करता है तो बहुत से पर्सपेक्टिव मिस हो जाते हैं, लेकिन जब विमेन भी स्टेम फील्ड्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं तो नए आइडियाज़, नए सॉल्यूशंस और ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और मज़ीद स्ट्रॉन्ग वे में सामने आते हैं। आज दुनिया के सामने कई बड़ी चैलेंजेस हैं जिनका हमें और आपको सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी के भी नई चैलेंजेस हैं। इन मसाइल को सॉल्व करने के लिए डाइवर्स माइंड्स की ज़रूरत है। जी हाँ, डाइवर्स माइंड की सख्त ज़रूरत है। वेमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम्स की यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। इसीलिए स्टेम में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को फ्यूचर की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। वेमेन इन स्टेम हमारी रोज़मर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डालती हैं। जो मोबाइल ऐप्स हम यूज़ करते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम हासिल करते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, उन्हें कई फीमेल्स ने डिज़ाइन किया है। ये यूँ कहें, उनमें कई फीमेल्स का भी अहम किरदार है। जब ज़्यादा वुमेन टेक्नोलॉजी और साइंस में काम करेंगी तो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी की तमाम ज़रूरियात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। इस टॉपिक का एक और अहम पहलू इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। रिसर्च ये बताती है कि जब वर्कफोर्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव होती हैं। वुमेन का स्टेम सेक्टर में आना नए जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमीज को मजबूत बनाता है और

0: सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आज कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन की तरफ इनकरेज कर रही हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटीज स्पेशल प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाएं। ये सिर्फ इक्वालिटी का मसला नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस और इनोवेशन का भी मसला है। फ्यूचर में AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। अगर वुमेन इन फील्ड्स में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा करती हैं तो दुनिया को बेहतर सोल्यूशन और ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा। इस तरह वो सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाएंगी बल्कि पूरी सोसाइटी की तरक्की में एक अहम हिस्सा डालेंगी। वुमेन इन स्टेम सिर्फ करियर्स का टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर की लीडरशिप, इनोवेशन और तरक्की का भी टॉपिक है। जब लेडीज साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं तो नए इन्वेंशंस, नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। मुस्तकबिल उन माशरों का होगा या उन लोगों का होगा जो टैलेंट को जेंडर की नज़र से नहीं बल्कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इनोवेशन की नज़र से देखेंगे। अगर आज हम ज़्यादा गर्ल्स को स्टेम फील्ड में सपोर्ट करेंगे तो कल हम एक ज़्यादा एडवांस, क्रिएटिव और प्रॉस्पेरस दुनिया देख सकेंगे। वेमेन इन स्टेम वाकई मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं और उनका किरदार आने वाले दौर में और भी ज़्यादा अहम होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वेमेन को स्टेम में जाना चाहिए, तो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को भी, लेकिन लड़कियों को भी ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए इनक्रेज करें, मोटिवेट करें। चलिए, मैं तो आपसे अब यहाँ पर इजाज़त लूँगी इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक और नए टॉपिक पे आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अगर सीट बेल्ट किसी ने बांधा नहीं है सही से तो फिर यानी या तो वो उछल कर बाहर निकल आएगा, ठीक है, उछल कर बाहर निकल आएगा तो मुतासर होगा कौन कौन से उज़्व। उन्होंने कहा कि जो हमारे जिस्म में भारी जो हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, इसमें सर है और कमर की बात उन्होंने कही। तो ये अगर बाहर उछल कर वो बाहर निकल आ जाए, और अगर दूसरी सूरत है कि हाँ घर यानी गाड़ी के अंदरूनी हिस्से में ही टकरा जाए, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि यानी सबसे ज़्यादा मुतासर होता है सर और सीना, सर और सीना। तो यानी ये चोटें काफ़ी बलीग चोट होती हैं, और तो इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम सीट बेल्ट का अहतमाम करें, और बच्चे भी जो हमारे साथ सवार होते हैं पीछे की सीटों में बैठते हैं तो उन्हें भी इसके बस का पाबंद बनाएं कि ताकि वो पीछे अपने सीट बेल्ट को सही से बांधें। एक अहम बात उन्होंने ये बताई है कि देखें बच्चों के हवाले से जो मसला है कि कानून में ये कहा गया है कि मा यजीदु अन अशर सनवात, 10 साल से ज़्यादा 10 साल से जिसकी उम्र जो है ना 10 साल से ज़्यादा हो वो आगे बैठ सकता है। इसका मतलब क्या निकला, यानी 10 साल से कम हो तो वो नहीं बैठ सकता आगे की सीट में। तो हुआ ये कि यानी हिकमत क्या है, इसका फ़लसफ़ा ये है कि अगर वो बैठे तो सही से बेल्ट जो है ना उसके सीने के ऊपर से नहीं आएगा, वो अगर बच्चा छोटा हो तो उसके मुंह के ऊपर से वो बेल्ट आ रहा होगा, ठीक है ना, तो वो उसको जो है ना प्रॉपर हिमायत और तहफ़ वग़ैरह वो नहीं दे पा रहा है। ओके, इस वजह से यानी वो उसको इसलिए वज़ा किया गया है ताकि वो बड़े लोग वहाँ बैठे आगे के सीट में। अच्छा, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 10 साल की उम्र का हो लेकिन फिर भी या 10 साल से ज़्यादा हो लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो, तो इस सिलसिले में वो एज ए बॉडी ग्रोथ के हिसाब से सामने के सीट में वो जब बैठ रहा है तो उसके वो सीट बेल्ट सही से उस पर नहीं आ रहा, फिट नहीं हो रहा। तो इस सूरत में भी यानी कानून तो एक बात है, कानून तो कह रहा है हमें, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से इस कल्चर को समझना है कि कानून हमारे तहफ़ के लिए है। इस बात को जब हम समझेंगे तो हम सही से प्रॉपर वे में जो हमारे लिए हिमायत और तहफ़ के जो वेज़ हैं वो हमें सही से समझ में आएंगे और हम उसको प्रैक्टिकली उसे नाफिज कर सकेंगे। तो ये बात हुई कि बच्चों को हम पीछे जब बैठते हैं तो उन्हें सही से उनको सीट बेल्ट बांधने का अहतमाम और ये जो है तरीक़ा है वो सही से अपनाएं। बच्चा अगर जैसे कि 0 मंथ से लेकर 6 मंथ या जितने भी हो उसके लिए मुख्तलिफ आपको यानी सीट्स भी मिल जाएंगे, बच्चों की जो अपने ख़ास सीट्स होती है ना चिल्ड्रन, तो वो आपको मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह में मिल जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि जब आप वहाँ जाते हैं तो वो ख़ुद बता देते हैं कि किस तरह के सीट कौन से बच्चे के लिए मुनासिब है, तो आप उस तरह इख्तियार कीजिए, अपने उम्र के मुनासिब जो सीट्स हैं वो आप इख्तियार कीजिए। और फिर वो सीट रखने का भी अपना तरीक़ा होता है, बाज़ औक़ात उसको यानी जो फेस जो है ना स्टेयरिंग की तरफ नहीं होते, गाड़ी के फेस को घुमा कर पीछे की तरफ कर देते हैं, तो मुतय्यन उम्र के लिए वो तरीक़ा है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए थोड़ा दूसरे तरीक़े से, फिर जब बच्चा और भी बड़ा हो जाए तो उसको सीधा सीट जो है ना जिस तरह ड्राइवर वगैरह जिस रुख पर बैठे हैं उसी रुख पर करके वैसे सीट बेल्ट बांध दिया जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ यानी हिफाजती इकदामात हैं। सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि अवेयरनेस के कल्चर को हम आम करें और इस बात को समझें कि ये कवानीन जो है ना ये हमारे हिफाजत के लिए है, तहफ़ के लिए, हमें यानी हमारी जान की हिफाजत की ज़मानत के लिए ये कवानीन ज़ब्त यानी मुनज़्ज़म किए गए हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे अब तो बात यह है कि हर जगह कैमरा है तो आप कहीं पर भी होंगे, अगर आप सीट बेल्ट का अहतमाम नहीं करते हैं तो कैमरा आपको वो आपकी फ़ोटो ले लेगी, तो फिर तस्वीर जब ले लेगी तो फिर वो जुर्माना भी आ जाएगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि 500 रियाल जुर्माना है अगर कोई सीट बेल्ट सामने के फ्रंट सीट में उसके बाजू के सीट में फ्रंट सीट्स में अगर कोई इस तरह नहीं पहनता तो उसके उस पर 500 रियाल के जुर्माना। उन्होंने बात कही और साथ साथ उन्हें बताया कि हाँ अगर एक महीने के अंदर वो सही से उसको यानी फीस जो जुर्माना है उसको अदा करता है तो वो हाफ 50% उसके खसम और डिस्काउंट भी है। लेकिन डिस्काउंट के हवाले से बात ये तो ये नहीं है कि कितने रकम कितनी रकम जुर्माना है, बात इसमें महदूद नहीं रहती।

0: शाम 7:15 बजे से
1: 7:15 बजे से
0: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ,
1: दोहा वाले कबीर के साथ।
0: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
3: अच्छा जी, मजीद उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद तो यानी क़यादत के दौरान फोकस सही रखें अपने जो भी हैं आपके डायरेक्शन पर। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों की गलतियों से भी पर भी हमें मोहतात रहना है। ये हो सकता है कि भाई दूसरा कोई यानी खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है, दूसरा कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई इस तरह मशगूल है किसी दूसरे काम में, ड्राइविंग पर उसकी पूरी तवज्जो नहीं है, तो इस वक्त आपने भी उस तरह जो है ना यानी मोहतात रहना है ताकि मसला। देखें, उन्होंने जैसा कि हमें बताया कि ट्रैफिक के दौरान हवादसात यानी हादसा जो है ना ये होंगे, ये होते रहते हैं, लेकिन मसला इसमें है कि जब आप मोहतात रहते हैं, इत्यादि तदाबीर इख्तियार करते हैं और दूसरों की गलतियों पर भी आप मोहतात रहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी है या फिर उसकी जो इसाबा या फिर जो ज़ख्मी वगैरह या फिर कुछ भी जो नुकसान होते हैं ना, नुकसान की जो परसेंटेज है हम उसको कम कर सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ थोड़ा सा यानी कुछ बॉडी में कुछ इस तरह के खुदशात वगैरह आए हैं, ठीक है, या फिर यानी थोड़ा मोटा यानी जिसे कहते हैं ना माइनर कुछ हुआ है, बड़ा कुछ नहीं, तो कम से कम तो हम इतना तो कर सकते हैं ना। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से या फिर किसी दूसरी चीज़ों में मशगूल होने की वजह से, वो एक्सीडेंट को हम तजावुज़ कर सकते थे, उससे हम यानी बहुत ही कम नुकसान के ज़रिए हम उस यानी हादसा से निकल सकते थे, लेकिन फिर भी हम तवज्जो पूरी हमारी नहीं रहने की वजह से होता ये कि वो हादसात काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। तो बहुत अहम बात ये है सामने कराम कि आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बताया हमें एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज़ में ये बताया कि देखिए कतर में आप कहीं भी जाए माशाल्लाह से आपको सारे स्पीड हाईवे वगैरह सब कुछ है और बहुत ही यानी फ्लेक्सिबल है, रास्तों में उतने रश भी नहीं, भीड़ भट्टा नहीं, तो फिर ये कि आप अपने मंजिल मकसूद तक काफ़ी आसानी से पहुंच जाते हैं जहां पर भी आपको जाना है बहुत कम वक्त में। तो इस सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके पूरे दिन के जितने सफ़र हैं ये वो इधर उधर जाना आना ये मिला जुला कर यानी हम इतना कह सकते हैं कि आप रास्ते पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, ठीक है, तो अगर इस मुद्दत के इतने वक्त के लिए इतने अरसे के लिए आप मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें और मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, इस वक्त आप रेडियो है कुछ भी है वो आप ऑन करके वही सुन लें, तो देखें आप यानी बिलाखिर आप यानी खसारे में नहीं हैं बल्कि

ये कहेंगे कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि आप अपने आप को पूरे यानी हिमायत कर रहे हैं, अपनी जान की हिमायत कर रहे हैं, दूसरों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस आधे घंटे के लिए बेबस हो जाएं, बेकरार हो जाएं और ये मोबाइल फ़ोन और ये वो यूज़ करने पर पूरी तवज्जो इन्हमाक के साथ हम इसको यूज़ करने लग जाएं, तो देखें इस आधे घंटे के लिए कभी हम जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक अमल है, यानी आप इस थोड़े वक्त के लिए आप अपने पूरी ज़िंदगी को कैसे इतने नुकसान का शिकार या फिर इतना नुकसान का बोझ कैसे उठाएंगे आप। तो ये इस सिलसिले में हमें मोहतात रहना चाहिए। मज़ीद उन्होंने हमें ये भी एक बहुत ही उम्दा और दिलचस्प मिसाल से हमें ये समझाया कि देखें जब हम कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, जब आप उससे मुखातिब होते हैं तो आप उसे एक दो तीन मरतबा बात कर लें तो वो चौथी मरतबा में जाकर वो परेशान हो जाता है बंदा, यानी बंदा गुस्से में आ जाता है, अरे क्या कर रहे हो तुम ऐसा, ये एक गुस्से की जो है ना वो एक तासुर दिखाता है। तो अगर ये एक बंदे के आम सिम्टम्स हों और ये उसकी अमूमी हालत में ये गुस्से की ये तासुरात हों तो आप सोचिए कि ये मोबाइल फ़ोन ने हमें किस तरह डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम अपनों को भी इस तरह बिहेव करने लग जाते हैं, दूसरों की बात हम तहमल नहीं कर पाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का काफ़ी तासीर है, और जैसे कि उन्होंने हमें बताया एक एहसाइयात और स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट भी दी, उसमें बताया कि 98% यानी जो मशगूलियत होती है गाड़ियों में तो वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज है। इन दिनों की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हमें बताया, तो सिर्फ 2% रह गए यानी 2% ये दूसरी चीज़ें होती हैं जो इंसान को मशगूल करती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का ख़तरा इस दौर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक कॉल या एक मैसेज किसी इंसान की जान से ज़्यादा अहम नहीं। जुर्माना की बात करें तो 500 रियाल जुर्माना है अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ की हालत में अगर वो कैमरा वगैरह या फिर सिक्योरिटी के अहलकार कुछ वो जुर्माना आयद करें, तो ये 500 रियाल की रकम है और डिस्काउंट नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने इसकी वजाहत की है। तो ये थी अहम बात हमारे इस मोबाइल फ़ोन यूजेज के हवाले से। मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और दिलचस्प माशाल्लाह से हमारे कैप्टन अहमद सालिम उनकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है काफ़ी अहमियत और इन चीज़ों की जो है ना गहराई तक पहुँच कर वो हमसे मुखातिब होते हैं। तो बेइज़्नल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये जो अहम छोटी मोटी बातें होती हैं गाड़ियाँ चलाने के दौरान, तो गाड़ी चलाने के दौरान ये जो बातें हैं इनका अगर हम ख्याल रखेंगे और इनकी अहमियत को समझेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद और फ़ायदा मंद बनेंगी बिइज़्निल्लाहि ताला। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

वेलकम एक सामीने करता फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और आज बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हमारी जारी है। और गाड़ी चलाने के दौरान ये जो अहम कुछ इकदाम हैं, वही बातें जो बार बार घूम फिर के आती हैं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हमारे मेहमान हमें इसकी वजाहत पेश कर रहे हैं कि भाई इसकी क्या अहमियत है। हम सब तो ये कह देते हैं कि भाई रेड लाइट तोड़ो मत, यानी तोड़ना ही नहीं, क्या आप उसे क्रॉस करना और इस तरह जो है ना इस सिलसिले में उतार देना चाहिए, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो। लेकिन आपने सुना होगा ब्रेक से पहले उन्होंने किस अंदाज़ में हमें ये बताया कि भाई ये बातें हैं, ये स्टडीज़ हैं, ये

0: ज़्यादा गाड़ी को यानी अगर चलाते हैं। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड ये गोया कि यानी कहा जा सकता है, उन्होंने जैसे कि कहा कि ये मोबाइल यूज़ और ओवर स्पीड तकरीबन एक ही तरह के यानी ख़तरनाक अमल हैं, कि अगर इनमें मुश्तरक बात यही है, उन्होंने बताया कि ये आपकी जो है ना वो यानी आप एक्सीडेंट की जो रेशियो को नुकसान के एक्सीडेंट में नुकसान के जो रेशियो को आप कम कर सकते थे वो आप कम नहीं कर पाएंगे। तो हादसा का जो है ना असरात, हादसा के असरात काफ़ी ज़्यादा संगीन होंगे ओवर स्पीड की वजह से, जिस तरह संगीन होता है वैसे ही हादसा यानी ख़तरनाक हो सकता है मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो ये यानी एक ही बात हुई, यानी एक ही तरह के ख़तरात हैं दोनों में। मज़ीद उन्होंने आगे बढ़कर के जब स्पीड लिमिट की बात आई तो उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर में ओवरऑल एक सबसे ज़्यादा जो हवादिस ये होते हैं हादसात, तो इनके सबब है कि आप जब दूसरे और अपनी गाड़ी के दरमियान जो एक यानी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप नहीं रखते हैं। तो प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो रखने की बात आप जब यानी इसकी बात कानूनी तौर पर बार बार बताई जाती है तो आपने उसका वो डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना है। तो यानी आप मुख्तलिफ अवकात में और जो वेदर के हालत के बिना पर आप ये तय करेंगे, कभी कभार फॉग ज़्यादा है तो उस वक्त आपको अगली गाड़ी जो है ना आगे की वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो थोड़ा सा वो ऐसा जवाबी और ऐसा कुछ दिखाई दे रही है दूर से, तो बस वही काफ़ी है, आप उसी फासले को बरकरार रखिए। तो अगर वो आप आम तौर पर 10 मीटर रखते थे तो आप 20 मीटर रखिए। तो उन्होंने इस सिलसिले में जो कायदा बताया है कि दरअसल यानी डिस्टेंस के हवाले से जो कायदा है वो दरअसल है 2 सेकंड के हवाले से, कि अगर कोई यानी लाकदरला कोई मसला हो जाए तो यानी आप गाड़ी रोक सकें और उस यानी हादसे वगैरह से आप बच सकें। तो ये होता है, ये है मकसद। तो इस चैलेंज के लिए आपको कम से कम 2 सेकंड के फासले पर होना पड़ेगा, यानी कानूनी तौर पर उन्होंने इसको स्टडी वगैरह के ज़रिए साबित किया है। तो 2 सेकंड के लिए जैसे कि उन्होंने कहा कि ये 10 मीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस रखना उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है, चाहे आपकी गाड़ी 30 की स्पीड में हो, 30 स्पीड में हो या फिर 120 की स्पीड में हो, 100 स्पीड में हो, लेकिन आप डिस्टेंस को बरकरार रखें। तो कतर में जैसे कि उन्होंने कहा हादसा की सबसे बड़ी वजह में एक ये भी है कि हम गाड़ी एक दूसरे के डिस्टेंस को वो सही बरकरार नहीं रखते हैं। तो इस वजह से यही बात है सामने कराम के, रफ्तार उतनी रखिए जितने कानून और रोड कंडीशंस इजाज़त दें, और डिस्टेंस के हवाले से उन्होंने जो कहा इसका हम ख़ास ख्याल रखें। और इसी तरह जो है ना हम आखिरी महवर की तरफ जा रहे हैं और हम हमारे मेहमान से ये पूछेंगे, हमारे साथ हैं कैप्टन हमद सालिम जिनके ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से हैं। तो कुछ ऐसे आखिरी कलिमात हम उनसे मांगे पूछेंगे कि वो हमारे मेहमान के लिए क्या, हमारे ऑडियंस के लिए क्या बताना चाहेंगे। سيادة النقيب حمد سالم من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، نشكركم على وجودكم معنا، ويعني آخر طلب منكم يعني بدنا كلمة ختامية للجمهور.
1: في الختام دائما نطلب من جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية، ودائما اتباع الإرشادات ومتابعة قنوات التواصل الرسمية، أخذ المعلومات من مصادرها، التأكد من الطرق قبل بدء الرحلة. طبعا اليوم احنا في موسم صيف، وفي الموسم القادم أو في الأيام القادمة بيكون عندنا ضباب كثيف، بيكون عندنا غبار، في الشتاء بيكون عندنا أمطار. في كل موسم طبعا لابد قبل بدء الرحلة أني أنا أعرف ما هي المخاطر اللي ممكن نتعرض لها، أعمل خطة سير. طبعا هي بتجي مع الخبرة بشكل سريع أني أنا أعرف إيش المخاطر اللي ممكن نتعرض لها، أتفادى الحوادث المرورية إذا تأكدت أن السيارة فعلا سليمة وصالحة للسير في الطريق، إذا كانت استمارة السيارة جيدة مفحوصة فأنا أيضا أمنت نفسي، فحص السيارة بشكل دوري يومي إذا أمكن أنك تمر على السيارة، تأكد من إطاراتها، من بريكها، من مساحاتها،
2: إلى آخره، هذه الإجراءات.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो गर्मी गुर्मी थोड़ी सी जा चुकी होगी और मौसम थोड़ा सा बदल चुका होगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो ऑल पावर टू एवरीबॉडी जो इस शो को सुन रहे हैं। आई डोंट नो ये सुनते सुनते क्या मौसम हो रहा होगा, बट टन्स ऑफ लव एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, आपको बताने के लिए भाई साहब। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? देखो कतर 2026 जो ये शो है, इसका मकसद ये है कि कुछ इवेंट्स जा चुके होंगे जो आप मुझे सुन रहे हैं और कुछ इवेंट्स आ रहे होंगे। पॉइंट इज टू टेल यू व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड कतर, अक्रॉस कतर, और कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। एक चीज मैं रिपीट करते करते थक गया हूं, लेकिन नहीं, काइंड ऑफ नहीं थका हूं, वो ये है कि

स्टेकेशन पे चले जाओ, चले जाओ. इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ कल्चर इन कतर, और आपको स्टेकेशन कतर में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए. आप बोलेंगे क्या करूं, होटल में जाके वहां जाके सो जाऊं, इससे अच्छा तो मैं घर पे सो जाऊंगा. आई नो दैट पॉइंट कम्स, मैं भी यही सोचता था. लेकिन स्टेकेशन का मजा कुछ और ही है जब आप दोस्तों के साथ बुक करके कहीं ना कहीं जाते हैं. आई नो बैक इन द डे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग निकल जाते थे, चलो भाई पहाड़ियों में चलते हैं, चलो भाई नदी किनारे चलते हैं, गाड़ी में बैठे दोस्तों के साथ और चाय पीने के बहाने निकल गए 100 किलोमीटर. यू कैन डू इट इन कतर एज वेल, और ऊपर से इसमें स्टेकेशन को ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक. ट्राई दिस वन आउट. अभी भी बहुत सारे होटल्स में बहुत सारे ऑफर्स हैं, उसमें ब्रंच के भी ऑफर हैं, ब्रेकफास्ट के भी ऑफर हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं स्टेकेशंस पर भी. एंड होटल्स आर गिविंग यू, माय गॉड क्या ऑफर डाले उन्होंने उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, अरे भर भर के खाते हैं उसमें, बूफे बूफे बूफे में भी बहुत सारे ऑफर्स हैं. सो विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स प्लान समथिंग आउट और चले जाइए, क्योंकि अभी जब मौसम बदल जाएगा तो स्टेकेशन के ऑफर भी चले जाएंगे. तो इससे पहले इसकी रुखसती हो गर्मी की, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और इसकी आंखों में आंखें देख के स्टेकेशन बुक करिए. डरते थोड़ी यार हम, ठीक है. अब इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं और बहुत सारे इवेंट्स हो चुके होंगे जब आप मुझे सुन रहे होंगे. सो उनमें से एक इवेंट है जो 5 सितंबर तक चल रहा है, और ये जो इवेंट है ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, कतर्स स्टार लीग, कतर स्टार्स लीग QSL, दोहा बैंक स्टार्स लीग. ये मेन टूर्नामेंट है विच इज मैनेज्ड बाय कतर स्टार्स लीग, और ये लीग हर सीजन होती है. 12 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द टाइटल. फैंस अटेंड कर सकते हैं मैचेस और अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स रिवॉर्ड्स भी. एक नई ऐप जो इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है हायो, हायो प्लेटफॉर्म, HAYYOH, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हाया था तो ये हायो होगा, हायो प्लेटफॉर्म, और इस ऐप के जरिए आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं. सो ट्राई दिस वन, ये भी नई ऐप है और बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स मेकिंग श्योर के टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आप अपडेटेड रहें, जुड़े रहें और चीजें मॉडिफाई होती रहें फॉर द गुड. सो ये जो फुटबॉल एक्शन होने वाला है और साथ में जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, ये मिस करने का सवाल पैदा को नहीं होता भाई. लोकेशन जो है अलग अलग स्टेडियम्स की है, तो मैं सारे के सारे स्टेडियम्स के नाम तो नहीं पढ़ने बैठूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि अलग अलग स्टेडियम्स में होंगे मैचेस, कोई एक स्टेडियम नहीं है जहां पे एक ही मैच हो रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल मैचेस हैं. और 20 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है, 5 सितंबर तक चलेगा. एंड जो जो टिकट की प्राइसिंग है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 कतरी रियाल ओनली. सो इफ यू आर अ फैन ऑफ फुटबॉल और आप लीग्स और क्लब मैचेस QSL की फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो यू नो इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स, तो आपको तो इसका हिस्सा बनना ही बनना चाहिए. और बाकी अपडेट्स के लिए जैसे मैंने कहा कि इसकी जो ऐप है हायो, उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप टिकट्स खरीद सकते हैं और जो पॉइंट्स है वो अर्न कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट, एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आना चाहिए और वो है हमारा प्लेटफॉर्म FM 107 Qatar. FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज गेट इन टच विद अस. और आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर, KABIR. कुछ लोग डबल ER लिख देते हैं भाई, दिक्कत हो जाती है, मिलता नहीं, फिर लोग कहते हैं आप तो है ये नहीं, तो KABIR कबीर, ये स्पेलिंग लिखेंगे दोहा वाला कबीर, तो मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा अगले इवेंट की तरफ. Qatar 2026. तो जो अगला इवेंट है, इट इज फुल ऑफ एडवेंचर, इट इज फुल ऑफ फन, और स्पेशली बच्चों के लिए. सो निकलोडियंस का जो पॉ पेट्रोल है, पॉ पेट्रोल मॉल ऑफ कतर में आ चुका है एंड ये 29 अगस्त तक रहेगा. 20 से शुरू हुआ है और 29 अगस्त तक रहेगा. यहाँ पे चेज मार्शल, रबल, स्काई एंड राइडर और ओएसिस स्टेज पर बहुत कुछ है. Yes, for the little ones. अब ये मिस नहीं कर सकते. अगर आपकी फैमिली में नन्हे मुन्ने राही हैं, देश की सिपाही हैं, तो उनको लेके यहाँ जरूर पहुंचिए. एंड यू कैन वॉच योर लिटिल वंस लाइट अप एज दे सी देयर फेवरेट पॉ पेट्रोल. एंड पॉ पेट्रोल का तो मैं ही फैन हूँ यार, काश मुझे भी ला होता. ये इवेंट जो है ओएसिस स्टेज पे होगा, मॉल ऑफ कतर. जो लोग गए उन्हें पता है, जो लोग नए हैं यू कैन श्योरली विटनेस इट. प्लीज आप देख ही सकते हैं एज एन ऑडियंस एंड चेयर देम अप. मीट एंड ग्रीट सेशन रखा गया है, देयर इज मच मोर टू इट. सो बच्चों को पहली बात तो मजा आएगा, दे कैन फाइनली मीट देयर पॉ पेट्रोल कैरेक्टर्स, और मीट एंड ग्रीट सेशन में उनके लिए काफी कुछ और इनाम भी रखे गए. सो डेफिनेटली आई थिंक टू लुक आफ्टर. और जैसे मैंने कहा कि ये 29
अगस्त तक है। आपको सिंपल इतना करना है कि अगर आप इसमें हिस्सा भी लेना चाहते हैं तो मॉल ऑफ कतर जब आप जाएंगे तो उसका गिफ्ट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा 200 कतर रियाल या उससे ऊपर के शॉपिंग करने के बाद। बट यू नीड टू हरी। मीट एंड ग्रीट के जो स्पॉट्स हैं, मीट एंड ग्रीट के स्पॉट्स काफी लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि

सबके सब मीट एंड ग्रीट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 20 क्वालिफाइंग फैमिलीज को ही मौका मिलेगा इस मीट एंड ग्रीट का, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर है. इसका जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ. अगर आप बच्चों को लेके पहुंच ही रहे हैं मौलव कतर, तो शाम के 5 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे. इस बीच जो मीट एंड ग्रीट का सेशन रखा गया है वो है 5:40 पे, और उसके बाद 7:10 पे शाम के, और फिर रात को 8:40 पे. एंड इसके अलावा जो टाइमिंग्स है थोड़ी सी बदलेंगी. सो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एक्स्ट्रा सेशन रखे गए हैं जो कि 4 बजे होंगे. सो इवन बिफोर 5 PM. लोकेशन है मॉल ऑफ कतर, और इसका जो पूरे इवेंट की टाइमलाइन है वो 20 अगस्त से रन करते हुए 29 अगस्त तक की है, और शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक. जैसे मैंने कहा मीट एंड ग्रीट बहुत फन होता है, बच्चों को बहुत मजा आता है, मगर ये मीट एंड ग्रीट जो है 30 फैमिलीज के लिए लिमिटेड रखा गया है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है. सो इफ यू कैन रन, बुक कर लो भाई, जाके देख लो फर्स्ट फर्स्ट सर्विस पे. बिकॉज आई नो जब आप ये शो सुन रहे होंगे तो तारीख आ गई होगी कि आप इसके लिए रजिस्टर कर सकें. सो गो फॉर इट, एंड स्पेशली अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं बहुत सारे उस पूरी फैमिली में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. यू कैन चेयर फॉर योर फैमिली एज वेल. और जो लोग सिर्फ देखने के लिए जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स विजिट मॉल ऑफ कतर और ओएसिस स्टेज की तरफ चले जाइएगा और आपको मिल जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ जाए फिर. ठीक है जी. So, कतर कैलेंडर पे एक इवेंट है जिसके बारे में मैं पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही खास इवेंट कतारा साउथ पार्किंग की तरफ है. इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये 4 साल है, तो सॉरी मिनिमम जो एज लिमिट है वो 4 साल है, और मेनली बच्चों के लिए है. मगर इट इज अ वेरी फन एक्टिविटी. मैंने इसकी तारीफ हर एपिसोड में करी है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ उसका. मान लीजिए कि आप जो है एक ऐसी कहानी सुन रहे हैं जो आपकी नजरों के सामने चल रही है, और उस कहानी में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. मतलब कहानी को देख रहे हैं, कहानी को सुन रहे हैं, उसको आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें रंग भर सकते हैं. और आका अगर आप नए रंग भरते हैं और बिल्कुल सही रंग भरते हैं तो आपको इनाम भी मिलता है. और क्या चाहिए. सो कतर का जो कलर वर्स एक्सपीरियंस है वो विजिटर्स के लिए ओपन है. काफी इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग की पूरी जर्नी है वर्ल्ड ऑफ कलरामा. एंड ये इतनी वाइब्रेंट दुनिया बनाई गई है कि बच्चे हो बड़े हो भाई खो जाएंगे इसमें, लिटरली खो जाएंगे इसमें. आपको जो RGB कलर्स हैं पूरी कहानी के वो एक्टिवेट करने हैं, और जो कलर कंज्यूमिंग की क्रिएचर्स हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एक विलन भी बनाया गया है, तो आप रंग भर रहे हैं वो रंग खा लेता है. तो जो रंग खा रहा है उसका नाम है मंचर्स. ये मेन विलन है भाई साहब कहानी के बच्चों, और इस मंचर को आपको हराना है. अल्टीमेटली पूरे की पूरी दुनिया जो आपकी नजरों के सामने होगी उस कहानी में रंग भरने हैं आपको. And you need to restore the balance and life to the world. ये है main motive. और जितना मैंने बताया, I don't know कि मेरे बताने से अच्छा लगा नहीं लगा आपको, मगर देखकर definitely आपको अच्छा लगेगा. And I can vouch for it क्योंकि मैंने इसका वीडियो देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं गया नहीं हूँ, but I definitely loved it. So ये open हुआ था 20 जुलाई से और अभी चलेगा, और ये सितंबर तक चलने वाला है. सो वीकडेज में इसका टाइम रखा गया है शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक. वीकेंड्स पर टाइम रखा गया है शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक. सो एक घंटा और एक्सटेंड हो जाएगा. और इसकी लोकेशन जैसे मैंने बताई, कतारा साउथ पार्किंग, और मिनिमम एज जो है वो 4 साल के बच्चों की है. सो मिनिमम एज का बड़ा ख्याल रखिएगा. Alright, let's move on. Qatar 2026. अब आ जाते हैं जरा मॉल्स के ऊपर. वैसे भी गर्मी है तो भागने के लिए, विजिट करने के लिए मॉल्स ही रहते हैं. अभी इंशाल्लाह मौसम भी थोड़ा सुहाना हो जाएगा, लेकिन मॉल्स के अंदर एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं चाहे कैसा ही मौसम हो. तो कतर म्यूजियम, मीडिया सिटी सेंटर और SNRG, उन्होंने अनवेल किया है 321 e-sports lounge को, which is powered by the media city Qatar, और एक permanent ये पूरा accessible e-sports development hub है जिसके अंदर 321 Qatar Olympic Sports Museum की बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी. उसी के अंदर ये है, and it's a very very great vibey place. यहाँ पर high end PC gamings भी हैं, 12 प्रीमियम PCs रखे गए हैं, और गेमिंग हार्डवेयर एकदम तगड़ा वाला डाला गया है कि भाई कोई भी ऐसा गेम ना हो जो ना चले. कई मरतबा PC थकेले निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चानस ही नहीं है भाई. इसके अलावा कंसोल गेमिंग भी रखी है, विच इज माई फेवरेट. यहाँ पर भी 5 डेडिकेटेड कंसोल्स रखे गए हैं, स्टेशन बनाए गए हैं, और उसके अलावा निंटेंडो स्विच के सेटअप्स भी रखे गए हैं ताकि मल्टीप्लेयर गेमिंग भी हो सके, प्ले स्टेशन पर भी हो सके, पार्टी गेमिंग, कैजुअल गेमिंग. अगर आप एक्सपर्ट मोड पे हैं तो आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और

0: साथ में ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। तो ये जो प्रोफेशनल ग्रेड स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन सेटअप डिजाइन किया गया है, ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, ई स्पोर्ट्स की कवरेज और क्रिएटर फोकस एक्सपीरियंस देने के लिए। अब एक स्पेक्टेटर एरिया बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप गेम नहीं खेलते तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आपने कभी ना कभी किसी को खेलते हुए घर में देखा हो तो आप उसको चेयर अप जरूर कर सकते हैं। एक ओपन और कॉम्प्लीमेंट्री जगह है बेसिकली, जहां पे आप टूर्नामेंट देख सकते हैं, लाइव गेम प्ले आपके सामने होगा, आप ब्रॉडकास्ट दे सकते हैं और कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं कुल मिलाकर, विच इज वेरी वेरी हेल्दी इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट समबडी। एंड इसमें कैजुअल गेमिंग सेशंस भी रखे गए हैं, जो जिसका मुझे इंतजार था, फाइनली समवन सेड इट, सो आई लव द फैक्ट दैट दे हैव कैप्ट इट। और वॉक इन गेमिंग एक्सपीरियंस भी है, कोई बुकिंग वॉकिंग की जरूरत नहीं है, काफी अफोर्डेबल एक्सेस रखे गए हैं। एंड मेनली जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है कंपेरेटिव ईए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सो ईए स्पोर्ट्स अपने टूर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इनामात भी होते हैं। और जो रेगुलर टूर्नामेंट्स हैं वो होंगे मल्टीपल गेम्स के लिए, तो अगर कोई फीफा खेलता है, फोर्टनाइट के कॉम्पिटिशन रखे गए होंगे, तो जितने मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स हैं उनके कॉम्पिटिशन यहाँ पर हैं। तो खेल खेल में अगर कोई जीत जाए, कॉम्पिटिशन का मजा भी आए, तो और क्या चाहिए। पर कैजुअल गेमर्स के लिए भी जगह है, ऐसा नहीं उनके लिए नहीं है। तो जीतने का भी मौका है और कम्युनिटी एंगेजमेंट का मौका है। इसके अलावा एजुकेशन गेम्स और वर्कशॉप्स भी रखी गई हैं, ताकि खेल खेल में थोड़ी भाई पढ़ाई लिखाई भी हो जाया करे है। तो इंटरैक्टिव क्लासरूम स्टाइल जो वर्कशॉप्स हैं, वो सिर्फ आपको किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ानी कि आओ बेटा गेम छोड़ के इधर आओ पीसीएम पढ़ो, ऐसा नहीं है। इसमें गेमिंग लिटरेसी के बारे में, आई एम सो प्राउड ऑफ कतर के ऐसी चीज क्रिएट करी है जहां पे लोगों को, बड़े हों बच्चे हों, उनको गेमिंग लिटरेसी के बारे में पता लगे के फंडामेंटल क्या है, गेमिंग के ई स्पोर्ट्स के फंडामेंटल्स क्या है, डिजिटल स्किल्स किस तरीके से एनहांस की जा सकती है, और इंडस्ट्री अवेयरनेस मिलती है, तो बच्चों के साथ साथ आप भी अपडेटेड रहेंगे। और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, उसमें बाकायदा कोचिंग मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है। प्लेयर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो आगे जाके सोचते हैं कि भाई हमें भी गेमर बनना है एंड पार्टिसिपेट करना है, हमें भी इनामात जीतने हैं। यू माइट बी अ वेरी गुड गेमर बट यू नो टूर्नामेंट के लिए आपको अगर कोचिंग चाहिए तो वो भी आपको दी जाएगी। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में बता देता हूँ। सो 321 ई स्पोर्ट्स लाउंज जो है वो डिजाइन किया गया है इसके लिए। इट्स अ वेरी इंक्लूसिव इन कम्युनिटी ड्रिवन स्पेस, जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स को ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स इन्विटेशन है। प्लीज जाइए और आप एक्सपीरियंस कीजिए डिफरेंट लेवल्स एंड एबिलिटीज, कॉम्बैटिंग करके आप अफोर्डेबल गेम एक्सेस के साथ, एजुकेशन के साथ, कंपेरेटिव अपॉर्चुनिटीज के साथ अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं और खेलने का मजा भी ले सकते हैं। और जो लाउंज है ये एक तरीके का सेंट्रल हब रहेगा 321 ओलंपिक म्यूजियम में, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग है और ई स्पोर्ट्स है, इसका कल्चर कतर में बना रहे और आगे बढ़े। तो उसकी जो टाइमिंग्स है वो दिन के हिसाब से हैं, संडे मंडे वेंसडे और सैटरडे को सुबह के 9 से रात के 7, फिर ट्यूसडे को ये बंद रहेगा। सो इट इज क्लोज्ड ऑन अ ट्यूसडे, तो इस बात का ख्याल रखें। ऑन थर्सडे सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और ऑन अ फ्राइडे दोपहर के 1:30 बजे से 1:30 PM से 7 PM तक। तो दिस इज हाउ इट इज फ्लोइंग फॉर नाउ। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं एंड समर कैंप की तरफ इशारा आया है भाई करने के लिए, और ये तवर मॉल की तरफ इशारा है। तवर मॉल इज वन ऑफ माय फेवरेट मॉल्स, मैं पहली बता दूं, पहली बात तो भाई इतनी पिक्चर देखी है, इतनी पिक्चर देखी है, और वहीं की खबर है कि समर कैंप वहां पे लगाया गया है। आप पूरी फैमिली के साथ सकते हैं, यू कैन जस्ट किक ऑफ समर्स फ्रॉम द बैक डोर, और अपना वीकेंड भी आप यहीं पे मना सकते हैं। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, लाफ्टर और समर मैजिक यहाँ पर आपको मिलेगा। ये डिजाइंड है वेरी वेरी स्पेशली बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। ये इंटरैक्टिव इवेंट जो है ऑफर देता है बच्चों को और बड़ों को जो उनके साथ आए हैं, ताकि दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट एंड उनकी उनका जो रिश्ता है वो इस खेल खेल में और डेवलप हो सके। इसके इवेंट्स की डेट है वो जा चुकी हैं, प्रीटी शोर जो आप मुझे सुन रहे हैं, 21 अगस्त 2026, और लोकेशन रही इसकी 5:30 बजे ऑनवर्ड्स तवर मॉल में, एंड इट वाज ओपन टू पब्लिक और फैमिली फ्रेंडली भी। तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स और क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई गई होगी, एम्पटेश्वर बाद में पूछूंगा, मगर इट इज़ सच अ वाइब टू बी इन सच प्लेसेस, और बच्चों के मजा आ जाते हैं, तो ऐसे इवेंट छोड़ने नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इवेंट जो आपके हाथ से फिसल ना जाए तो मैं ज़रा बता देता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: टॉय

फेस्टिवल के बारे में सुना है किसी ने? टॉय फेस्टिवल 2026, मैं इतना कहूंगा मेरा फेवरेट है भाई, मुझे बहुत मजा आते हैं भाई। पिछले जितने भी टॉय फेस्टिवल्स हुए कतर में उनमें जाने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगता है। इस बार भी टॉय फेस्टिवल जो है वो जो ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, जो इसमें हो जाता है भाई। देखो 30 सितंबर 2026 तक ये इवेंट है कतर टॉय फेस्टिवल का, एंड टाइमिंग जो है वो ईच एक्टिवेशन पे डिपेंड करती है अलग अलग मॉल के। तो फिलहाल तमार मॉल का बता रहा हूँ, मिस्टर बीन समर फन विद टेडी, टेडी एंड बीन, ये लोकेशन अल हजम है अलग अलग मॉल्स में, क्योंकि जो बारबी है उसकी जो समर बताई गई है काफी कलरफुल बताई गई है, एंड इट इज वेरी बारबीश, बारबीश इफ दैट इज अ वर्ड। सिटी सेंटर में इनका रखा गया है, सिटी सेंटर दोहा, टाइमिंग्स वीकली 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और जो प्राइसिंग प्राइसेस एंट्री है वो भी इट्स 100 रियाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 100 रियाल ही है। तो भाई देख लो, जिसने मजे करने जा रहे हैं भाई, ये बिल्कुल सही जगह है, बड़ी कैट जगह है, यहाँ आपको जाना ही जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही खास चीज जो है वो कतर में हो रही है, दैट इज अरक, ग्रेट इंडियन गिग, जो कतर की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन लाइव म्यूजिक और कल्चरल एक्सपीरियंस को लेकर आएगी कतर। ये होने वाला है 2026 को और होने वाला है वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर QNCC। ये वाला जो इवेंट है दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेलिब्रेटिंग कतर एंड अल्कलाइन प्रोजेक्ट, और जो इवेंट है वो मैनेज किया है क्यूब एंटरटेनमेंट ने। इसी के साथ बहुत सारा लंबा लाइनअप है एंड काफी काफी बड़ा इवेंट ये होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्सर्ट जिसमें बेनी दयाल हैं, विजो हैं, आदर्श हैं, अमिता रंजन हैं, पूजा वेंकट हैं, और स्पैनिंग बॉलीवुड, टॉलीवुड, तमिल, सबके सब यहाँ पर ही आते हैं। सो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड करक ऑफिसर्स का जो क्या कहते हैं वाइब्रेंसी है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। बहुत अच्छे से इन्होंने चीजें किए हैं, किरदार भी निभाने को मिला है लोगों को, तो उनका ही फायदा और आपका ही पैसा, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो फैमिली के साथ पहुंचे, अपने साथ यंग म्यूजिक लवर्स ले जाना चाहें तो उनको भी ले जाएं, बट डू एंजॉय दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी वन क्रेजी इवनिंग फॉर श्योर। अब जरा आगे बढ़ लेते हैं आगे वाले इवेंट्स में, उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद हैं, तो प्लीज हमसे भी हाथ मिलाइए, जरा हमसे मिल लीजिएगा। फिलहाल तो FNB की बात चली तो उस बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो डेडिकेटेड FNB स्टॉल्स और हाई एनर्जी एटमॉस्फेयर है वो करक के इस प्रेमाइसिस को और भी ज्यादा अनफॉरगेटेबल बनाएगा। इस म्यूजिक कल्चर और कम्युनिटी सर्विस सबका सब आपको मिलने वाला है। दिस विल गोइंग टू हैपन ऑन 11 सितंबर, और दरवाजे खुल जाएंगे 5:30 बजे से और 6:30 बजे मामला शुरू हो जाएगा। 10 बजे बोल रहा था, तो आप समझ गए ना, आप जज्बात समझिए मेरे। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन, Qatar 2026। अगला जो है ये मुझे बहुत क्यूट लगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसी वाली मतलब मेरी आवाज निकल गई। तो किटी कैफे एकेडमी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द किटी कैट फैमिली। सारे के सारे कैट लवर्स, छोटे बड़े सबके लिए है ये, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और इसके लिए पूरी वीकेंड शॉप रखी गई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कैट किस तरीके से फन हो सकती है। वो ऐसा नहीं कि सर नाखून नाखून मार रही है, मगर बिल्ली भी अच्छा खासा सीख सकती है, इस इवेंट से आपको पता लग जाएगा। एंड ये बहुत ही शानदार इवेंट है, एंड बेसिक जो तरीका है किसी भी सपोर्ट करने का किसी को, वो इसमें दिखाया जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी किटी कैफे कतर। ये किटी कैफे बिसाइड द क्यू फाइट जिम में है और प्लेस वेंदोम के पीछे ओके। और 23 अगस्त से 25 अगस्त तक इवेंट होगा, दोपहर के 1 बजे से शाम के 3 बजे तक। सो ये कुछ इवेंट है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कागज के बाद आपको आई गई होगी, डोंट वरी, वो आती रहेगी, क्योंकि मुझे भी पलट पलट के दिखना पड़ता है कि आज किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो किड्स एक्सपो 2026, इट रियली स्टैंड्स एज अ पायनियर। लोग भी जानते हैं कि ये जो इवेंट है वो हल्का फुल्का इवेंट नहीं है, किड्स एक्सपो भले ही आ रहा है लेकिन ये मोमेंटरीली ऐसा हो जाता है कि हॉल्ट पे रहता है, क्योंकि इसमें विजिट करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस बार आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। सो ये इवेंट पूरा पूरा खास है मेरे लिए, एंड आप रजिस्टर भी कर सकते हैं किंग किड्स एक्सपो 2026 के लिए, या अपनी स्टैंडिंग इसमें बुक करके बता सकते हैं। जो टिकट है वो 206 से शुरू होता है, एंड ये जो इवेंट है बेहद खास है।

एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि ये इवेंट बढ़िया से बढ़िया काम करे और बढ़िया से बढ़िया कमाए. ऑल राइट, 666-22107 नंबर है एंड आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से. और बीच में जो है मैसेज वैसेज कर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं. Qatar 2026. अब हाला समर कैंपेन की तरफ आ जाते हैं जहां पर बात चल रही है शॉपिंग की. यस, जब भी फेस्टिवल यहां पे आता है शॉपिंग का, मैं नहीं मानता मेरे साथ किसी को एक्साइटमेंट होती होगी. सही बता रहा हूं, मैं तो घूमने निकल जाऊं ऐसे ही मेरा बस चले तो. और इस बार आपको घूमने नहीं देंगे. ये हालर समर जो कैंपेन लेकर आए हैं इसके बारे में बहुत कुछ छपा हुआ है एंड आई थिंक ये काफी एक्सक्लूसिव शॉपिंग और डाइनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है अक्रॉस कतर. तो क्यों नहीं, वाई नॉट विजिट अ थिंग, विजिट अ प्लेस जहां पे हम गए नहीं. एंड इसके अलावा जो कतर का जो लीडिंग मॉल है मंथ लॉन्ग फेस्टिवल होस्ट करने वाला है जिसमें प्रमोशंस, सेट मेन्यूज और वैल्यू एडिड एक्सपीरियंस है एंड स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को रिटेल और डाइनिंग डेस्टिनेशंस में. तो इसलिए मैंने कहा था कि स्टेकेशन वगैरह थोड़ा बेहतर है अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है. थोड़ा घर से निकलना चाहिए नौ फ्लोर्स को अवेल करने के लिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये और भी डेस्टिनेशन पर होगा जिसमें प्लास वेंदोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, दोहा सेंटर है, लैंडमार्क है, दोहा मॉल है एंड हायत प्लाजा भी है. तो इन तमाम जगहों पर ये इवेंट होने वाला है समर हाला समर कैंपेन. एंड मोस्टली जो मॉल्स ऑफर करते हैं वहां पे भी आपको बहुत बहुत भर भर के ऑफ मिल सकता है इंशाल्लाह. दुआ करते हैं. ठीक है भाई सब, ओके अब जरा आगे बढ़ लेते हैं एक और इवेंट की तरफ. Qatar 2026. ये जो इवेंट है ये किड्स एक्सपो से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं मैं. तो एक टिप्पणी करी थी किसी ने मुझसे बोला कि आप ये बताइए कि ये जो है जो खबरें होती हैं ये कहाँ से आती हैं. तो मैं रास्ते में प्रमोशन कर देता हूँ, मैं कलर बता देता हूँ. तो बेसिकली क्या है कि ये सारी जो खबरें हैं ये आती हैं कतर लिविंग के पेज से, ऑफकोर्स ये आती है कतर इवेंट्स के पेज से, कतर कैलेंडर से. तो अगर आप इत्तफाकन कोई चीज़ भूल जाते हैं जो मैंने आपको बताई है, आप ऑफकोर्स जाके रीचेक कर सकते हैं. कोई इवेंट आपको मिलता है और आपको लगता है ये इवेंट तो मैं जाके बताऊंगा, तो बिल्कुल होल्ड ऑन नहीं करना, ये आपको बताना ही बताना है. ठीक है, अब जरा हालर समर कैंपेन की तरफ पूरी तरीके से आ जाते हैं. तो आप जब कतर विजिट करते हैं, आप शायद पहली मर्तबा यहाँ पे आए हों या आप 10-20-30 सालों से यहाँ रह रहे हों, लेकिन कतर हैज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड. और यहाँ पर गर्मी का मतलब ये नहीं घर से बाहर निकल रहे, गर्मी का मतलब उल्टा शॉपिंग हो जाता है. एंड इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए क्योंकि कतर के लीडिंग मॉल्स में ये ऑफर शुरू हो चुका है. तो प्लेस वेंदोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलाजियो सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल और ये हायत प्लाजा के आसपास, इन तमाम जो मैंने आपको नाम लिए यहाँ पर यह हाला समर कैंपेन जारी रहेगा. एंड कुछ चेंजेस आए अगर इसमें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट मीनवाइल यू हैव टू वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar एंड मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा मैसेज है जो आपके दिल में है और आप कर नहीं रहे, कर दीजिए बिंदास. 666-22107 और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar और मैं कबीर आपके साथ. अब देखिए ये सारे इवेंट्स हो गए लेकिन एक इवेंट इनमें अभी भी बाकी है और वो है बच्चों में एक्सपो के जरिए इंटेलिजेंस पैदा करना और उन्हें बताना कि कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है. तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, उनका खास करके ध्यान रखें एंड स्प्रेड अवेयरनेस एज मच एज यू कैन, बिकॉज ऐसे ही इवेंट्स आते रहेंगे. इनफैक्ट फुल बॉडी चेक के जो इवेंट्स आते हैं तो उसको तो लोग बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं, उससे पहले करने में क्या दिक्कत आती है. तो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस और आप मुझसे भी रابطہ कायम कर सकते हैं और आराम से हम लोग बातचीत कर सकते हैं. इसके अलावा जो मैक्स अमीनी का जो होने वाला है कुछ टाइम में, बिकॉज इट गॉट डिलेड फॉर सम टाइम, तो वो अभी होता हुआ नजर आ रहा है. लेट्स सी क्या होता है. आई एम सुपरली एक्साइटेड एंड आई वॉन्ट टू सी इट फर्स्ट हैंड, बट देखते हैं. एनीवे 666-22107 नंबर है एंड आप भी मुझे बता सकते हैं कि कोई जगह आपको अच्छी लगी हो, किसी इवेंट में आप गए हो एंड यू वॉन्ट टू शेयर इट. कैटेगरीज बड़ी सिंपल है, कोई फैमिली इवेंट होगा तो कोई पूरा का पूरा गोल्ड

0: है वो शेप में आइकन्स, आइकन्स कह रहा हूँ, गोल गोल घुमाएगा कोई, और कोई आपको जो इवेंट ऐसा है कि आपको बस छा जाएगा, आप वेट करेंगे अगले साल कब इसका सीजन टू आएगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी स्पेशल. एंड 666-22-107 में नंबर बार बार इसलिए बीच में बोल देता हूँ कि कहीं आपके दिमाग से स्लिप हो गया तब भाई सब दिक्कत हो जाएगी, तो स्लिप नहीं होने देना है. इसके अलावा कुछ दिनों पहले निकला है लोकल डेट्स फेस्टिवल जो कि बहुत शानदार गया है, एंड काफ़ी टनों के हिसाब से जो है लोगों ने खजूर खाए हैं. एंड ये इवेंट गया, अभी कलर वर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है. ये एक छोटा सा रिवीजन है जो मैं आपको दे रहा हूँ. एंड ऑल दीज इवेंट्स आर रियली रियली वेल डन, रियली रियली वेल कवर्ड. एंड अगर आप भी देखना चाहें तो कतर कैलेंडर पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. कतर कैलेंडर के बारे में भी पता लगेंगे आपको, तो इवेंट्स अपने आप ढूंढने लग जाएंगे. एंड कोई भी अगर नया आया कतर में, वेलकम है मेरी तरफ से. और मैं आपको ये सजा नहीं दूंगा, सॉरी वो तो मैंने बंद कर दिया था. आपको मैं सच्चाई बताऊंगा, जितने भी लोग नए हैं प्लीज जाइए, हर जगह जाइए, अपने आप को किसी भी जगह से घूमने फिरने से रोकने का नहीं, बिकॉज कतर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, रैपिडली ग्रो करता है. और कमाल की बात है कि जब भी ग्रो करता है तो अपनी हेरिटेज को साथ में लेकर चलता है. ये मैंने सीखा है. तो वही मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपसे सीखते रहें, हमें बताते रहें आपके शो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है. 666-22-107 के अलावा FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. ऑलराइट. एंड दो तीन जो डोम के अंदर, स्पायर डोम के अंदर वॉकिंग का और चलने का हो रहा था वो भी हुआ. और ये इसके बाद एक और इवेंट है जो कि आने वाला है, बहुत जल्दी साइकिलिंग से जुड़ा हुआ इवेंट है वो, इंशाल्लाह वो भी अगले मंथ में होगा. लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि जनवरी में होगा वो गाड़ियों से जुड़ा हुआ है. एंड ऑल द कार एंथूजियस्ट यू नीड टू असेंबल, क्योंकि हमें ये तो रिवील करना ही करना है. तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, ये करने के बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो भाई साहब आपके मन में क्या दिक्कत है ये बताएं आप. कितना मतलब कितना चाहिए आपको? 666-22-107. आई रिक्वेस्ट यू कि हमें भी जरूर अपनी स्टोरीज में टैग करें और हमें बताएं कि आपका स्टेकेशन कैसा जा रहा है. एक दो दिन पहले किसी ने मुझे टैग किया था और फिर वो टैग करके भाग गए. मैंने उनका रीपोस्ट भी करना चाहा, बट व्हेन आई गॉट द मैसेज इट गॉट डिलीट. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कबूतर पे चिट्ठी बांध के दी थी इसलिए मुझ तक देर पहुंचा, इट्स जस्ट दैट मैंने देखा बाद में. तो आप प्लीज टैग कर दिया करें हमारे ऑफिशियल पेज को, FM 107 Qatar को. एंड जब उस पर आप एक बारी क्या कहते हैं हमें फॉलो कर लेंगे तो एक तो आप हमें टैग कर पाएंगे स्टोरीज में, दूसरा हमारे पास कोई नई स्टोरी या कुछ भी होगी, कोई जगह होगी तो हम आपको जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे. एंड आई रिमेंबर मैसेज किया था मुझे अशफाक भाई ने, और अशफाक भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बताया था कि कतर 2026 नाम क्यों है. भाई सबसे सॉलिड नाम है ये, कंट्री का नाम और सीधा साल का नाम, ये मेटाफोरिकली बहुत खूबसूरत लग रहा है तो इसलिए हमने रख लिया भाई, और कुछ नहीं. अच्छा तो इसके अलावा अमीनी, मैक्स अमीनी की जो कॉन्सर्ट की बात हो रही थी कुछ दिनों पहले वो भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत आप इंतजार कीजिए. उसके जब टिकट जैसे ही अनाउंस होंगे तो आपको टिकट्स की इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाएगी. तो ये थे सारे के सारे इवेंट्स, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. इंशाल्लाह अब आपसे अगले शो में इसकी मुलाकात होगी, ये जब भी होगा कतर 2026. एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. जैसे मैंने पहले कहा अभी बोलूंगा, यू कैन टैग अस इन योर स्टोरीज और कोई जगह आपको मिल जाए, सो जस्ट लेट अस नो. ओके, सो ऑन दैट नोट दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले शो में, और रابطہ कायम इसी तरीके से करते रहिएगा. आपको लगता है कि भाई सो कॉल्ड हिडन जेम कोई आपके हत्थे चढ़ गया और हमें नहीं पता है, या पब्लिक को नहीं पता होगा, तो जरूर जरूर बताया जाए कृपया करके. एंड कुछ भी आपके मैसेजेस हैं तो आप बिंदास क्या करें, आपके मैसेजेस हमारे लिए जरूरी हैं, हर शो के लिए जरूरी हैं, नॉट जस्ट दिस वन. एंड ऑल्सो दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
1: Qatar 2026, Qatar 2026.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया

0: blueprint. Blueprint. Simple style, big impact. Personal growth हो या tech revolution, अपने ideas को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. आज ही. सुनिए Next Gen, RJ सफा और RJ अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर. दिल से देसी.
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की.
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना ना भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107
4: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हमारी जिंदगी में खाने पीने की चीजों की फरावानी है। एक वक्त में कई कई पकवान, दिन में बार बार खाना और फिर ये फिक्र कि आज क्या खाएं, कल क्या बनाएं, कौन सा नया जायका आजमाया जाए। नेमतें यकीनन अल्लाह ताला का फजल हैं और उनसे फायदा उठाना मना नहीं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने पीने का मामूल कैसा था? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم نے ایک دن میں دو وقت کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ ان میں سے ایک کھانا کھجوریں ہوتی۔ سامعین کرام، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں، अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आप मुसलमानों के कायद हैं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी इंतहाई सादा है। सामिन किराम, इस्लाम हमें नेमतों से मना नहीं करता। सादा जिंदगी का मतलब ये भी नहीं कि इस्लाम अच्छी गिज़ा, अच्छे लिबास या अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाने को नापसंद करे, बल्कि उसका मतलब ये है कि नेमत हमारे हाथ में हो लेकिन दिल में उसकी ऐसी जगह न बन जाए कि उसके बगैर हम बेसुकून हो जाएं। वैसे आज के दौर का एक और अलमिया ये भी है कि हम अपनी नेमतों को देखने के बजाय दूसरों की नेमतें देखते रहते हैं, और इसी के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी मामूल लगने लगती है। हालांकि मुमकिन है हमारे पास वो बहुत कुछ मौजूद हो जिसके लिए कोई दूसरा शख्स हर रोज़ दुआ कर रहा हो, और इस वजह से ज़रूरी है कि हम किफ़ायत शियारी को अपनाएं, कनात इख्तियार करें, क्योंकि कनात इंसान की नज़र को दूसरों की झोली से हटाकर अपनी नेमतों की तरफ ले आती है। एक और बात यह भी है कि नेमत की कदर तब आती है जब हर ख्वाहिश फौरन पूरी ना हो। अगर इंसान की हर ख्वाहिश फौरन पूरी होती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता नेमत की कदर कम होने लगती है। पहले जो चीज़ खुशी देती थी अब वो मामूली लगने लगती है, फिर उससे बेहतर चाहिए, फिर उससे भी बेहतर, और यूं ख्वाहिशात की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। नबवी जिंदगी हमें एक मुख्तलिफ मेयार देती है कि ज़रूरत पूरी हो जाए तो शुक्र कीजिए, जो मुयस्सर हो उसे नेमत समझिए, और जो मुयस्सर ना हो उसकी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को उदास न बनाइए। और इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए कभी सादा खाना भी खुशी से खाएं, खाने में ऐब ना निकालें, ज़रूरत से ज़्यादा ना मंगवाएं, बचा हुआ खाना ज़ाया ना करें, بچوں کو ہر خواہش فوراً پوری ہونے کا عادی نہ بنائیں اور جب اچھا کھانا رزق اور فراوانی میسر ہو تو اسے اپنا حق سمجھنے کے بجائے اللہ کا فضل سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے، شکر ادا کرنے، فضول خرچی سے بچنے اور سادگی و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
3: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेरिना शेख के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेरिना शेख कतर की उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होती हैं और उनका नाम सेरिना विलियम्स से एक्चुअली इंस्पायर्ड होकर रखा गया है और कम उम्र में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत कतर के लिए कई अहम टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और मुस्तकबिल की रोशन उम्मीद के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। सेरिना की सबसे बड़ी कामयाबियों में WTT यूथ कंटेंडर सीरीज के अंडर 13 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतना शामिल है। इस शानदार कामयाबी ने उनकी टैलेंट को बैनुल अक्वामी सतह पर उजागर किया और ये साबित कर दिया कि वो मुस्तकबिल में कतर की बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ियों में शुमार हो सकती हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान कॉन्फिडेंस और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करते हुए मजबूत मुख्तलिफ खिलाड़ियों का मुकाबला किया। सेरिना रोजाना ट्रेनिंग और मुसलसल प्रैक्टिस के जरिए अपनी स्किल्स को बेहतर बना रही हैं। उनकी तेज रिफ्लेक्सेस, फोकस और कोर्ट पर पुरसुकून मिजाज उनकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल हैं। कोचेस भी उन्हें एक ऐसी खिलाड़ी करार देते हैं जो मुस्तकबिल में कतर के लिए मजीद कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। आज सेरिना शेख कतर के नौजवान एथलीट्स के लिए एक मिसाल बन रही हैं। उनका सफर ये पैगाम देता है कि अगर कम उम्र से ही मेहनत और लगन के साथ ट्रेनिंग की जाए तो बैन अक्वामी सतह पर भी मेडल्स जीते जा सकते हैं और मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवेंस और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रियर लाइटिंग का काम करना, रियर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवेंस या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवेंस का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवेंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है, ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो, जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि हंसी किस तरह हमारी जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और खानदानी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। जब हम खुश होते हैं और हंसते हैं तो जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। अगरचे हंसी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये सेहतमंद तर्ज जिंदगी का एक मुस्बत हिस्सा जरूर बन सकती है। मुदाफती

जारी है। अब बात कर रहे हैं बैठक इधर से उधर हो रहा है, यानी मूवमेंट वो भी है, जिस्मानी तौर पर आप वो आपकी सरगर्मी है, साथ साथ आप एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ क्या हो रहे हैं मुंतकिल हो रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ आपकी बातें हो रही हैं। ठीक है, ये तो हकीकी ज़िंदगी की बात है। और फिर एक मजलिस से दूसरे मजलिस में जाने के लिए आपको फिर एक घंटे की ज़रूरत है, और वहाँ पर जाकर कोई दूसरे हंसी कॉन्टेंट हो जाए तो वो और भी दो तीन घंटे का मसला। तो देखें, वाकई ज़िंदगी में अगर हम लगातार हंसना चाहें तो हमें तगुदों की काफ़ी ज़रूरत होती है। हाँ, इस तरह के लोगों को जमा करना, फिर अपने पैसे भी खर्च करना, इंतज़ाम वगैरह, खाना वगैरह का इंतज़ाम हो जाए, दरमियान में खाना वगैरह भी चलते रहे, ये वो, ये भी बात आ जाती है। लेकिन अब ऑन द डिमांड आप यानी अपने मोबाइल फ़ोन में रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं ऑन द डिमांड, क्योंकि आप इंटरटेन जो कंटेंट है, जो मज़े के जो कंटेंट है, वो आपको देखने के आप इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, तो आपकी डिमांड के मुताबिक वो आपको वैसे ही कंटेंट बार बार दिखाया जा रहा है, एक के बाद एक आप हंसी के कंटेंट देखे जा रहे हैं। तो बैक वक्त अगर आप इतने सारे कंटेंट सिर्फ हंसी के देखें तो आपको क्या लगता है कि यह क्या कि यह फितरत की ज़िंदगी है? नहीं, ज़ाहरी ज़िंदगी में अगर आप ऐसे जैसे मैंने कहा आपको इस तरह के काफ़ी सारे हंसी का हम तो दो तीन घंटे गुजार देते हैं, दो तीन घंटे सिर्फ हंसी के कंटेंट और ये इतने सारे भारी भारी मामलात, ये वो कभी कोई बहरान की बात आ गई, कभी यहाँ की बात आ गई, वहाँ की बात, ज़ाहरी ज़िंदगी में इन तमाम तकरीरों को सुनने के लिए, हंसी कंटेंट को आपको देखने के लिए किसी वाकई शख्स से, वहमी यानी डिजिटल शख्स से नहीं, वाकई किसी शख्स से इस तरह की बातें सुनने के लिए आपको कभी यूनिवर्सिटीज़ के उसमें जाना पड़ेगा, कभी मस्जिद के उसमें जाना पड़ेगा यानी हॉल में, कभी आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, कभी फिल्म वगैरह के हवाले से बात हो, मज़ी मजाक हो, तो वहाँ भी काफ़ी सारे वो थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ यानी काफ़ी आपको अपने मूवमेंट की ज़रूरत है। आप बैक वक्त तो ये सब काम एक साथ नहीं कर सकते, तो जब आप बैक वक्त ऐसा कर रहे हैं तो इसके नताइज क्या निकल रहे हैं, इसके नताइज क्या हैं, कभी आपने इस पर सोचा है? अच्छा, आज बहुत ये जो मौजू है, ये मौजू काफ़ी रिलेटेड है सेहत के हवाले से भी, दीन के हवाले से भी, सेहत और दीन। ठीक है, सेहतमंद तरह से ज़िंदगी ये ज़रूर तकाजा करता है कि आपने जो है ना दीन की पासदारी करनी है, दीन के इत्तबा करना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर बैक वक्त आप कई सारे वीडियोज़ एक साथ देख रहे हैं तो इसमें हार्मोन के जो इश्यूज़ हैं वो आपके बैक वक्त डिप्रेशन यानी कई सारे हार्मोन्स बैक वक्त वो हमले कर रहे हैं एक साथ आप पर। आपको पता है कि हार्मोन अगर इस तरह गैर मुनज़्ज़म हो जाए तो उसमें आपकी जो है ना सारी तवज्जो और सब कुछ ही मुतासर हो जाती है। अच्छा, वही इसी वजह से जब हम देखते हैं कि बंदा जब काफ़ी वक्त से ये सोशल मीडिया वगैरह देख रहा है, अचानक से अगर कोई कुछ बात कहे उसे तो वो सही से नहीं ले पाता, और कहीं उसे ख़ास कोई धमकी की यानी ऊंची आवाज़ में अगर उससे कुछ कही जा रही है, फिर उसको ज़रा उसे ख़राब लग जाए बात, अरे तुम मुझे इस तरह क्यों कह रहे हो, यानी सब्र तहम्मुल बाकी नहीं रहा। वही बात, अगर आप सोशल मीडिया से दूर बंदा ठंडा यानी मूड में है तो वो कभी इसको कुछ समझेगा ही नहीं, अरे आम सी बात है, इसमें यानी मुझे इतना वो अपने दिल में इतना चोट लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो सब्र व तहम्मुल इस हार्मोनल इशू की वजह से, सब्र व तहम्मुल यानी ये अपने जड़ से उखाड़ दिया गया इस बर्दाश्त के मामले को, इसी वजह से आज शौहर बीवी को यानी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बीवी शौहर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, यही मामला ना जैसे चले, इस दुआजी ज़िंदगी काफ़ी मुतासर है, क्योंकि हर कोई मोबाइल फ़ोन में पड़ा हुआ है, और वो जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ऑन द डिमांड मुझे जैसे कि मैं ऑन द डिमांड जैसे अच्छे अच्छे सजे हुए खूबसूरत लोग देख रहा हूँ, तो ऑन द डिमांड मेरे शौहर भी
उस तरह जो है ना वो हर वक्त ऐसी पर्सनैलिटी की हो।

हर वक्त वो सबसे अफजल मूड में हो या फिर बीवी हर वक्त उस अफजल तरीके से पेश आए, जो मैं ऑन द डिमांड जैसा कि मैं जब भी यानी क्या करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीन, वैसे मुझे आ जाता है तो वैसे ही मुझे वैसे मिल जाए, तो वो सब्र का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो गया सोशल मीडिया के वजह से. और सब्र वो मात्रा कम सब्र या लदीना मनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला. नमाज से पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने सब्र को मेंशन किया. इसका क्या मतलब है कि इस्लाम ने अखलाक को जो है ना, अखलाक रवैयों को, इंसानी रवैयों को इसकी बहुत अहमियत दिलाई है कि भाई आपने सब्र के जिस रवैये को अपनाना है अगर आप वाकई एक कामयाब मुआशरा चाहते हैं. तो कामयाब मुआशरा की तश्कील के लिए सब्र बेहद ज़रूरी है, इसके सिवा कोई चारा नहीं. साबरीन के हवाले से भी कुरान में काफ़ी जगह में उनकी बार बार तारीफ और ये बताया गया है कि मोमिन जो है ना वो साबिर होते हैं. अच्छा, तो सब्र के बाद फिर नमाज की बात आई है. तो ये दो, और सब्र में सब्र के जितने अकसाम हैं तो हो सकती हैं इसमें सब्र अला ताअ, सब्र अनिल मासी, ठीक है. तो ये तमाम बातें आ जाती हैं शामिल. मैं तो उस तकरीर की तरफ नहीं जा रहा कि भाई मैं तकरीर के लिए बैठा भी नहीं हूँ, बल्कि भाई ज़ाहिर सा यानी आसान सवाल है कि क्या भाई आपने ऐसा कोई यानी वक्त गुजारा है जिसमें भाई मैं सोशल मीडिया वगैरह से दूर था और फला नतीजा मैंने ये देखा अपनी ज़िंदगी में. पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा सोशल मीडिया के साथ ही मैं जब था मुझे अच्छा लगा, मेरे दिली सुकून दिली तौर पर मुझे तसल्ली मिल रही थी, लेकिन अब जो है ना सोशल मीडिया के बगैर मेरा जीना हराम हो गया. जो भी है आप बताइए भाई, आसान सवाल है, इसमें कोई इतनी पेचीदगी नहीं है. ओवरऑल आप लोगों से सुनेंगे कि आपकी क्या राय है इस सिलसिले में. काफ़ी अहम मौजू है खुसूसन इस दौर में, चूँकि अब देखें फितना जो है ना ये इंसानी रवैयों के हद तक चैलेंजिंग जो है ना इंसानी रवैये तक अब ज़्यादा वो आ गया है मौजू इसके अहाते में, चूँकि काफ़ी सारे वसाइल वो हमारे बस के नहीं रहे. आलमी तौर पर जितने भी आपकी ये प्रोपेगेंडा और ये मुआमरात और बात यहाँ तक पहुँच के भी हमसे तो कुछ नहीं किया जा सकता. जो भी हो रहा है दुनिया में हम क्या करेंगे, तो हम जो क्या करेंगे अब इस सवाल के बाद जो है ना आहिस्ता हमारे रवैये जो भी हैं ये तो काफ़ी बर्बाद हो गए. तो ये क्यों बर्बाद है, इस सिलसिले में हमारे अपने लिए कुछ करने को नहीं है क्या? तो ये काफ़ी अहम सवाल है. और चूँकि हम बेहिस हो गए, बेसब्र हो गए और काफ़ी सारे हमारे अखलाकी जो उमूर हैं इसमें हम इन्हितात और जवाल के शिकार हैं, तो इसी वजह से बड़े पहलू पर भी उम्मत यानी उस तरह तरह के फितन और मसाइल के शिकार हैं. तो छोटे छोटे मसाइल फिर बड़े बन जाते हैं, मसला वही है. अब जब मैं अपनी इस मुआशरे की सतह पर, इलाके की सतह पर, ज़ाती सतह पर, इनफरादी सतह पर जब इस तरह के मामलात तो हम देख रहे हैं कि हर किसी के घर में है, हर कोई आज सोशल मीडिया में इतना जो है ना वो इतना वक्त दे रहा है. तो अगर आप हर किसी को देख रहे हैं ऐसा तो ये आलमी मसला है, तो उम्मत का मसला है. तो उम्मत जब इस तरह जो है ना गफलत में और बेसब्री में वो यानी बेसब्रा है, बेसब्रा कहते हैं ना इसे क़ुरान में सिलसिले में एक आयत भी है सूरतुल आदियात में, इन्नल इंसान लरब्बिही लकनूत, इंसान बड़ा बेसब्रा है यानी वो इनकार कर बैठता है ये वो. तो अब हकीकत में तो वो है ही बेसब्रा, फिर जब उसको इस तरह के कुछ वसाइल भी मिल जाए जो उसे और भी सब्र के ख़िलाफ़ लेके जाए तो ज़ईफ़ तो है ही, तो और भी ज़ौफ़ के बायस ज़ौफ़ की तरफ ले जाएगा उसे. तो इस वजह से हर वक्त हमें इस अपने ज़ौफ़ की जो एक जितने बुनियादी मसाइल हैं इसे दूर करने के लिए वही के कुछ पैगामात होते हैं. इंसान उस अपने कमज़ोरी को दूर करने के लिए उस बालातर जो आसमानी जो तालीम है

0: थिंकर के बजाय फॉलोअर क्यों बने, हमें वो लोग ना एहसास कमतरी में मुलव्वस कर देते हैं या हम लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। अब देखते हैं ना, ये मॉडल का मोबाइल, ये मॉडल की गाड़ी, ये इस तरह के फैशन, इवन अभी बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल भी आपको यूट्यूब्स पे और इन जगहों पे मिल जाते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो आपकी मेंटल जहनी कैफियत से कैसे खेलते हैं। तो हमें एजुकेट होने की जरूरत है कि बड़ी सिंपल चीज़ है, लोग ना किसी बात पे खुश हैं या कुछ कर रहे हैं, पार्टी नहीं, पार्टी बाहर जाके खाना, यानी बाहर जाके आप 4-5 गुना खर्चा भी करें और भी करें, वाई नोट। के एक ज़माने में हमने खुद देखा है, घर में मिलके हम मिलके कुछ बनाते हैं, दे इन्वॉल्व, हर बंदा कोई अपनी एक्सपर्टीज और लर्न भी करता है, सीखता भी है और इकोनॉमिकली भी वो है, और आपकी एक पार्टिसिपेशन उसको ज़्यादा अच्छा बना। फिर उसके बाद उसका एक वो होता है कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है उस पर तासुरात क्या है। तो आपने पैसे भी खर्च किए और इन खर्चों के लिए हर बंदा मशीन बन गया है, हर बंदा कमाना चाहता है इन चीज़ों को। अच्छा, और इसको जैसे आपने यहाँ थोड़ा सा गौर करें, जब बेवरेजेज ये कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाए थे
1: जी जी।
0: और ये इस तरह से तो लोगों को ये बावर कराया गया था कि आपके अगर कोई मेहमान आएगा, अगर आपने उसको ये पेश नहीं की ना, तो आपने उसकी इज्जत नहीं की। और ऐसा ही हमने देखा है, उसके घर गया, यार उसने तो मुझे बोतल नहीं दी, उसने मुझे मेरी इज्जत नहीं की, उसने चाय पिला दी, वो कुछ खिला दिया। यानी ये तासुर हमारे जहन में वो डालते हैं, लेकिन अब थोड़ी एजुकेशन अवेयरनेस उसकी वजह से ग्रेजुअली आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा कि जितना आना चाहिए। हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और बाकी हमारा दीन एक फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली में सुकून है और फैमिली में ये मसले मसाइल नहीं है। और इन चीज़ों पे जो बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर फैमिली।
1: सही सही, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी, यानी जब कोई बंदा जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ यानी कॉफ़ी वगैरह पीने का वो आदि रहता है, तो उसे एक वक्त पर जाके उसे ऐसा लगता है कि सुबह को अगर चाय ना पी हो तो उसे लगता है कि भाई दर्द, यानी सर दर्द शुरू हो गया। तो यानी हमने अपने जिस्म के लिए या अपने नफ्सियात के लिए एक मखसूस लेवल को मामूल समझ लिया है, और फिर जब वो चीज़ें नहीं मिल रही तो हम गैर मामूली हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो इस वजह से यानी हम अपनी फितरी ज़िंदगी से कहीं दूर भटक गए हैं, ये हकीकत है। बिल्कुल
0: बिल्कुल साहब, सही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें चाय या कॉफ़ी, इनके फ़ायदे हैं एक लिमिटेड हद तक के, लोग 4-4, 5-5 गिलास कप या जो बैठ के पी रहे हैं, हमें याद है हमारे बचपन में। लेकिन अब हमने अपनी जो एक जो लोकल लाइफ है ना, हमने उसको भी छोड़ दिया। सबसे पहले ये माइग्रेशन देहातों से गांव की तरफ। अच्छा, मेरा एमिरेट्स में मुख्तसर में बात करूंगा, रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ है 8-9 साल, और वहाँ डीपली जिसको आप विलेज एरिया समझ लें कि वहाँ, तो वहाँ गवर्नमेंट ने
1: इत्तेफाकन मेरी पैदाइश भी वहीं है, बताइए
0: जी। जैसे वहाँ बिदरजायद लीवा या ऐसे बॉर्डर एरिया अगर आपने सुने हो कि वहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहाँ उन लोगों से इंटरेक्शन और जो फैसिलिटीज मैंने देखी, हॉस्पिटल, उनके जो शॉपिंग सेंटर और उसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंग्स, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के कैंपस नियर अबाउट, वहाँ गाड़ी उनको लेके आ रही है। यानी आदमी के क्या रीज़न है जिसके लिए वो माइग्रेशन करता है, और उसके अलावा वहाँ लोकल जॉब क्रिएशन रखी हुई है जिसकी वजह से वहाँ लोग आबाद हैं, वरना वहाँ मेन शहर से 150-200-300 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करते हैं, आप सोचते हैं मैं किस दुनिया में जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे यहाँ उन्होंने इन चीज़ों को बड़े जगहों पे कंसंट्रेटेड कर दिया है, उन लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इन चीज़ों को छोड़ के। और उसके अलावा आप देखें ड्रामे और मीडिया में, तुम गांव वाले हो, यानी एक इंसल्टिंग वे यार, गांव वाले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव में रहते थे, वो बदू थे, उनकी सेहत थी, उनकी ज़ुबान थी, उनके अदब थे, गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये बड़ा एक इज्जत का मुकाम है। उन्होंने इसको एक ऐसे बात कर देते हैं कि हम तो शहर वाले, यानी शहर वाले इज्जत वाली जगह है, और वो इस तरह के लोग बैकवर्ड्स वाए। तो ऐसी चीज़ें आपको जब वो नफ्सियाती तौर पर करते, फिर हर बंदा फिर फरार का रास्ता, फॉर सम रीज़न वो वहाँ से भागना चाहता है, अपने आबाई घर को, आबाई ज़मीनों को, आबाई लोगों को छोड़ के एक पैनिक लाइफ में आना चाहता है।
1: हाँ, वो रसूलुल्लाह सल्लम के हवाले से आपने बदू कहा, ये नस्बतन ये वाला लकाब सल्लम के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं ज़रा यहाँ
0: अच्छा ठीक है, मेरी तस्दीक करते हैं, बदू का मतलब होता है गाँव गाँव के रहने वाले। मैंने

0: यहाँ एक बात की थी उन्होंने कहा कि ये कोई मायूब बात नहीं है, गांव हम लोग जो हैं बदू, वी प्राउड टू बी बदू, उसने कहा हम लोग
1: सहाबी सारे ऐसे, कई सारे ऐसे हदीस में बिल्कुल इस मेंशन के साथ आए, एक बदू आया, एक सहाबी आया, यानी इट्स नॉर्मल। वैसे आपसे सलाम के साथ ये लकब आया नहीं, ये बस मैं कह रहा था जी।
0: नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बदवाना लाइफ उनको जब हजरत सादिया के पास भेजा था,
1: वो लाइफ तो उन्होंने गुजारी, जरूर
0: वो लाइफ उन्होंने गुजारी कि वो एक सेहतमंदाना और वहाँ उनकी कहते हैं जुबान के लिए, सेहत के लिए, उनको ये एक्सपीरियंस करने के लिए एक हेल्थी चीज थी, इसलिए वहाँ उनको भेजा गया। वो थे तो मक्का के, मक्का एक शहर है।
1: सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना तवील और मुतनव, काफ़ी मुतनव मौजू है, यानी आप काफ़ी सारे मसाइल पर बैक वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चूंकि मौजू है ही ऐसा, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं तो फिर
0: सोशल मीडिया में जाने की वजह एक अकेलापन, बंदे के पास करने को कुछ नहीं, वही बात है, फैमिली के लिए टाइम और मामलात, इन चीज़ों को वो अपने आप को फिर सेटिस्फाई, अपने आप को उन झमेलों से ना वो कैसे निकालने के लिए एक खुशी का रखते हैं।
1: तो आज के जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई कैसे अपने आप को कंट्रोल करें सोशल मीडिया के दौर में?
0: ये कहने के अलावा एक हम लोग खुद भी एक कोशिश करते हैं कि घर में एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट करें और उनको अवेयरनेस, यानी इन बच्चों के लिए ये काफ़ी अभी एग्जांपल सामने है कि वो देखते हैं कि फेक लाइफ है और इस चीज़ में जितना आप जाएंगे और जहनी सुकून और क्या कहना चाहिए अफरा तफरी का है, और वैसे भी यंग जो बच्चे हैं अपनी एनर्जी इसमें लगाना उन्होंने अपने मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है।
1: बिल्कुल,
0: और वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि कम रहें, लेकिन फिर भी माँ बाप देखते हैं उनको इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें आप देखें कि मार्क जकरबर्ग को जब अमेरिकन सेनेट में बुलाया गया, उसे सवाल क्या किया गया 16 ईयर का, उसने कहा कि आपने ये इस तरह से तरतीब दिया है कि बंदा उसकी लत में घुस जाता है, वो छुटकारा हासिल करना चाहता है कि रील टू रील, वो उसके टाइम का उसको पता नहीं चलता। ऑफकोर्स अब यही देखें जो बनाने वाले हैं वो ही उस पर कॉन्ट्रडिक्शनरी और उस पर वो कर रहे हैं और हम लोग बस देख रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं,
1: हमारे यहाँ कोई पाबंदी भी नहीं है, बस बंदा बच्चा हो या जो भी हो अपनी तरफ से कोई ज़ाती तौर पर अपने फैमिली की सतह पर कुछ कर रहा है तो कर रहा है, वरना तो फिर आप जापान के यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ बंदा बच्चा अगर वो उसके डिवाइस में, अगर वो बच्चा है तो उसके अलग-अलग किस्म के एक वो पाबंदियाँ रहती हैं, एक घंटा लगातार देखे तो साथ साथ वो ऐप ही बंद हो जाता है साथ साथ, तो ऐसे यानी है, क्योंकि ये जो भी डिजिटल जो भी डिवाइसेस हैं इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम करते नहीं।
0: अब वही देख लें, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, निज़ाम में हर चीज़ का टाइम है, वक्त है, औकात है, और कोशिश, आप कहते हैं ना आसानी से वो चीज़ें मिलने लगी, अब हमने हिलना जुलना छोड़ दिया तो अब हम लोग एक्सरसाइज या कोशिश या कसरत नहीं करते हैं तो फिर उतना हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हालात यही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई,
0: इंशाल्लाह फिर अब आपने बताया नहीं हम कब कहाँ मिलेंगे, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे।
1: बस हम तो इधर ही हैं आपकी खिदमत में, नई नई प्रोग्राम के साथ, नई ठहरों के साथ, इंशाल्लाह होती रहेगी मुलाकात।
0: ओके जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। तो सामने कराम, काफ़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी हमारे जुल्फिकार भाई के साथ, और कुछ हार्मोन्स के हवाले से मैंने गुफ्तगू की, हमारे जो इस तरह यानी जो स्पेशलिस्ट हैं इस सिलसिले में, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए, अगर कोई हमें सुन रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। वैसे इस सिलसिले में जितना मैंने स्टडी की है, जितनी स्टडी मैंने की उसमें यानी कई सारे हार्मोन्स की बात आ गई, इसमें एंडोर्फिन की बात आ गई कि वो दरअसल राहत के हवाले से जो इंसान को दर्द के एहसास को कम करने, इंसान के यानी दर्द के एहसास को कम करने, खुशी यानी को यानी इस हार्मोन को ये बढ़ाने में मदद देती है। अच्छा, मसलन वर्जिश, हंसना, जिस्मानी मशक्क़त या बाज़ कुदरती सरगर्मियाँ तो इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर सकते हैं जिसमें उसे तवानाई, हल्की सरशारी और पेन रिलीफ महसूस होती है। तो मसला कहाँ होता है? मसला तब पैदा होता है जब यही एहसास इंसान आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से बार बार हासिल करने लगे। मसलन जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हर चंद मिनट बाद आप फनी क्लिप देख रहे हैं, हर थकन के बाद आपके पास रील है, हर खामोशी में आपको इंटरटेनमेंट है आपके हाथों, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये सीख ले लेता है कि मुझे अच्छा महसूस करने की

अक्सर ऐसे बच्चे अब नजर आ रहे हैं आपको, यानी जब आप बात करेंगे आपको ऐसे लगे कि इट्स नॉर्मल नहीं है ये। अब ये क्या है कि बच्चे माँ बाप बैठाए रहे घंटे पर घंटे वीडियोस में, अब क्या करेंगे? उन्हें भी चाहिए कि अब सहूलत के लिए, अब वो अगर फारिग रहें तो परेशान करेंगे तो भाई क्या ज़रूरत है, रियल लाइफ जी लो। और फिर क्या है, अब सारी तो वीडियोस देख रहे हैं और सब भी उसे भी लगा दो गेम्स और वीडियोस में। अल्लाह अकबर। तो अगर हम सामिन किराम यानी इन हार्मोन्स के हवाले से जब हम देख रहे हैं कि देखें हकीकी तौर पर इंसान के जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी वो कैसे कैसे मुतासर हो रहा है, तो ये फिर हकीकत सामने आ जाती है कि हमारा क्या अलमिया है इस दौर का। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सोशल मीडिया को के साथ हम कैसे बिहेव करें, और सोशल मीडिया हमें ख़तरनाक हद तक यानी मुतासर कर रहा है, इससे हम मुतासर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अहम नुक्ता है कि हम अपने आप को कैसे समझें। और इंसानी दिमाग बहुत हैरत अंगेज़ है, ये सब आप जानते हैं, वो अडॉप्ट करता है, सीखता है, आदत बनाता है। तो इंसान फनी क्लिप्स देखे या फिर कोई चीज़ उसके लिए खुशी का बायस बने, उसमें कोई मसला नहीं है, ये तो गलत नहीं है। लेकिन खुशी इंसान की ज़रूरत है, इसको हम भी मानते हैं, मोहब्बत चाहिए, कामयाबी चाहिए। सवाल ये कि सब कहाँ से आ रहा है, क्या मेरी खुशी यानी हकीकी ताल्लुक से आ रही है, सिर्फ कमेंट से? ये बात आपने जो ना सही से आपने मालूम करना है कि अगर हर एहसास हमें एक क्लिक पर मिलने लगे तो मुमकिन है एक दिन हकीकी ज़िंदगी जो आहिस्ता चलती है, मेहनत मांगती है, जिसके लिए सब्र चाहिए, हमें बेजायका लगने लगे, हमारी फैमिली जो मैटर्स हैं वो हमें हमारे लिए बोरियत का बायस बन जाए, परेशानी का बायस बन जाए, औलाद के हवाले से, नस्ली तरबियत के हवाले से, ये हमारे लिए बड़ा मसला, ये कोई बाईद बात नहीं है, बल्कि आज हम इस मसाइल के शिकार हैं। बच्चों की तरबियत हर जगह में जाए, तरबियत तरबियत, अरे पहले ज़माने में इतने कुछ था भी नहीं, और बच्चे माशाल्लाह इतने तरबियत के लेसन्स थे भी नहीं माशाल्लाह से सारे। हम तो ये नहीं कहेंगे 100 में 100, लेकिन आजकल बच्चों की जो सूरत हाल है तो उससे काफ़ी बेहतर, यानी अखलाकी तौर पर बिलखसूस रवैये पर। देखें एक दौर मुझे ऐसा लगा है कि भी ये मेरा अपना तजुर्बा है, या फिर मैं इन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें एक वक्त था जब नफ्सियात पर काफ़ी गुफ्तगू होती थी, यानी ये हमारे दादा पर दादा कह सकते हैं, या फिर तारीख़ में हम थोड़ा पीछे चले जाएं 100 साल पहले, तो नफ्सियाती तौर पर यानी काफ़ी तवज्जो थी, और मुख्तलिफ़ उलूम को भी, जो भी नॉलेज हैं साइंस को भी नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा समझने की कोशिश रहती थी। लेकिन जब से ये जो है ना कंप्यूटर और ये सब इनकलाब आया कि भाई मैकेनिज़म मैकेनिकल जो भी ये इनकलाब हमने देखे, तो उसके बाद हुआ ये कि लोग कैलकुलेटर बन गए और मैकेनिज़म ये मशीनरेबल लाइफ हो गई हमारी। तो इसके बाद यानी अब दोबारा वो दौर आ रहा है कि भाई अब मशीन की तरह तो इंसान नहीं चल सकता, अब जब आप उस पर डिवाइस को महमूल कर रहे हैं, उस पर हर चीज़ को, हालांकि इंसान तो वो खून का लौथड़ा है, उसके हड्डी हैं, उसमें हार्मोन्स हैं, उसके लिए हरकत की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो मशीन की तरह नहीं चल सकता। लोग कहते हैं क्या कि मुझे क्या मशीन समझा है तुमने, तो आप तो मशीन नहीं हैं, रोबोट नहीं हैं, तो आपके यानी जो भी मूवमेंट है वो महदूद है, इस माने में कि आप यानी खून के तैयार करदा हैं, अब कोई इलेक्ट्रिक कोई मशीन नहीं है, तो इस वजह से आप लोग हरकत हरकत में बरकत है जैसे कहते हैं। अच्छा, तो जब ये बात इंसान अब दोबारा महसूस कर रहा है और उसे इंसान मशीन की तरह बनते बनते बनते जिस हद तक पहुंच गया, अब दोबारा अब माहिरीन जो है दोबारा नफ्सियात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, दोबारा उसी घूमते घूमते उसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हमारी जिंदगी में खाने पीने की चीजों की फरावानी है। एक वक्त में कई कई पकवान, दिन में बार बार खाना और फिर ये फिक्र कि आज क्या खाएं, कल क्या बनाएं, कौन सा नया जायका आजमाया जाए। नेमतें यकीनन अल्लाह ताला का फजल हैं और उनसे फायदा उठाना मना नहीं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने पीने का मामूल कैसा था? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मा अकल आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकलतैन फी यौम इल्ला इहदाहुमा तम्र। यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में दो वक्त खाना नहीं खाया मगर ये कि उनमें से एक खाना खजूरें होतीं। सामिन किराम, जरा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। ये किसी आम इंसान का घर नहीं, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आप मुसलमानों के कायद हैं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी इंतहाई सादा है। सामिन किराम, इस्लाम हमें नेमतों से मना नहीं करता। सादा जिंदगी का मतलब ये भी नहीं कि इस्लाम अच्छी ग़िज़ा, अच्छे लिबास या अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाने को नापसंद करे, बल्कि उसका मतलब ये है कि नेमत हमारे हाथ में हो लेकिन दिल में उसकी

0: ऐसी जगह न बन जाए कि उसके बगैर हम बेसुकून हो जाएं। वैसे आज के दौर का एक और अलमिया ये भी है कि हम अपनी नेमतों को देखने के बजाय दूसरों की नेमतें देखते रहते हैं, और इसी के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी मामूल लगने लगती है। हालांकि मुमकिन है हमारे पास वो बहुत कुछ मौजूद हो जिसके लिए कोई दूसरा शख्स हर रोज दुआ कर रहा हो, और इस वजह से जरूरी है कि हम किफायत शियारी को अपनाएं, कनात इख्तियार करें, क्योंकि कनात इंसान की नजर को दूसरों की झोली से हटाकर अपनी नेमतों की तरफ ले आती है। एक और बात यह भी है कि नेमत की कदर तब आती है जब हर ख्वाहिश फौरन पूरी ना हो। अगर इंसान की हर ख्वाहिश फौरन पूरी होती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता नेमत की कदर कम होने लगती है। पहले जो चीज खुशी देती थी अब वो मामूली लगने लगती है, फिर उससे बेहतर चाहिए, फिर उससे भी बेहतर, और यूं ख्वाहिशात की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। नबवी जिंदगी हमें एक मुख्तलिफ मेयार देती है कि जरूरत पूरी हो जाए तो शुक्र कीजिए, जो मुयस्सर हो उसे नेमत समझिए, और जो मुयस्सर ना हो उसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी को उदास न बनाइए। और इस सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए कभी सादा खाना भी खुशी से खाएं, खाने में ऐब न निकालें, जरूरत से ज्यादा न मंगवाएं, बचा हुआ खाना जाया न करें, बच्चों को हर ख्वाहिश फौरन पूरी होने का आदि न बनाएं, और जब अच्छा खाना रिज्क और फरावानी मुयस्सर हो तो उसे अपना हक समझने के बजाय अल्लाह का फजल समझें। अल्लाह ताला हमें उसकी नेमतों की कदर करने, शुक्र अदा करने, फजूल खर्ची से बचने और सादगी व कनात के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।

और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का

लेकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। उस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और न उनके मुतालक किसी से कुछ पूछो, और देखो किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने के नाम मगफरत के हवाले से एक अहम दुआ है और इसमें मगफरत तलबी के काफ़ी सारे पहलू जिक्र किए गए हैं। दुआ की शुरुआत होती है कि अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा, अल्लाहुम्मा क़िनी शर नफ्सी, और आगे वाज़िमली अला अरशदी अम्री, और मेरे लिए मेरे तमाम कामों में सबसे बेहतर रास्ते पर अजीमत।

0: दीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। ध्यान रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 Seconds ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे कुरान पर गौर व फिक्र की अहमियत के बारे में। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया। जब हम कुरान को सिर्फ तलावत तक महदूद रख देते हैं तो हम उसकी असल रहनुमाई से दूर रह जाते हैं। गौर व फिक्र का मतलब है कि हम कुरान के अल्फाज पर सोचें, उनका मकसद समझें और अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करने की कोशिश करें। ये अमल इंसान की सोच को गहरा करता है और उसे सीधा रास्ता दिखाता है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान का तर्जुमा या तफसीर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे इंसान को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और जिंदगी का मकसद क्लियर होता है। आज का अमल ये है कि कुरान की कुछ आयात पढ़ें और उन पर 2 मिनट गौर जरूर करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इस्लाम ने इंसान की फितरत को पाकिजगी और सफाई के साथ जोड़ा है और जिन 5 चीज़ों को फितरी तकाजे के तौर पर जिक्र किया गया है उनमें एक फितरत का मुतकाजी खतना भी है। यानी ये वो सुन्नतें हैं जो इंसान को पाकिजगी, सफाई और वक़ार अता करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-फितरतु खम्सुन, अल-खितानु वल-इस्तिहदादु वनतफुल-इब्ति वतक्लीमुल-अज़ाफिर वक़स्सुश-शारिब। समीन, इस तरह खतना के अमल से अल्लाह और रसूल की इताअत का सबूत है। ये साथ साथ खतना जिस्मानी पाकिजगी और नज़ाफत को यकीनी बनाता है। सेहत के पहलू पर भी अगर गुफ्तगू करें तो यहाँ जदीद मेडिकल साइंस भी उसके बेशुमार तिब्बी फवायद तस्लीम करती हैं, जैसे बीमारियों से बचाव और जिस्मानी सेहत में बेहतरी। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, ये सब वही इलाही है। तो समीन, ये थी आज की सुन्नत बलफ़ दीगर फितरत यानी खतना। अल्लाह ताला हमें इन तमाम रूह परवर सुन्नतों को हमारी अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

0: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफएम 107 पे इस्तकबाल है आपका और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते। और इस हफ्ते है बात एजुकेशन स्कैम के बारे में, एजुकेशन फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ये फ्रॉड, और इसकी वजह है बच्चे पढ़ाई के लिए फोन, टैबलेट्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। स्कैमर्स फेक एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, स्कॉलर

0: स्कॉलरशिप ऑफर्स और लर्निंग एप्स बनाकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, गारंटीड एग्जाम सक्सेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स का एड दिखाते हैं जो सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इन ऑफर्स को लेने के लिए बच्चों से रजिस्टर करने को कहा जाता है और उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। इतनी ही जानकारी काफी है फ्रॉड करने के लिए। कुछ फेक वेबसाइट स्टडी मटेरियल या एग्जाम प्रेप के लिए पहले पेमेंट भी मांगती है। बहुत बार ये वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं देती, इसके बदले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती हैं, पैसे ठग लेती हैं। ये डिवाइस में हार्मफुल सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। स्कैमर्स फेक ईमेल्स या मैसेजेस भी भेजते हैं जो देखने में लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। इन मैसेजेस में स्टूडेंट्स को एक लिंक पर क्लिक करके अपना स्कूल अकाउंट अपडेट करने या आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा जाता है। जैसे ही लिंक खुलता है, स्कैमर्स को पर्सनल इन्फो या ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे स्कैम से आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और बच्चे फैमिली दोनों को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है। कैसे बचे इन स्कैम से या फ्रॉड से? बच्चे सिर्फ वही वेबसाइट और एप्स यूज करें जो स्कूल, टीचर्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड की हो। दूसरा तरीका है कोई भी ऐप डाउनलोड करने या क्लास के लिए पे करने से पहले पेरेंट से वेरीफाई करवाएं। तीसरा, अननोन वेबसाइट पर कभी भी पासवर्ड, पर्सनल इन्फो या फिर पेमेंट डिटेल्स शेयर ना करें। वेबसाइट का एड्रेस यानी कि यूआरएल ध्यान से चेक करें कि वो ऑफिशियल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं। अगर कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो लिंक पर क्लिक ना करें और बड़ों को रिपोर्ट करें। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल नए जमाने के नए फ्रॉड कुछ इतने यूनिक और ट्रिकी होते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के एपिसोड में, जहां पर नए जमाने के और नए फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। हर घर की अपनी कहानी होती है, कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश। तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी,
3: मुफीद साबित होंगी,
2: तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड।
3: सन एंड साउंड
2: संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।

0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ। शो का नाम है जूनियर जनाब, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन छोटी सी उम्र के बड़े बड़े चैंपियन से, जिनकी उम्र नहीं देखी जाती। भाई है ये बच्चे, लेकिन करते बड़े बड़े काम है। भाई आज हम मनवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी यंग अचीवर से जिनका जुनून है क्रिकेट। जी हाँ, देसी बच्चा है ना, तो क्रिकेट तो भाई हम लोगों की वेन्स में दौड़ती है। जी बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हमारी मेहमान है हादिया, जो कि सिर्फ 14 साल की हैं, लेकिन टैलेंट और एनर्जी इनमें प्रोफेशनल लेवल की है भाई, कमाल की। जब दूसरी बच्चियां डॉल्स और ड्राइंग्स का शौक रखती हैं, तो वहां पे हादिया के बारे में अगर बोलूं तो भाई ये पिच पर चौके छक्के मार रही होती हैं। मतलब ये कि भाई कभी कभी फील्डिंग पे भी खड़ी होंगी तो बॉल के पीछे भी भाग रही होती हैं। और भाई मुझे बड़ा शौक हो रहा है इनको देख करके, एक दफ़ा देखूं तो सही कि सिक्सर्स कैसे लगाती हैं और चौके कैसे लगाती हैं। तो ज़रा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और डेडिकेशन। वाह भाई हादिया, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू। भाई क्रिकेट की फील्ड पर वो सिर्फ खेलती नहीं, अपनी मेहनत और जज्बे को भी साबित करती हैं, और आज आई हैं हमारे साथ हमें इंस्पायर करने। तो भाई इससे पहले कि मैं और कसीदे खींचूं इनके, मैं चाहूंगी कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, हमें हमारी अपनी हॉबीज के बारे में बताएं, हमें अपनी दिलचस्पियों के बारे में बताएं, हमें ये बताएं कि ये कितने साल की हैं, क्या करती हैं। क्रिकेट के अलावा भी कुछ शौक होगा ना, तो उसे वो भी चीजें इनसे पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? स्टेडियम जैसी फील आ रही है?
1: जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत।
0: देखिए हमारे पास ऑडियंस नहीं है वो वाला शेयर करने वाला। अच्छा ये बताएं हादिया कि आपकी कुछ और क्रिकेट के अलावा हॉबीज वगैरह हैं?
1: क्रिकेट के अलावा थोड़ा बहुत आर्ट में इंटरेस्ट है, मेरे घर में पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं।
0: और पिकासो टाइप की पेंटिंग है?
1: पिकासो के लेवल पे तो फिर मुश्किल ही है।
0: चल नहीं भाई, इतना भाई कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए। देखिए मैं जो हूँ ना, थोड़ा और आगे का सोच रही हूँ, विकास से भी आगे का। अच्छा भाई ये बताएं कि मैंने आपकी उम्र सही बोली ना, 14 इयर्स। चलिए भाई ये बताएं कि ये जो क्रिकेट का शौक है, वैसे तो मैंने लड़कों में जुनून देखा है, कुछ हद तक मैंने लड़कियों में भी देखा है। मेरी अपनी बहन क्रिकेट टीम की जो है ना, नेशनल टीम की, पाकिस्तान में उसने खेला था, तो वो थी क्या कहते हैं, कैप्टन। हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे शौक चढ़ा, किससे इंस्पायर हुई है भाई?
1: मैं क्रिकेट पाकिस्तान में खेला करती थी बहुत, तो उधर भी मैं अपने स्कूल की टीम में खेला करती थी, और जैसे रोड पे खेलना मेरा जी, जैसे स्ट्रीट में बाहर जाके सब मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके सब क्रिकेट खेल रहे हैं।
0: सही।
1: कभी कभार बॉल गाड़ी पे लग जाती, इस पर डांट पे पिटती थी, लेकिन खैर
0: वो बात छोड़ दें, पुरानी बातें छोड़ दें,
1: वो पास्ट में। मुझे इसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल अपने मामू से आई होगी, कज वो बहुत खेला करते थे, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, वो भी अपने दोस्तों के साथ जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए सब ये वो, तो उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे इंस्पायर किया। तो फिर जब भी वो जाते थे, मैं उनको कहती थी मुझे भी लेके जाए, मैं भी खेलूंगी आपके साथ।
0: मामू के गले की घंटी जैसे इनको चलता था क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताएं कि मतलब किस एज में आपने शुरू किया होगा, अंदाजन अगर आपको याद पड़ता है, होश वाली हो, तो किस एज में आपने शुरू किया था?
1: प्रॉबेबली जब मैं 6-7 साल की थी।
0: अरे वाह, बहुत छोटी थी। अरे वाह गुड। अच्छा देखें, ये मामू से इंस्पायर्ड होकर अम्मी ने कहा बेटा जाओ मेरी जान छोड़ो मामू के साथ, अम्मी को क्या पता ये वाकई में सीरियस ले लेंगी क्रिकेट को।
1: जी
0: इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है, और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
0: अच्छा ये बताएं कि अम्मी अबू सपोर्ट करते हैं इस चीज को?
1: बिल्कुल।

0: अपने स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन भी बनी हूँ.
1: अरे वाह, नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा फील याद है कि जब आपने, एक तो होता है ना नॉर्मली गली मोहल्ले में खेलना, एक होता है दूसरों के सामने खेलना, उसका प्रेशर कुछ और होता है. तो वो जब पहली दफा दूसरों के सामने खेला था तो क्या क्या फीलिंग थी?
0: बिल्कुल, बहुत थोड़ा बहुत डर था.

0: पूरी टीम आप पे डिपेंड कर रही होती है.
1: सही सही. अच्छा आपकी बातों से मुझे चल रहा है कि आप बैटिंग में अच्छी हैं. पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है. आपको आपको खुद पर्सनली बैटिंग पसंद है कि बॉलिंग पसंद है?
0: मुझे पसंद तो बॉलिंग है, 'cause मैं

0: बॉलिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके थोड़े जो वेज होते हैं बॉलिंग करने के वो सब मुझे बहुत शौक है कि मैं सारे सीख.
1: अच्छा ये बताएं कि बीइंग एक पैट्रियोटिक होकर बात करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको अपनी क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर आप कहती हैं भाई मुझे ऐसा बनना है?
0: Probably मैं सबसे ज्यादा नाम तो सुना ही बाबर आजम का है पाकिस्तान टीम से, तो I would probably say him.
1: अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर औकात होता है ना स्कूल में भी कभी कभी ये चीज आ जाती है और अक्सर औकात रिलेटिव्स में भी ये चीज देखी जाती है कि वो कह देते हैं कि भाई लड़कियां जो है ना क्रिकेट लड़की कोई और स्पोर्ट ले लड़कियां. आपको ऐसे सुनने में आया है और आपने कैसे डील किया उस चीज से जब ये फेज आता है ना कोई ये फ्रेज आता है किसी से कि उसको बाउंसर कैसे मारेंगे आपके भाई ये फ्रेज आए ना कि भाई लड़कियां ये गेम नहीं खेलती.
0: मैं मेरी फैमिली

0: सही, सही। नहीं मेरा सवाल ये था कि अगर आपको ये सवाल सुनने को मिले तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं, आप कैसे डील करती हैं इसको?
1: मैं उनको अपनी अचीवमेंट्स बता के बता सकती हूँ कि मैं आई कैन परस्यू दिस एंड ये मेरे लिए इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, सो दे डोंट रियली हैव अ से इन व्हाट।
0: सही, मतलब वो बस ही चुप हो जाते हैं। सही,
1: जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं ये सब कर चुकी हूँ, इतना आगे मैं जा चुकी हूँ क्रिकेट में, ऑलरेडी क्रिकेट मुझे इतना आगे लेके जा चुका है, तो फिर वो और क्या कहे।
0: सही, चुप हो जाते हैं, मतलब चुप रहना आता है लोगों को। अच्छा ये बताएं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाएं बाहर, अपनी अपनी पाकिस्तान टीम से बाहर निकल कर देखें, तो आपको कौन सा क्रिकेट प्लेयर जो है वो इंस्पायर करता है, कोई है या नहीं है? जैसे मैं कहूँ मैं एक ज़माने में जब क्रिकेट देखा करती थी तो मैंने तो शुरू से एक ही चीज़ थी मेरे दिमाग में, ब्रेंडन लारा। पाकिस्तानी टीम में एक था हमारा शोएब अख्तर साहब, एक इमरान खान साहब, तो उनको देख देख कर ना वो एक हमारा तो एक अलग ही था। तो आपको अगर मैं इंटरनेशनल टीम में पूछूँ तो आपको कौन इंस्पायर करता था?
1: इंटरनेशनल टीम में सबसे ज्यादा आई वुड से हुलागरा तब होता था जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा था, तो उसमें इंडियन टीम में मुझे विराट कोहली को देख के मुझे उत्साह आता था कि ये बहुत अच्छा
0: खेलते हैं। अच्छा उनका फैशन सेंस भी बड़ा अच्छा सा है, ये भी एक बात है, होता है, पर्सनैलिटी होती है। स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट कैरिंग योर ओन

0: 3-4 years हो गए। अच्छा ये बताएं कि ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई हल्की गेम है क्रिकेट, जहां तक मैंने खेलने की कोशिश की है हमेशा पहली बॉल पे आउट होकर वापस आ गई हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्केड्यूलिंग। तो आप अपनी स्टडीज को और गेम को कैसे मैनेज करती हैं?
1: मैं अपने ये गेम्स को हम वीकेंड्स पे रखती हूँ, और मैं स्कूल में भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ, जब भी मुझे कोई फ्री जैसे आर्ट का लेसन मिल गया या पीई तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा अपना क्रिकेट करती हूँ। और अभी हमारा टूर्नामेंट भी आने वाला है, इसलिए अगर कोई लाइब्रेरी लेसन या कोई टीचर एब्सेंट है तो हमेशा मैं ग्राउंड पे भाग जाती हूँ कि मैंने क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है।
0: इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।

0: बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मोटिवेशन का राज क्या है। एक होता है ना भाई स्टडीज में मोटिवेशन का एक राज होता है, एक होता है नहीं भाई अपने पैशन को फॉलो करना, उसका एक अलग ही मोटिवेशन होता है, उसका एक अलग माइंडसेट होता है उसके लिए। तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है करियर के पीछे भागने के लिए?
2: मुझे नेशनल लेवल्स पे जाना है, मुझे नेशनल टीम में होना है।
1: ओके ओके गुड गुड गुड। इंसान को अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए ना। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो मुझे आपकी

0: बातों से पता चल रहा है कि बड़े होकर आपका शौक है कि क्रिकेटर ही बनूं, मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है. गुड, विच इज गुड. इंसान को इतना तो अपने दिमाग में प्लान ए होना चाहिए कि मुझे ये करना है. प्लान बी क्या है?
1: प्लान बी, मैंने अपने सब्जेक्ट्स में साइंसेस लिया है, तो फिर उस डॉक्टर की.
0: अरे भाई वाह, अच्छा साइंस भी लिया भाई. ये भी मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो दिस इज टफ भाई, दिस इज टफ, दिस इज इंस्पायरिंग. ये नहीं कह सकता बच्चा कि भाई मैं साइंस ले रहा हूँ तो मैं बोरिंग इंसान. अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत ज्यादा दफा ऐसा भी हुआ होगा, मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत आती हैं, चाहे वो स्टडीज की पास से हो, चाहे वो गेम के लिहाज से हो. तो ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट कभी आई है कि जब आपने कहा नहीं भाई ये छोड़ो, मैं अब जो ना क्रिकेट छोड़ देती हूँ, छोड़ो जाने दो?
1: जी हुआ था एक बार, हम एक ही दिन में दो मैचेस हार गए थे, तो उसके बाद हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये तो हमने इतना बुरा कैसे खेल लिया, हमने तो सही से प्रैक्टिस ही नहीं की है वो. लेकिन उसके बाद हमने तो, लेकिन हमें टाइम बहुत कम मिला था उस ट्रेनिंग के लिए, और फिर भी हम लोग कुछ ही ओवर से हारे थे, तो फिर उससे हमने थोड़ी मोटिवेशन ली कि लाइक
0: देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट
1: टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम.
0: अच्छा एक बात बताएं, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कोई एक पीस ऑफ एडवाइस होता है ना कि आप भाई किसी चीज में कोई एक एक एक आप बात कहना चाहें उनसे कि अच्छा ये चीज ऐसे कर लें या ये चीज ऐसे हो जाए, कोई एडवाइस?
1: Probably के obviously never give up,
0: good good
1: never give up,
0: ठीक है.
1: जैसे मैं भी साइंसेस लेके अपने क्रिकेट के पैशन दोनों को मैनेज कर रही हूँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल.
0: चलें ठीक है, एक और मुझे मेन बात बताइएगा कि आपके लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एज अ क्रिकेटर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, मैं आपसे पूछूं कि कोई कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना जो आप कहती हैं भाई उंगलियों पे इंसान गिनता है, ये चीजें होनी ही होनी चाहिए पॉजिटिव वे में, टू बी अ गुड क्रिकेटर, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप किन किन चीजों को वो करती हैं, पोल करती हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए?
1: डेडिकेशन, कमिटमेंट होनी चाहिए, और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी ऑफ कोर्स, स्केड्यूलिंग, आप कैसे अपने दोनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं, पूरे स्टडीज को भी और एक्स्ट्रा करिकुलर को भी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऐसा ना हो कि आप एक चीज में बहुत सक्सीड कर रहे हैं लेकिन दूसरे में आप नीचे जा रहे हैं.
0: आपको बैलेंस करना पड़ता है और वो बैलेंस आपको खुद ढूंढना पड़ता है.
1: जी
0: अच्छा, ये बताइएगा कि कभी कोई ट्रॉफी वगैरह जीती है टूर्नामेंट में?
1: जी हमने कतर के आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्कूल या बहुत सारे स्कूल थे, तो उसमें हम लोग सेकेंड आए थे.
0: वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि कभी टीवी या न्यूज़पेपर वगैरह में अपना नाम देखा है अभी तक?
1: मैं पहले भी एक रेडियो सेशन में गई हुई हूँ. तो
0: अरे वाह, सेलिब्रिटी चल रही है. अच्छा लगा आपको?
1: जी
0: बिल्कुल, इट गिव्स यू मोटिवेशन,
1: इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस के लिए भी ज्यादा वो था.
0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड. ठीक है भाई, और आपका तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे भाई, हम छोटी मोटी बातें नहीं करते. अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर आपको T20 में खेलने का मौका दे दिया जाए तो आपको क्या लगता है कितना स्कोर करेंगी? सच सच बताना, सच सच आपको लगता है कितना स्कोर कर जाएंगी? जितना इंसान को खुद पता होता है ना अपना, उतना किसी मैचेस देखती है ना, देखती है ठीक है, तो कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है ना, अरे भाई मैं होता ना तो मैं तो वैसे ही इतना स्कोर कर लेता है, तो बच्चों की तरह खेल रहे हैं. तो आपको क्या लगता है उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है कि अगर मैं होती ना मैं इतना स्कोर कर जाती थी?
1: T20 में 20 ओवर्स में 200 रन तो बनते ही हैं, ये इतना स्कोर तो बनता ही है, इतना तो 20 ओवर्स में इतनी सारी बॉलों में बनता ही है.
0: चलो भाई आई बैक आउट, मैं तो वो शख्स हूँ जो पहली बॉल में आउट हो जाता है. बड़ी कोशिश की है मैंने क्रिकेट खेलने की लेकिन ना भाई मुझसे ना हो पाया. अच्छा भाई ये बताइएगा कि क्रिकेट के अलावा कोई और फेवरेट गेम है आपकी?
1: फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का भी मुझे बहुत शौक है, वॉलीबॉल का भी शौक है मुझे, फुटबॉल भी मैं बहुत खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ.
0: मतलब मल्टीपल गेम्स खेलने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए.
1: और बैडमिंटन में भी मैं अपनी पूरी क्लास के साथ कॉम्पिटिशन में सेकेंड फर्स्ट आई थी.
0: चलिए भाई हादी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आई, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया. उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह किसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे आपको देखें और खुश हों कि भाई फाइनली शी अचीव्ड इट. तो भाई हमारी तरफ से हम स्टूडियो से चाह रहे हैं इजाज़त, और हम दुआ करते हैं कि बाकी जितने ही बच्चे अगर उनके आंखों में कोई ख्वाब है तो

0: साथियों याद रखें कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल करें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। मी साइनिंग आउट और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और अचीवर को लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें मार्केट

0: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, आज की फास्ट लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। मुझे भी अच्छी लगती है ये चीज। बस मोबाइल उठाया, ऑर्डर प्लेस किया और कुछ देर में चीज हमारे सामने दरवाजे पर पहुंच जाती है। अच्छा, ये कन्वीनियंस जरूर बहुत यूजफुल है, मैं मानती हूं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर फास्ट डिलीवरी के पीछे कितनी प्लानिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होती है? मैं जरूर सोचती हूँ ये बात। तो भाई, हर छोटी डिलीवरी के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा पैकेजिंग होती है और कभी कभी सिर्फ जल्दी पहुँचाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज यूज की जाती हैं। तो क्या हम कन्वीनियंस को मेंटेन रखते हुए डिलीवरी हैबिट्स को थोड़ा सा ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं? भाई बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यों ना आज बात कर ली जाए इको स्विच में रिड्यूसिंग फास्ट डिलीवरी डिमांड की, यानी के डिलीवरी को स्मार्ट तरीके से यूज करना और अननेसेसरी एनवायरमेंट इंपैक्ट को कम करना। लेकिन प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ने शॉपिंग और फूड ऑर्डरिंग को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है, बहुत ज्यादा। लेकिन हर अर्जेंट डिलीवरी के साथ कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा डिलीवरी व्हीकल्स रोड पर आते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, हर ऑर्डर के साथ पैकेजिंग वेस्ट क्रिएट होता है और छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग डिलीवरीज होती हैं। अच्छा, कभी कभी हम सिर्फ जल्दी में चीज हासिल करने के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स कर देते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लें तो एक ही डिलीवरी में काम हो सकता है। अच्छा, मकसद डिलीवरी सर्विसेज को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं फास्ट डिलीवरी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, तो कुछ सिंपल आइडियाज हैं, मैं शेयर कर लेती हूं। पहली चीज तो ये कि अगर हमें पहले से पता हो कि चीजें चाहिए तो हम लास्ट मिनट अर्जेंट ऑर्डर से बच सकते हैं। शॉपिंग को प्लान करें ना, एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर मल्टीपल आइटम्स एक साथ ऑर्डर करना बेहतर होता है। सेम डे की बजाय स्केड्यूल्ड डिलीवरी चूज करें, जहां जल्दी की जरूरत ना हो वहां फ्लेक्सिबल या स्केड्यूल्ड डिलीवरी ऑप्शंस चूज करें। इसी से डिलीवरी सिस्टम को ऑर्डर मैनेज करने में आसानी होती है। चीज ये कि भाई मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर से बचने की कोशिश करें। अगर आपको आप कह लें कि अगर आपको घर के लिए कई चीजें चाहिए तो उन्हें आप एक साथ ऑर्डर करने का प्लान करें ना, इससे पैकेजिंग और डिलीवरी ट्रिप्स भी दोनों भी कम हो जाती हैं। लोकल शॉपिंग को सपोर्ट करें, कभी कभी करीबी शॉप्स या मार्केट से शॉपिंग करना अच्छा ऑप्शन होता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी की जरूरत ही नहीं पड़ती और चीज आप तक जल्दी भी पहुंच जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेजिंग वेस्ट कम करें। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त जहां ऑप्शन अवेलेबल हो, मिनिमम पैकेजिंग या रीयूजेबल पैकेजिंग चॉइसेस प्रेफर करें। साथियों, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आपको बता दूं कि अगर कोई फैमिली हर हफ्ते अलग अलग दिन छोटी छोटी ग्रोसरीज डिलीवरीज मंगवाती है ना, तो वो अपनी शॉपिंग रूटीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके एक प्लान ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज की जरूरत फौरन नहीं है तो नेक्स्ट डे या स्केड्यूल डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। ये छोटी सी प्लानिंग ना सिर्फ डिलीवरी ट्रिप्स को कम कर सकती है, बल्कि टाइम और रिसोर्सेज को भी बेहतर मैनेज करने में मदद देती है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसका स्मार्ट यूज करें ना। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि अगले हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग या डिलीवरी करते वक्त एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मुझे ये चीज अभी के अभी चाहिए या मैं इसे प्लान करके कुछ देर बाद मंगवा सकता हूँ? और हमें जरूर बताएं कि आप ज्यादा किस चीज की डिलीवरी मंगवाते हैं, खाने की, ग्रोसरीज की या ऑनलाइन शॉपिंग आइटम्स की। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, जल्दी हर बार बेहतर नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी प्लानिंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रखती है। तो भाई, छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा सा फर्क क्रिएट करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती

0: हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अब हम हिदायत की दुआ की तरफ रुख करते हैं। वो हिदायत जो इंसान के दिल को संवार दे, जबान को पाक कर दे, किरदार को रोशन करे, घर को सुकून दे और रिश्तों में मोहब्बत भर दे। मसलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका मन तहदीही फहुवल मुहतदी। अल्लाह जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है। वमन तुदिल्लहु फला हादिया लह, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। यानी असल रहनुमाई किताबों, अकलों या तजुर्बे से मुकम्मल नहीं होती। असल हिदायत तो अल्लाह की अता है, जिसे अल्लाह रास्ता दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बंदा हमेशा अल्लाह का मोहताज है, उसे हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हमें अपने हाल पर न छोड़ना। अब या अल्लाह, हम इस बात की गवाही तो देते हैं कि जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। जी अल्लाह, अब तू हमें अपनी हिदायत की तरफ चला दे, सही फैसला, सही नीयत, सही रास्ता, सही अंजाम तक पहुँचा दे। एहदिना लि अहसनिल अखलाक, बेहतरीन अखलाक नसीब फरमा। नरमी, सच्चाई, सब्र, बर्दाश्त, माफी, आजिजी, ये अखलाक हमें नसीब फरमा। इसी तरह अहसनुल अक्वाल भी नसीब फरमा, अच्छी बातें, नरम गुफ्तगू, सच बात, दिल जोई, खैर की नसीहत, ये सब बेहतरीन अक्वाल है। फिर अक्वाल के साथ आ जाती है अमाल की बात, क्योंकि कौल व अमल ये दो बुनियादें हैं। तो अब अमाल की तौफीक भी अल्लाह से मांगी जा रही है कि सिर्फ नीयत तो काफ़ी नहीं, अमल भी चाहिए। नमाज, वालिदैन की खिदमत, हलाल रोज़ी, सदका, लोगों की मदद, फिर नेक अहवाल, हालात भी अच्छे करने की तलब है। क्योंकि बाद लोग अच्छे तो होते हैं मगर मुख्तलिफ आजमाइशों से घेरे होते हैं, हालात मुश्किल होते हैं। तो इस दुआ में हम ये मांग रहे हैं कि दिल का हाल भी अच्छा हो, घर का माहौल अच्छा हो, रिज्क अच्छा हो, वक्त अच्छा गुजरे। इसी तरह फिर हर किस्म की गुमराही से पनाह मांगी गई। नऊज़ु बिका मिन कुल्ली अनवाउ अद-दलाल। चूँकि गुमराही ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हो सकती है, गलत दोस्त, गलत सोच, गलत रास्ता, नफ्स की पैरवी, इसलिए हर किस्म की गुमराही से पनाह मांगो। अल्लाह हमारी बीवियों, औलाद और अजीज़ों को भी हिदायत दे। चूँकि मोमिन सिर्फ अपने लिए फिक्र नहीं करता, अपने लिए नहीं मांगता, अपनों के लिए भी मांगता है, और ये उसकी ज़िम्मेदारी है। कई नतलीफा वाला नख्तलिफ, ताकि हम आपस में जुड़ जाएं, बिखरे नहीं, इख्तिलाफ कम हो, घर आबाद हो। इसका मतलब ये है कि इत्तेहाद ये हिदायत से आता है। और इख्तिलाफ बाज़ औक़ात काबिल तारीफ होता तो ज़रूर है, लेकिन आज के दौर में हम ये देखते हैं कि अक्सर इख्तिलाफात दलालत और गुमराही की वजह से ही होते हैं। तो असल हिदायत अल्लाह से ही मांगनी है, और हमें अच्छा अखलाक भी मांगना है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत किसे कह सकते हैं हम इसे। इसी तरह घर वालों के लिए भी दुआ करें, इत्तेहाद के लिए दुआ करें, इख्तिलाफ से बचे रहने की कोशिश करें। इन्हीं पैगाम के साथ प्रोग्राम आज की दुआ के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तरह अशरफ़ ज़मान को दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर।
1: एस्टेब्लिशमेंट्स और अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जेर इंतजाम स्पोर्ट्स सिक्योरिटी सेक्शन ने दोहा बैंक स्टार्स लीग के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों के इत्तेहाद के उनवान से दूसरा सालाना फोरम मुनक्किद किया, जिसमें रियासत में खेलों की तकरीबात के इंतजाम और सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। फोरम में डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अल्फानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कतर स्टार्स लीग हानी तालिब बल्लान ने शिरकत की। फोरम के दौरान सिक्योरिटी और सेफ्टी प्लान्स, सिविल डिफेंस प्लान्स और मेडिकल प्लान्स पर तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा मुतालिका इदारों के दरमियान राबते और हम आहंगी के तरीका कार पर भी जायजा लिया गया, ताकि एक महफूज

सेक्टर के लिए रियासत कतर की विजन के मुताबिक हो। फोरम के अख्तिताम पर डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अलसानी ने शिरकत करने वाले इदारों को फोरम की कामयाबी में उनकी कोशिशों के एतराफ में तकरीबी शील्ड और तकरीमी असनाद पेश की। वजारत दाखिला ने आवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके जराए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार किया गया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में हजारों अफराद तक पहुंच सकती है। वजारत दाखला ने जोर दिया है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और रस्मी जराए से मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर अफेयर्स शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने रियासत कतर में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सफीर होंग जेपियो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दरमियान तावन के ताल्लुकात, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुस्तहकम रवाबित का जायजा लिया गया और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई दूसरे उमूर पर भी बातचीत की गई। सामीन, अपनी गाड़ी के टायर्स को अच्छी हालत में रखना सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि आपकी और दूसरों की हिफाजत के लिए भी बहुत अहम है। खराब या घिसे हुए टायर्स ब्रेकिंग को कमजोर कर सकते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम हो सकता है और हादसात का खतरा बढ़ सकता है। टायर्स की बेहतर मेंटेनेंस के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले टायर्स की हवा यानी एयर प्रेशर बाकायदगी से चेक करते रहें और कंपनी से बताए गए एयर प्रेशर को हमेशा जहन में रखें। घिसे हुए या खराब टायर्स को फौरन तब्दील करवा लें। टायर्स की ट्रेड डेप्थ चेक करते रहें ताकि सड़क पर बेहतर ग्रिप बरकरार रहे। टायर्स की रोटेशन और व्हील अलाइनमेंट वक्त पर करवाएं। सफर से पहले टायर्स में कट्स, बल्जेस या किसी भी किस्म के नुकसान का जायजा लें। गर्म मौसम में टायर्स की हालात पर खास तवज्जो दें क्योंकि ज्यादा गर्मी टायर फेलियर का सबब बन सकती है। याद रखें, टायर्स आपकी गाड़ी और सड़क के दरमियान वाहिद राबता होते हैं। उनकी मुनज्जम देखभाल हादसात से बचाव और महफूज सफर की बुनियाद होती है। वजारत दाखिला का कहना है कि गाड़ी के टायर्स का ख्याल रखना आपकी रोड सेफ्टी को बेहतर बनाता है। रियासत कतर ने जमहूरिया तुनिशिया में अरब वुज़राए दाखला काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक़िद नवी अरब कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनलिटी एंड सिविल स्टेटस डिपार्टमेंट्स की कार्रवाइयों में शिरकत की। वजारत दाखला के वफ्द की क़यादत डायरेक्टर ऑफ द नेशनलिटी एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट मेजर जनरल हमद अब्दुल वाहब अल मुतवा ने की। कॉन्फ्रेंस में एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर गौर किया गया और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरब ममालिक के दरमियान नेशनलिटी और सिविल स्टेटस से मुतालिक तजुर्बात के तबादले और मुश्तरका तआवुन को मजीद मजबूत बनाना था। समईन, गाड़ी के अंदर बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हमेशा उनकी उम्र और कद के मुताबिक मुनासिब चाइल्ड सीट का इंतखाब किया जाए और सीट बेल्ट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को गाड़ी में कभी भी बगैर सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट के सफर नहीं कराएं। सफर छोटा हो या लंबा, हिफाजती कवायद पर अमल करना उनकी जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। बच्चों की उम्र और वजन के मुताबिक चाइल्ड सीट इस्तेमाल करें। चाइल्ड सीट को गाड़ी में ठीक तरीके से इंस्टॉल करें। सीट बेल्ट को हमेशा सही तौर पर बांधें। छोटे बच्चों को मुमकिन हो तो पिछली सीट पर बिठाएं। सफर से पहले चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट की जांच करा लें। वजारत दाखिला का कहना है कि हमारे लिए आपके बच्चों की सलामती सबसे अहम है। उनकी हिफाजत आज का एहतियात और कल की मुस्कुराहट है। दोस्तों, आपका ट्रेन से

0: क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। शो का नाम है कतर ग्रीन बीट। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेल, हमारे कतर ग्रीन बीट का ये दूसरा सीजन अब यूँ कहें तो अपने फाइनल मुकाम पर है, और ये फाइनल एपिसोड है इस सीज़न का। और उसके बाद जब दोबारा हम कतर ग्रीन बीट लेकर आएंगे तो और भी खास बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। वेल, पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक लंबी जर्नी तय की थी। हम अल थकीरा के उन गहराइयों में गए जहां मैनग्रूव सांस लेते हैं, और वहां से निकलकर हमने हमारे स्टेडियम्स के हाईटेक कूलिंग सिस्टम्स को भी देखा। हमने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अजूबे देखे, और रेगिस्तान के उस पुराने, वो कहते हैं ना, हिकमत यानी विजडम को भी समझा जो इस मिट्टी को सदियों से जिंदा रखती है। मगर आज इस ऊंचाई से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ है, सस्टेनेबिलिटी कोई आखिरी मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक होराइजन है और एक ऐसा खूबसूरत इत्तफाक है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, है कि नहीं? आज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है, द कतर नेशनल विजन 2030। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये विजन जो है सिर्फ उन ऊंची इमारतें या चमकते स्काईस्क्रेपर्स या सोलर पैनल्स के बारे में है। अब ये सब हम जानते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है, पर सच तो ये है कि इस विजन की असली जो रूह है, इसका सबसे मजबूत पिलर जो है, वो है हमारा ह्यूमन पिलर। ये उन बच्चों के बारे में है जो आज एस्पायर पार्क में खेल रहे हैं। ये उस विरासत यानी लेगेसी के बारे में है जो हम उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो बस आज कुछ ऐसी ही कमाल की बातें हम अपने शो कतर ग्रीन बीट पर करने वाले हैं, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। और चलिए, अब वक्त है हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं द ग्रीन वायर। आज हम स्कोर बोर्ड पर एक गहरी नज़र डालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे इस प्यारे से कतर ने जो करिश्मे कर दिखाए हैं ना, वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। अक्सर हम हेडलाइंस पर पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन एनर्जी, पर ये क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये लफ्ज हमारी ज़मीन पर कैसे उतर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं? आज हम सिर्फ डेटा की बात नहीं करेंगे, आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जो कतर को एक ग्लोबल लीडर बना रहा है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ यू रेडी, देन आगे हमारी बातचीत करने में हमें बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पावर की, उस शक्ति की, उस एनर्जी की जो हमारे सर पर हर रोज चमकती है, दैट इज सन या सूरज। तो जनाब, इसी साल हमने अलखरसा सोलर पीवी पावर प्लांट का इनॉग्रेशन देखा। सोचिए, कई स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए लाखों सोलर पैनल्स, ये सिर्फ कांच और सिलिकॉन के टुकड़े नहीं है, ये कतर की एनर्जी का नया चेहरा है। ये रीजन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हम हर साल 26 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोक रहे हैं। जब हम सूरज की गर्मी से परेशान होते हैं, वही सूरज हमारे घरों को रोशन करने की ताकत बनते जा रहा है। ये है टेक्नोलॉजी और कुदरत का सही बैलेंस या सही मेल। और जनाब, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी दुनिया हमारे स्टेडियम्स में बैठी थी। यस, ये तो एक हिस्ट्री की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख हो चुकी है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसने सिर्फ फुटबॉल के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि रीसाइक्लिंग का एक ऐसा नया, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि दुनिया देखती रह गई। कतर ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट का एक बड़े पैमाने में इसे होस्ट किया जाएगा, बस वो हमने कर दिखाया। स्टेडियम से निकलने वाला कचरा लैंडफिल में नहीं गया, बल्कि उसे रीसाइकिल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एनर्जी में बदला गया। हर स्टेडियम की अपनी एक कहानी थी, जैसे स्टेडियम 974, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो नए मकसद के लिए रीसाइकिल हो रहा है। ये हमारा कमिटमेंट था पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन सफर यही नहीं खत्म हुआ। अगर आप आज कतर की सड़कों पर निकलें, तो आपको एक बदलाव भी दिखेगा। हमारा ग्रीन बेल्ट हर दिन फैल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की प्लांट मिलियन ट्रीज इनिशिएटिव के तहत रेगिस्तान की रेत अब हरियाली में बदल रही है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये पेड़ हमारी मिट्टी में जान फूंक रहे हैं, हवा को ठंडा कर रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बना दे रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी 2021-2026 लॉन्च की है। टारगेट बड़ा है, 2030 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को 25% तक कम करना। ये कोई आम बात नहीं है। ये रोड मैप हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे हम हर सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को एक लाजमी हिस्सा बना सकते हैं। तो जनाब, इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच सबसे प्यारी बात पता है क्या है? वो ये है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसे जी भी रहे हैं। हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम प्लेयर्स भी हैं। जब आप सुबह अपनी कार के बजाय दोहा मेट्रो पर सफ़र करते हैं, या दोहा मेट्रो को चुनते हैं, या जब आप मुशर्रफ के किसी कैफ़े में वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ मिलता है ना, उसको ना कह देते हैं, या जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पानी की एक बूंद कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप बन जाते हैं वो ग्रीन वायर जो हमारे नेशनल विजन 2030 को हमारी हकीकत से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट। अक्सर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीन्स, फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स या ग्लास से बनी बिल्डिंगें, ये इन सब की ना तस्वीरें सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी धरती को बिल्कुल बचा लेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट में छुपा है? इस सीजन हमारा आखिरी और सबसे खास प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट जाता है एक ऐसी संस्था को जो कतर की मिट्टी से उपजी है, अर्थना। यस, कतर फाउंडेशन ने जब अर्थना को लॉन्च किया, तो मकसद सिर्फ एक नया ऑफिस बनाना नहीं था, मकसद था एक ब्रिज बनाना, एक ऐसा पुल जो ग्लोबल साइंस और हमारी लोकल लेगेसी को आपस में जोड़ सके। अर्थना हमारा वो मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं है, ये हमारी रूह को हमारी ज़मीन से दोबारा जोड़ने का काम करता है। अर्थना की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है, वो है उनका नज़रिया। वो कहते हैं, लेट्स लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड। सोचिए, सदियों पहले जब ना बिजली थी, ना एसी था और ना ही मॉडर्न इंजीनियरिंग थी, तब हमारे जो पुरखे थे या एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस तपते रेगिस्तान में कैसे गुजारा किया होगा? वो विजडम क्या थी? हमारे बेदुइन एंसेस्टर्स कुदरत के साथी थे, वो जानते थे कि कब हवा का रुख बदलेगा, कब बारिश होगी और कैसे पानी की एक एक बूंद को यानी इस अमानत को हम समझ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। अर्थना इसी पुरानी समझ को आज की मॉडर्न साइंस के साथ मिला रहा है। वो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पुराने आर्किटेक्चर को कैसे बर्जील यानी विंड टावर्स गर्मी में ठंडक दे सकते हैं। वो देख रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। अर्थना हमें बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारे खून में है। हमने हमेशा से रेगिस्तान के साथ दोस्ती की है, उसका मुकाबला नहीं किया। अब बात करते हैं एक ऐसे लव्स की जो अर्थना की फिलॉसफी की जान है और वो है बैलेंस। तो जनाब, कुदरत ने इस दुनिया को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर बनाया है। जितना हम लेते हैं उतना ही हमें लौटाना भी पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हम देखें तो इंसान ने इस बैलेंस को ना बिगाड़ दिया है। हमने धरती से बस लिया ही है, लौटाया कुछ भी नहीं। अर्थना हमें वापस देना, ये बैलेंस सही तरीके से करना सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि तरक्की या प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि कुदरत को पीछे छोड़ दे।

0: असली तरक्की वो है जहां स्काई स्क्रेपर्स और मैनग्रोव्स के एक साथ सांस लेने में हम मदद कर सकें। अर्थना के प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंजम्पशन को कम करें और अपने रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। अर्थना सिर्फ रिसर्च पेपर्स और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, इनका असली रंग दिखता है अर्थना प्राइज में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि अर्थना हमारे शहर के उन अनसंग हीरोज को पहचान रहा है जो खामोशी से बदलाव ला रहे हैं। वो स्कूल के टीचर्स जो बच्चों को स्कूल के गार्डन में कंपोस्टिंग सिखाते हैं, वो छोटा SME या स्टार्टअप जो दोहा की धूप से बिजली बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है, या वो स्टूडेंट जो प्लास्टिक वेस्ट से आर्ट बना रहे हैं। अर्थना प्राइज ये साबित करता है कि सस्टेनेबिलिटी किसी एक मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, ये हमारी शेयर्ड लेगेसी है। मैंने देखा है कि कैसे मुशायरे में या एजुकेशन सिटी में छोटे बच्चे अर्थना के वर्कशॉप्स में मिट्टी से जुड़ते हैं। जब एक बच्चा अपने हाथ से एक पौधा लगाता है और उसे बड़ा होते हुए देखता है, तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा, वो अपने अंदर हिफाजत का एक एहसास जगा रहा है। अर्थना इस कम्युनिटी स्पिरिट को जिंदा कर रहा है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: अब आते हैं हमारे नेशनल विजन 2030 पर। यस, विजन 2030 के चार पिलर्स हैं, उनमें सबसे अहम है ह्यूमन पिलर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता, 2030 में कतर कैसा दिखेगा? मेरा जवाब होता है, 2030 सिर्फ टेक्नोलॉजी का साल नहीं है, वो हमारी अमाना का इम्तिहान है। यस, अमाना यानी ट्रस्ट। हमें ये ज़मीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमारे बुजुर्गों से तोहफे में नहीं मिले, बल्कि हमारे बच्चों से उधार मिला है। इट इज़ अ ट्रस्ट वी मस्ट सेफ गार्ड। अर्थना हमें बताता है कि 2030 का ह्यूमन पिलर वो इंसान है जो कॉन्शियस है, वो जो जानता है कि उसके हर एक्शन का असर इस मिट्टी पर पड़ता है। अर्थना इज बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटल गार्जियंस। हम सिर्फ एक शहर नहीं बना रहे जो 2030 में चमकेगा, हम एक ऐसी लेगेसी तैयार कर रहे हैं जो सदियों तक चलेंगी। अर्थना का हर प्रोजेक्ट, हर वर्कशॉप और हर रिसर्च इसी ह्यूमन पिलर को मजबूत करने के लिए है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ये सीजन खत्म हो रहा है। अक्सर शो के आखिर में मैं आपको एक ग्रीन टिप देती हूँ, कभी पानी बचाने की, कभी प्लास्टिक कम करने की, लेकिन आज क्योंकि ये हमारा फिनाले है, आज हमारा आखिरी शो है इस सीजन का, मैं सिर्फ एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी। आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारा ग्रीन बीट मैनिफेस्टो, हाँ वो क्या है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा वादा जो हम अपने आप से करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग में महफूज कर लें, ताकि जब तक हम अगले सीजन में ना मिले, आप कतर ग्रीन बीट के बीट को जिंदा रखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस जिंदगी जीने का एक नया और बेहतर तरीका है। हमारा पहला उसूल क्या है? पहला उसूल है वन लेस रूल। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये क्या है, तो हमारे कतर में लाखों लोग हैं, अगर मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? यही वो सोच है जिसे हमें बदलना है। सोचिए, अगर कतर का हर रेजिडेंट सिर्फ एक चीज कम करने का फैसला कर ले, तो उसका असर कितना बड़ा होगा। अगले एक महीने के लिए अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज कम। शायद वो एक प्लास्टिक बैग हो सकता है जो आप सुपरमार्केट में मना कर देंगे, शायद वो एक मिनट हो जो आप अपने शहर में कम बिताएंगे, शायद वो एक अननेसेसरी कार ट्रिप हो जिसके बजाय आप वॉक करेंगे या मेट्रो लेंगे। एक मिनट पानी बचाने का मतलब है तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी। अगर 30 लाख लोग एक मिनट बचाएंगे, तो सोचिए कितना बड़ा समंदर हम बचा रहे हैं। याद रखिए, समुंदर में उठने वाली हर बड़ी लहर एक छोटी सी हलचल से शुरू होती है। स्मॉल रिपल्स क्रिएट बिग वेव्स। ये वन लेस रूल आपकी लाइफ को आसान बनाएगा और हमारी मिट्टी को सून देगा। जरूर ट्राई करें। बाद आता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कि बिकम अ सिटीजन साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट बनने के लिए

किसी बड़ी लैब या वाइट कोट की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल बन सकता है। कैसे? घर में रहते हैं, ठीक है, जहां लोग सोचते हैं कि सिर्फ रेत है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बायोडायवर्सिटी लाजवाब है। एक आई नेचुरलिस्ट या इसके जैसे कई सारे एप्स हैं जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप वीकेंड पर जकरीद जाते हैं या फुवारित के बीच पर होते हैं या अपने गार्डन में बैठे होते हैं, तो ज़रा रुकिए, वहाँ कोई अनजान सा परिंदा दिखे या रेगिस्तान का कोई छोटा सा फूल, उसकी एक फ़ोटो लीजिए और ऐप पर अपलोड कीजिए। आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। आपकी एक फ़ोटो से उन्हें पता चलता है कि हमारी वाइल्ड लाइफ कहाँ पनप रही है, कौन से पौधे खत्म हो रहे हैं और किन्हें हमें हिफाजत देनी है। समझ रहे हैं आप? आप कतर के डिजिटल गार्जियन बन सकते हैं, हमारी मिट्टी की कहानी लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं, साइंस को लैब से निकाल कर अपने फ़ोन में जगह दे सकते हैं। हमारा तीसरा और सबसे अहम उसूल, कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव। सस्टेनेबिलिटी खामोशी में दम तोड़ देती है, आप समझते हैं? अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो ये सिर्फ एक किताबी लफ्ज बनकर रह जाएगी। इसे अपनी मजलिस का हिस्सा बनाइए, अपने दस्तखान पर इसका जिक्र कीजिए। सबसे ज़रूरी है

0: अपना हक जमाए और सही बात सब तक पहुंचाए। इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का हमारा ग्रैंड फिनाले, आज हमारा कतर ग्रीन बीट ये आखिरी एपिसोड था जिससे अब मैं रुखसती लेना चाहूंगी। अब दुआ करते हैं कि अगले एपिसोड में आपकी मेरी फिर मुलाकात हो नए नवेले टॉपिक्स के साथ। आपको हमारा कतर ग्रीन बीट कैसा लगा आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर 6622107 पर अपने मैसेजेस के साथ, और हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। और अभी इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अपने कतर को हरा भरा बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में जो भी आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके वो जरूर दीजिएगा। Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट,
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, Dil Se Desi.
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: अब उससे हमने अपना ये हिसाब किताब मांगा कि इतना फायदा हो रहा है, हमको तो कुछ मिलना चाहिए, 2-3 साल हो गए
1: जी।
0: तो उसने जो है मना कर दिया, बोला मैं कोई पैसा नहीं दूंगा और अगर पैसे चाहिए तो मैं पुलिस स्टेशन में पेपर बना कर दे दूंगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म है और जितने पैसे चाहिए मैं उतना देता हूँ।
1: अच्छा, यानी अगर आपने तो, उनसे प्रॉफिट मांग लिया तो वो कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा लेकिन रिश्ता खत्म कर देंगे,
0: रिश्ता खत्म कर दूंगा, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, जो मतलब जो मैंने लगाया था वो भी नहीं दिया और जो फायदा हुआ वो भी नहीं दिए।
1: अल्लाह हू अकबर।
0: तो अंदर से मेरा दिल बहुत रोता है, मुझे करीब ये 15 साल हो गए आज, वो बहुत पैसा वाला आदमी है और हम कतर में काम कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए आप, मैं बहुत परेशान होता हूँ वो बात याद करके।
1: सब्र कीजिए, और आज हमारा मौजू भी गुफ्तगू का यही था कि सब्र करना चाहिए, देखते हैं इंशाल्लाह इस पर बाकी शेख साहब से बात करेंगे कि अगर ये उनका ये अमल कि जो उन्होंने पैसे लिए और फ़ायदा आपको नहीं दिया
0: तो ये फायदा भी नहीं दिया, हाँ, तो देते काम के लिए वो भी नहीं दिया,
1: तो ये पैसा उनके लिए क्या वबाल जान बन सकता है क़यामत के दिन और इस दुनिया में, उस पर हम शेख साहब से बात कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल भाई आपका? सामिन, सवालात का सिलसिला हमारा चल रहा है और काफ़ी सवालात हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगु करेंगे, प्रोग्राम के आखिर में तमाम सवालात जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और गुज़श्ता हफ्ता भी हमारा एक सवाल रह गया था, उसके जवाब देने से भारत भाई का था और उस ताल्लुक़ से भी हम इंशाल्लाह शेख साहब से बात करेंगे। सामीन, आज हमने गुज़श्ता हफ्ते सखावत और बुख़ल गुफ्तगू की थी, अख़लाक़ हसना की सीरीज़ हमारी चल रही है, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते रहते हैं। आज का हमारा मौजू है सब्र, सब्र करना। सामीन, कभी आपने गौर किया है कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, कभी आसानी आती है तो कभी मुश्किलात का सामना होता है, कभी इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक हालात चलते हैं, कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान बहुत कोशिश के बावजूद मर्जी का नतीजा हासिल नहीं कर पाता, ऐसे वक्त में इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। खुशी के वक्त में खुश रहना तो आसान है कि जब खुशी का वक्त हो उस वक्त आप खुश रहें तो ये तो बहुत आसान काम है, कोई कामयाबी मिल जाए आपको तो उस पर आप शुक्र करें ये भी आसान है, लेकिन जब हालात हमारे ख़िलाफ़ हों, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हालात ना हों, जब इंतज़ार तवील हो जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मेहनत का नतीजा ना मिले, भाई हमने मेहनत की, अभी जैसे हमारे पास सवाल आया कि अपना तो साथ छोड़ दिया, हमारी मेहनत का पैसा भी उसने ले लिया लेकिन उसके मुताबिक हमें उस मेहनत का नतीजा नहीं मिला, इसी तरह जब बीमारी आई या परेशानी ने घेर लिया तो उस वक्त इंसान के ईमान, हौसले और किरदार का इम्तहान होता है, यही वो मकाम है जहाँ सब्र इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनता है। जी हाँ, आज हमारा मौजू गुफ्तगू सब्र है। ज़रा सोचें, सब्र आखिर है क्या? क्या सब्र सिर्फ ये है कि इंसान खामोश रहे और तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहे, या सब्र इससे कहीं ज़्यादा वसी और गहरी हकीकत का नाम है? हकीकत तो ये है कि इस्लाम ने सब्र को महज एक अख़लाक़ी खूबी नहीं करार दिया है, ये नहीं कहा कि सब्र एक अख़लाक़ हसना में से एक अच्छा खुलुक है, नहीं, बल्कि सब्र को मोमिन की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा करार दिया है। क़ुरान मजीद में बार बार सब्र की तलकीन आती है, अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए ऐसी बशारतें बयान फरमाई हैं जो किसी भी परेशान हाल इंसान के दिल को हौसला दे सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मसले ख़त्म नहीं होंगे, हालात हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होंगे, हर दुआ का जवाब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएगा, लेकिन अगर इंसान ने सब्र करना सीख लिया, अल्लाह पर एतमाद करना सीख लिया, मुश्किल वक्त में अपने ईमान को मज़बूत रखा तो वही मुश्किल उसके लिए अल्लाह के क़ुर्ब और अजर का ज़रिया बन सकती है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: के करीब है.
1: टॉपिक ऑफ द डे.
0: द रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबिलिटी. आज का शो है नौजवानों के लिए, जवानों के बारे में और उनके उस ब्राइट फ्यूचर के बारे में जो हम सब चाहते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स और यूथ कैसे एनवायरमेंटल चेंज के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं. प्लस हम लाए हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, एक्साइटिंग ग्लोबल स्टोरीज और एक नया सस्टेनेबिलिटी चैलेंज जो आपके लिए है. सो स्टे ट्यून्ड और अपनी थॉट शेयर करना ना भूलें ऑन आवर सोशल मीडिया @FM107 कतर या व्हाट्सएप पर 666-22107. लेट्स डाइव इनटू अ ग्रीनर टुमारो. चलें शुरू करते हैं.
1: सस्टेन द फ्यूचर.
0: लिसनर्स, आज का टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारी नौजवान नस्ल कैसे हमारे प्लैनेट अर्थ को बेहतर बना सकती है. यूथ इज द फ्यूचर. और जब बात आती है एनवायरनमेंट की, तो ये यूथ ही है जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकती है, क्योंकि ये है वो न्यू जनरेशन जो सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि प्लैनेट के फ्यूचर को शेप करने में भी सेंट्रल रोल प्ले कर रही है. लेकिन सवाल ये है, हाउ, कैसे कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स और यंग लीडर्स ये काम. पहले तो ये समझना जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है. सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर करते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आज के रिसोर्सेस इस तरह यूज करना कि कल की जनरेशन के लिए भी सेफ और अवेलेबल रहें. मतलब ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी आसान बनाएं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस को भी एक हेल्दी प्लैनेट मिले. इसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज को स्लो करना, पानी और एनर्जी सेव करना, पोल्यूशन और वेस्ट को कम करना और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना. और ये सब काम यूथ के बिना पॉसिबल ही नहीं. यूथ का मतलब है वो लोग जो 15 से 30 साल के एज ग्रुप में आते हैं. आज दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 50% यूथ पर मुश्तमिल है. मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा पैशन फॉर चेंज. और सबसे बड़ी बात ये कि यूथ ही वो ग्रुप है जो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट करता है. इस वजह से सस्टेनेबिलिटी की हर मूवमेंट में यूथ फ्रंट लाइन पर होती है. क्यों यूथ का रोल इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फ्यूचर उनका है. क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर कल की जनरेशन को होगा, इसलिए यूथ नेचुरली कंसर्न्ड है. इनोवेशन ड्राइव करते हैं. नई एप्स, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज मोस्टली यंग लोग बनाते हैं. अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. यूथ मैसेजेस को वायरल बना देती है. पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं. यूथ के रिलीज और प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट तक पॉलिसीज चेंज करने पर मजबूर हो जाती हैं. यानी अगर सस्टेनेबिलिटी एक कार है तो उसके ड्राइवर यूथ हैं. जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का आता है. और यहाँ यूथ ने दुनिया भर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. स्वीडन में सिर्फ एक टीनएजर ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट शुरू की जो आज ग्लोबल बन चुकी है. युगांडा में अफ्रीका की यूथ वॉइस जो अपने कॉन्टिनेंट के लिए क्लाइमेट जस्टिस डिमांड करते हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और क्लीन अप कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं. ये एग्जांपल्स दिखाती हैं कि एक जवान आवाज पूरी दुनिया को हिला सकती है. यूथ का सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करना. हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में एनवायरमेंट क्लब्स बनते जा रहे हैं. एक्टिविटीज देखी जाएं तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, प्लास्टिक फ्री कैंपस कैंपेन्स, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, सेमिनार और वर्कशॉप्स करवाते हैं. इस प्रोसेस में यूथ ना सिर्फ खुद सीखती है बल्कि अपने पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी एजुकेट करते हैं. सस्टेनेबिलिटी सिर्फ स्पीचेस से नहीं आती बल्कि इनोवेशन से आती है. और यहाँ यूथ स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा

कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रीसाइक्लिंग एप्स जो कचरे को डिजिटलाइज करके रीसाइकिल कंपनीज तक पहुंचा देती हैं। ग्रीन टैग स्टार्टअप्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं। फिर इको फ्रेंडली फैशन ब्रांड्स जो वेस्ट मटेरियल से नए क्लोथ्स बनाते हैं। ये सब काम मोस्टली यंग एंटरप्रेन्योर्स करते हैं जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। सोशल मीडिया यूथ का सबसे बड़ा वेपन है। एक हैशटैग ट्रेंड करता है और बिलियंस ऑफ लोग उस कॉज के बारे में सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो #BeatPlasticPollution, #ClimateStrike और #GoGreen। सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। इस तरह सस्टेनेबिलिटी एक कूल और ट्रेंडी चीज बन जाती है। यूथ का रोल सिर्फ एक्टिविज्म और स्टार्टअप्स तक लिमिटेड नहीं, कई कंट्रीज में यूथ पॉलिसी मेकिंग फोरम्स का हिस्सा है जहां वो डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को एडवाइस देते हैं। यूथ डेलीगेट्स यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, लोकल काउंसिल्स में, एनवायरमेंट कमिटीज में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हर मेजर प्रोटेस्ट का रिजल्ट होता है पॉलिसी चेंज और इसके पीछे यूथ की आवाज होती है। हर शहर में एनजीओस और कम्युनिटी ग्रुप्स सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। यूथ उनमें सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बीच क्लीनअप्स हो, सिटी प्लांटेशन हो, अवेयरनेस वॉक्स हो या फिर रीसाइक्लिंग कलेक्शन ड्राइव्स, इससे ना सिर्फ सिटी क्लीन होता है बल्कि यूथ का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं जब यूथ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो यूथ की कैंपेन्स डायरेक्टली पोल्यूशन और इमिशंस रिड्यूस करती हैं। हर ट्री प्लांटेशन और वेस्ट रिसाइक्लिंग का रिजल्ट लॉन्ग टर्म होता है। इसके साथ ही यंग माइंड्स न्यू सॉल्यूशंस लेकर आते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक के बैग को रिप्लेस करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स। जब यूथ लीड करती है तो पूरी कम्युनिटी इंस्पायर होती है। पेरेंट्स, टीचर्स और लोकल लीडर्स उनके पीछे चलते हैं। सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट से यूथ लीडरशिप, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं। ये स्किल्स उनके प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प करती है। लेकिन सब कुछ इजी नहीं होता। यूथ को सस्टेनेबिलिटी में काम करते वक्त बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहला इशू है फंडिंग का। स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे अरेंज करना मुश्किल होता है। फिर है पॉलिसी बैरियर्स। गवर्नमेंट हर वक्त यूथ की आवाज नहीं सुनती। लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक रीजन है हर यूथ सस्टेनेबिलिटी को सीरियस नहीं लेता। फिर प्रेशर ऑफ स्टडीज एंड जॉब्स, बहुत से स्टूडेंट्स के पास एक्टिविज्म के लिए वक्त ही नहीं होता। फिर भी जो यूथ मोटिवेटेड होता है वो इन बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ता है। कल का यूथ सस्टेनेबिलिटी को और भी ज्यादा इंटीग्रेट करेगा। हर फील्ड में इको जॉब्स क्रिएट होंगी। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, लॉयर्स सब सस्टेनेबिलिटी में स्पेशलाइज्ड होंगे। यंग डेवलपर्स एआई और ब्लॉकचेन को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। गवर्नमेंट्स को यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कैबिनेट में लाने होंगे। इंटरनेट के थ्रू यूथ एक ग्लोबल ग्रीन फैमिली बनेंगे। अगर आप यूथ हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए स्टार्ट हो सकती हैं। अपने शहर या स्कूल में ग्रीन क्लब बनाइए। प्लास्टिक बॉटल्स और बैग्स अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कंटेंट शेयर कीजिए। एनजीओस और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर बन जाइए। अपना खुद का इको स्टार्टअप आइडिया डेवलप कीजिए। हर छोटा स्टेप एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारे रीजन के लिए यूथ बहुत बड़ा एसेट है। अगर गवर्नमेंट्स सीरियस एक्शन लें तो यूनिवर्सिटीज में ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज लॉन्च हो सकते हैं। हर शहर में यूथ इको फोरम्स बन सकते हैं। सब्सिडीज और ग्रांट्स यूथ स्टार्टअप्स को दी जा सकती हैं। स्कूल से भी बच्चों को इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल सिखाया जा सकता है। ये रोड मैप अगर फॉलो हो जाए तो साउथ एशिया
यूथ की वजह से एक सस्टेनेबल हब बन सकता है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम रियल एग्जांपल्स। कतर में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, कुछ स्कूल्स में रिसाइकलिंग ड्राइव्स चल रही है, जहां स्टूडेंट्स प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर और दूसरे वेस्ट को सेपरेट करते हैं। एक स्कूल ने तो अपना इको क्लब बनाया है, जहां स्टूडेंट्स हर महीने ट्री प्लांटिंग कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। सोचिए, अगर हर स्कूल ये करे तो कतर के कितने एरियाज ग्रीन हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल वाटर स्कार्सिटी की, जो कि इनडायरेक्टली यूथ की सस्टेनेबिलिटी एफर्ट से लिंक करती है। दुनिया भर में पानी की कमी एक बड़ा प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक दुनिया के बहुत से हिस्सों में पानी की सीवियर शॉर्टेज हो सकती है इफ वी डोंट एक्ट नाउ। कतर में डिसोलिनेशन प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेस कम है। लेकिन डिसोलिनेशन के बावजूद पानी का वेस्टेज एक इशू है। फॉर एग्जाम्पल, गार्डनिंग में या क्लीनिंग में हम अक्सर पानी ज्यादा यूज कर लेते हैं। यूथ यहाँ लीड कर सकती है, स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर या घर में अपनी फैमिलीज को वाटर सेविंग हैबिट सिखाकर। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ बज़वर्ड, लिसनर्स, ये एक लाइफस्टाइल है, और यूथ इसको अपनाकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इमेजिन अगर हर स्टूडेंट अपने स्कूल में एक छोटा सा चेंज लाए, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स की बजाय रीयूजेबल बॉटल्स यूज करना, तो ये छोटी सी आदत कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सिंपल स्टेप से शुरू करें, ज्वाइन एन इको क्लब इन स्कूल या अपना क्लब स्टार्ट करें, ट्री प्लांटिंग ड्राइव में शामिल हो, और सबसे बड़ी बात, एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स। सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करें। एक पोस्ट, एक स्टोरी या एक वीडियो भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। तो लिसनर्स, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे पास होगा हमारा सेगमेंट ग्रीन फ्लैश। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महविश खान और अब वक्त है हमारी ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का। तो चलिए दुनिया भर से कुछ एक्साइटिंग सस्टेनेबिलिटी न्यूज सुनते हैं इन आवर ग्रीन फ्लैश सेगमेंट।
0: ग्रीन फ्लैश
1: स्टोरी नंबर वन, स्वीडन के एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन शुरू की जहां उन्होंने अपनी सिटी के मेयर को कन्विंस किया कि उनके स्कूल के आसपास साइकिल लेंस बनाई जाए। अब ये स्टूडेंट्स हर रोज साइकिल से स्कूल जाते हैं विच रिड्यूसेस कार्बन इमिशंस और उनकी हेल्थ भी बेहतर हो रही है। वर्ड एंड इंस्पिरेशन। सेकंड स्टोरी है कीनिया के बारे में। कीनिया में एक ग्रुप ऑफ यंग एक्टिविस्ट ने प्लास्टिक वेस्ट से इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाने का तरीका ढूंढ लिया। ये ब्रिक्स ट्रेडिशनल ब्रिक्स से सस्ती है और इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है। ये है यूथ पावर की असली एग्जाम्पल। स्टोरी नंबर थ्री इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में सोलर पैनल्स लगवाने के लिए फंड्स कलेक्ट किए। अब उनके कैंपसेस 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रहे हैं। इमेजिन अगर कतर के स्टूडेंट्स भी ऐसा कुछ करे तो क्या ही बात हो। ये तीन स्टोरीज बताती हैं कि यूथ हर जगह चेंज ला रहे हैं। इफ दे कैन डू इट सो कैन वी। Share your thoughts with us at FM 107 Qatar या WhatsApp पे 666-22107। अब वक्त है हमारे ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट का।
0: ग्रीन इनोवेशन।
1: अब हम अपनी ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट सेगमेंट में देखते हैं एक ऐसा कटिंग एज आइडिया जो फ्यूचर को शेप कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक यंग इनोवेटर के बारे में जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग डेवलप कर रहा है। ये पैकेजिंग प्लास्टिक के मुकाबले 100% इको फ्रेंडली है और कुछ ही हफ्तों में डीकम्पोज हो जाता है। इसके पीछे आइडिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम किया जाए जो कि ओशंस और लैंडफिल में बहुत बड़ा इशू है। ये इनोवेशन एक गेम चेंजर है और ये यूथ का पैशन और क्रिएटिविटी दिखा रही है। सोचिए अगर हम अपने लोकल स्टोर्स में ऐसी पैकेजिंग यूज करें तो कितना वेस्ट रिड्यूस हो सकता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल इको लिविंग टिप्स के लिए। ये टिप्स आप आज से ही अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर थीम ऑफ यूथ एंड सस्टेनेबिलिटी।
0: इको लिविंग टिप्स।
1: अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज में एक इको क्लब बनाएं। वीकली मीटिंग्स रखें जहां आप रिसाइकलिंग, ट्री प्लांटिंग या क्लीन अप ड्राइव्स प्लान कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजेबल कप्स को गुड बाय कहें। एक रीयूजेबल बॉटल या कॉफी मग कैरी करें। ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। अपने स्कूल या कम्युनिटी के साथ ट्री प्लांटिंग इवेंट्स ज्वाइन करें। कतर के डेजर्ट क्लाइमेट में नेटिव प्लांट चूज करें जो कम पानी में ग्रो कर सके। सोशल मीडिया का यूज करें टू एजुकेट अदर्स। एक सिंपल पोस्ट या वीडियो बनाएं कि कैसे छोटे चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करें और देखें कैसे आप सस्टेनेबिलिटी के हीरो बन सकते हैं। अब सुनते हैं वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट सेगमेंट में एक इंस्पायरिंग ऑडियो क्लिप। ये है एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट की आवाज जो साउथ अफ्रीका से है।
0: Voices of the Planet.
2: I have learned that we really need to clean our beach because people waste a lot of litter on the beach and that there happens bad things with the fishes and that some of them can die. And I've seen few fishes that have died from this litter.
1: जी लिसनर्स, अभी आपने सुनी ये जबरदस्त इंस्पायरिंग आवाज और ये हमें याद दिलाती है कि हर छोटा कदम काउंट करता है। आप भी ऐसी इंस्पायरिंग

0: स्टोरीज शेयर कर सकते हैं FM 107 कतर पे या फिर व्हाट्सएप करें हमें 666-22-107 पे। लिस्टनर्स, अब टाइम है हमारे वीकली टेकअवे चैलेंज का।
1: वीकली चैलेंज,
0: इस हफ्ते का चैलेंज है स्टार्ट अ मिनी रिसाइकलिंग ड्राइव। अपने स्कूल, मोहल्ले या घर में एक छोटा सा रिसाइकलिंग बिन रखें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इनकरेज करें कि प्लास्टिक, पेपर या ग्लास को सेपरेट करें। अगले हफ्ते के शो में हमें बताएं कि आपका चैलेंज कैसा रहा। सेंड योर स्टोरीज टू FM 107 कदर या व्हाट्सएप एट 666-22-107। बहुत बहुत शुक्रिया लिस्टनर्स कि आपने हमारे साथ की इको जर्नी एंजॉय की। सस्टेन द फ्यूचर की इस एपिसोड में हमने देखा कि यूथ कैसे एनवायरनमेंट के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। अगले हफ्ते हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फीडिंग द फ्यूचर के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और कतर के डेजर्ट फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस ऑन FM 107 कतर और व्हाट्सएप पर 666-22-107। कीप शाइनिंग, कीप ग्रीन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम।
4: पुलिस और अवाम,
5: जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।
7: आज ही राब्ता करें
6: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
8: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी,
9: मुफीद साबित होंगी।
8: तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड।
9: सन एंड साउंड
8: संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
9: दिल से देसी।
10: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कितनी मार दिया फेरे कुड़ी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूव करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
2: कमाल की लाइन है वो ये इस तरह से है, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ द फर्स्ट स्टेप इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना जरूरी है। वेल, आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही गेस्ट से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स पर यकीन किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया।
3: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
2: आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। आप हैं मिस जवेरिया शब्बीर, जो एक डेडिकेटेड एजुकेटर हैं। मैम शब्बीर ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत से स्टूडेंट्स की जिंदगी तब्दील की है। आज हम इनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानेंगे, जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो टीचिंग का शौक रखते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जो है वेलकम कहना चाहेंगे मिस जवेरिया शब्बीर को। हाउ यू डूइंग मैम?
4: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। Thank you for calling me and teaching has been one of the thing that has countless stories and I have learned a lot from teaching itself and I'm very happy to share it over here with you.
2: Inshallah, we are looking forward to this. As we say that many educators are inspired by a personal experience or a role model, so could you share what first inspired you to become an educator and was there a defining moment or a person who set you on this path?
4: Okay, let me start with this, what lit the fire actually.
2: Okay.
4: Like being a student, I was influenced by my teachers who sparked curiosity and resilience in me.
2: Uh-huh.
4: So I was a student who was very good at written,
2: uh-huh.
4: but being a verbal and that confidence thing was lacking in me.
2: Uh-huh.
4: And there was this teacher, I want to take the names,
2: please.
4: Sir Javed Iqbal. He saw that and he was the one who encouraged me again and again by asking the questions.
2: Wow.
4: Yeah, it was the day when I had that confidence to speak up for myself and to speak my opinions and points. Yeah, that was the day that made me realize that yes, teaching makes a difference.
2: It makes a difference. Yeah. Very well said. Inspiration really truly shapes our journey. And so you are here. We also believe that every teacher's journey is unique, that we would love to explore now, often shaped by some early experiences and of course the education. So would you like to describe your journey into teaching, including your academic background, your initial roles and your first classroom impressions?
4: Yeah, if I talk about my own journey, my path into teaching was shaped by passion and humility. So if I talk about my own education, I was, as I told you earlier, that I was a very good student in written especially. So I am the gold medalist in my graduation.
2: Oh, mashallah.
4: Gold medalist in masters, and I had second position in my MPhil.
2: Mashallah.
4: So education, from education point of view, it was a good setup because of the teachers, I would say. And the time I stepped in the teaching career, it was the time the early roles showed me that teaching is about empathy.
2: True.
4: Yeah, it's just content. First classroom was humbling but empowering as well. So I want to quote over here, the classroom is where teacher

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry. भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling ताकि every movie experience बने Absolute Cinema.

0: आजकल पसंद आ रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार यू नो रोमांटिक मूवी हंसी वाली बहुत हो गई यार, हम प्रियदर्शन की मूवी देख लेंगे हंसने के लिए, लेकिन कुछ अलग सा दिखाओ। तो मैंने सोचा कि यार हॉलीवुड की मूवी का रिव्यू अगर हो जाए तो कैसा लगेगा। नहीं तो इस हफ्ते हम हॉलीवुड की मूवी के बारे में बात करेंगे इस शो में, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक,
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: मेरा नाम है फजील। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना जो थोड़ी सी डरावनी है, और सबसे पहले मूवी के मूड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस मूवी के हाइप को लेकर, यानी कि इस मूवी का हाइप कैसा था और ऑडियंस क्या सोच रही थी इस मूवी को देखने के बाद या ट्रेलर देखने के बाद कि क्या भाई देखना है या नहीं देखना है, और हाइप कैसी रही है, एंड देन कितने रेटिंग इसको मिला। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रेटिंग 5 में से 3 मिल रही है, 2 मिल रही है तो शायद जाऊं शायद ना जाऊं, लेकिन अगर ऑडियंस कह रही कि मूवी बड़ी अच्छी है भाई साहब, वो क्रिटिक्स ने कह दिया ऐसा, क्रिटिक्स ने वैसा कह दिया, कोई बात नहीं आप देखो, तो भाई अब ऑडियंस कह रही है, ऑडियंस से बढ़कर कोई क्रिटिक क्या ही होगा। तो हम इन सब बारे में बात करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन के बारे में फन फैक्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे। Then we gonna discuss about director का vision क्या है इस movie को बनाने के लिए, filming की location क्या थी, हम बात करेंगे कि transformation क्या रही actor को जब इस movie को बनाया गया, और फिर cinematography और sound, जैसे कि मैं कहता हूँ ये दिल और दिमाग है किसी भी movie का। उसके अलावा जो सबसे important है कि यार ये movie है किस पर, एक spoiler free plot के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी मोड़ी बातें, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस कि यार क्या रही परफॉर्मेंस एक्टर की, फिर क्रिटिक्स का क्या कहना है और वर्डिक्ट उस मूवी के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम इनसाइड इस मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। वेल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इनसाइडियस कहते हैं, कुछ लोग जैसे अमेरिका में इनसीडियस चलता है। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस मूवी के मूड और एटमोसफियर को लेकर बात करना।
2: All right, we're just gonna take a look inside. Looks like there's something stuck in here.
0: दोस्तों इस मूवी का मूड बहुत ही ज्यादा स्केरी, सीरियस और डर से भरा हुआ है। जब आप फिल्म देखना शुरू करते हो तो आपको पहले ही सीन से एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और अकेला लगता है, जिससे ऑडियंस के अंदर एक गहरी टेंशन बनती है। डायरेक्टर ने इसमें आम हॉरर मूवीज की तरह फालतू के सस्ते वाले, हल्के वाले डरावनी चीजें नहीं डाली हैं कि एकदम से आवाज जो है वो बढ़ा दो, पहले शांति रखो फिर आवाज गेट की मचा दो, नहीं वो सब नहीं, या फिर स्क्रीन पर एक बड़ा चेहरा एकदम से आ जाए डरावना सा तो वो लोग डर जाए, ये सब हरकतें नहीं करी हैं डायरेक्टर ने। इसमें भयंकर सीन डाले हैं भाई, फालतू के सस्ते स्केयर्स नहीं डाले हैं, जैसे कि अचानक कोई बिल्ली सामने आ जाए, हवा से पर्दा हिल जाए, ये सब हरकतें बहुत पुराना हो गया। ये बॉलीवुड में मिल जाएगा, कोई देख लो हॉरर मूवी आ रही है पक्का मैं बता रहा हूँ, बिल्ली सफेद कपड़ा वाली कोई औरत ये सब दिख जाएगा भाई। लेकिन इसकी जगह इस फिल्म में धीरे धीरे डर को बढ़ाया जाता है, पहले हल्की हल्की चीज है फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, ये आहट वाला एकदम बना दिया इन लोगों ने। लेकिन बहुत ही यूनिक है मूवी का सेकेंड हाफ, बिल्कुल अजीब और सपने जैसा लगता है क्योंकि कैरेक्टर्स एक बिल्कुल अलग अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसे द फर्दर बोला गया है। वो जगह बिल्कुल काली, धुंधली और डर से भरी हुई है, जहां बुरी चीजें जो है ना वो आपको दिखती हैं, बुरी रूह जो है वो दिखेगी आपको। पूरा माहौल इतना दबाव वाला, इतना प्रेशर वाला है कि आपको लगता है कि आप भी उस घर के अंदर के हिस्सों में हैं, घर के अंदर मौजूद हैं या घर के अंदर फंस गए है ना, आपको सांस लेने में भी डर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं या कोई सीन ऐसे हो जाता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, होता है ना कभी कभार आप किसी एक कमरे में रहते एक लंबी सांस लेते कि ये आप करते ना, इस मूवी में आप ये एक बार जरूर करेंगे, लेकिन उस इंटेंसिटी से देखो। ये नहीं कह रहे फजील ने पहले बताया तो मैं ना इस बार नहीं करूंगा, मैं देख लेना, ये हरकतें मत कर लेना। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ नया सा तो है।
2: Dad, ever since you was born, it's been just the two of us.
3: Hi.
4: Hi.
2: We were really happy.
5: Get some sleep.
2: until I started having these dreams.
0: पूरा माहौल प्रेशर से भरा होता है, सांस लेने में तकलीफ हो गई, फिल्म का हर एक सीन आपको डराने के लिए ही बनाए क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा कुछ अजीब चल रहा होता है। मूवी का अंधेरा और धुंधला लुक आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होने देता और आप पूरी फिल्म के दौरान अपनी सीट से चिपके रहते हैं। ये मूवी एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में काफी देर तक रहती है और आपको रात को सोने नहीं देती। वेल, आपको अगर याद हो आपने जब बाहुबली देखी थी तो उसका कुछ म्यूजिक ना आपके साथ रह गया होगा। आप काफी लंबे वक्त तक यू नो वो मूवी का म्यूजिक आपके दिमाग में रहा होगा और आपको गुनगुनाते भी होंगे। उसका ऑरा जो है ना वो आपके साथ चला जाता है, इसमें आपको वो ही फील होने वाला है। And now let's talk about the hype. इस मूवी का हाइप क्रेज कैसा रहा? Insidious मूवी के आने से पहले मार्केट में इसका हाइप बहुत ज्यादा था। आमतौर पे वेस्ट में ज्यादा इसका हिसाब किताब था, इवन इंडिया में भी लोग अब अंग्रेजी मूवी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पे हॉलीवुड हॉरर। उसके अलावा यहाँ पर भी अच्छा खासा क्रेज था, अच्छी खासी बुकिंग एडवांस में हो गई थी। हॉरर मूवीज देखने वाले लोग इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसके डायरेक्टर थे जेम्स वैन और राइटर थे वॉनेल, और ये दोनों बहुत ही जाने माने फेमस फ्रेंचाइजी जो हैं वो हैं, या कहें फेमस लोग हैं जो आमतौर पे मूवी जब बनाते हैं लोग समझ जाते हैं कि भाई इनकी मूवी देखनी है। ठीक है, 100 मूवी आपने अगर देखी हो तो बहुत ज़्यादा यू नो उसमें खून खराबा था, एक्शन भयंकर भरा हुआ था, हिंसा थी, एक तरह वायलेंस था उसमें, तो ये एक्चुअली वहाँ से आते हैं। इसलिए सब लोग देखना भी चाहते थे इस मूवी को, और ये टीम बिना किसी खून खराबे के एक सीधी सादी भूत वाली फिल्म जो है या हॉरर वाली फिल्म जो है वो बनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि लोग क्या हमारे वाले यू नो मूवी से डरते हैं या नहीं। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों के बीच में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बेहद बढ़ गई थी।
2: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
3: Those are not dreams, Gemma. You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one. But you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back to the human world permanently.
0: लोग इंटरनेट पे इसके अजीब से म्यूजिक और लाल चेहरे वाले डरावने शख्स को जब देखते थे तो बातें करते थे इन लोगों के बारे में, या जो ट्रेलर उन्होंने देखा है उन ट्रेलर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लग गया था। इवन वेबसाइट पर या ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में भी आप जाएंगे ना तो लोग बहस करने और बातें करने लग गए थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी ट्रेलर को देखने के बाद इतनी बातें हो रही हूं। जब इस फिल्म को पहली बार एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो वहां से इतने अच्छे रिव्यूज़ आए कि लोगों का क्रेज डबल ट्रिपल होने लग गया। हर कोई कह रहा था कि ये पिछले कुछ सालों की सबसे डरावनी मूवी होने वाली है, और ये बात काफी हद तक सच भी हो गई। इस कम बजट की इंडी फिल्म ने बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों से ज्यादा हाइप क्रिएट किया क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया और फ्रेश था। एंड नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, विच इज रेटिंग। यार हमने मूवी तो देख ली, मूवी बढ़िया आला है, जबरदस्त है, मजा आएगा देखने में, लेकिन रेटिंग का क्या, ऑडियंस क्या कहती है, क्रिटिक्स का क्या कहना है? अगर स्टार रेटिंग की दोस्तों बात करें तो इस मूवी को मैं 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगा। ये मूवी मॉडर्न हॉरर सिनेमा के लिए एक मिसाल है। ये फिल्म दिखाती है कि बिना बड़े बजट और बिना महंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी एक ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो लोगों की रातों की नींद उड़ा दे। भाई साहब, इस मूवी को देखने के बाद आपको अपने घर में रहने में डर लगेगा अकेले, तो ये जो सीन होगा ना ये कुछ वक्त तक चलेगा, लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने के बाद एक तो सीरियस इतना होना नहीं है घर पे जाके, बाकी हाँ ये जरूर है, आप डरते हैं असल में अकेले रहने में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दो तीन लोगों के साथ ही देखना इस मूवी को। फिल्म का पहला और दूसरा पार्ट इतना सॉलिड है कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पाते। हालांकि फिल्म का जो आखिरी हिस्सा है जहां कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक या झूठा लग सकता है, लेकिन फिर भी यू नो यही तो मूवी की खासियत है कि कितना रियलिस्टिक दिखा है, और वो रियलिस्टिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पूरे डर को कम नहीं करता है, जब भी आप फिल्म देखेंगे ना, पूरे सीन को देखेंगे तो आपके डर में कमी कहीं नहीं होगी। फिल्म के अंदर कई नए आइडियाज जो हैं वो यूज किए गए हैं, है ना, तो उसमें भी आपको मजा आने वाला है। बोरिंग भूत वाली फिल्म नहीं लगेगी आपको, है ना, उससे कहीं आला दर्जे की फिल्म ये बना दी है। जो हॉरर या कहें जो कैरेक्टर का डिजाइन है, उसकी डरावनी हरकतें हैं, इस फिल्म को वो परफेक्ट बनाती है। एक ऐसी मूवी है जिसे हर हॉरर फैन को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये डर का एक अलग लेवल सेट करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली रेटिंग के बारे में, हाइप के बारे में, इस मूवी का मूड क्या है उसके बारे में, अब लेकिन थोड़े और डिटेल में आते हैं, जैसे कि इस मूवी को बनाते हुए कुछ प्रोडक्शन के फन फैक्ट्स। प्रोडक्शन के दौरान इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे मजेदार और अनोखे फन फैक्ट्स जो है वो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मूवी को बहुत ही कम बजट में बनाया गया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं, हॉरर मूवी के लिए बहुत से नकली चीजें लगती हैं, बहुत से यू नो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो अपने गियर्स लेकर आते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन $1.5 million जो है इतने में ये मूवी बन गई, और अब ये तो आपको पता होगा ना कि हॉलीवुड इससे कहीं ज्यादा में बनती है भाई, 3-4 गुना से ऊपर लग जाते हैं। हॉलीवुड के हिसाब से ये बहुत छोटा अमाउंट है। बजट कम होने की वजह से पूरी मूवी की शूटिंग बहुत ही फास्ट करनी पड़ी, और पूरी फिल्म की शूटिंग सिर्फ 3 हफ्ते तकरीबन 21-22 दिनों में खत्म हो गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे, कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं, और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: Dedi.
1: What happens if I can't control this?
0: इसके अलावा डायरेक्टर जो जेम्स हैं, जानबूझकर इस फिल्म में बिल्कुल खून खराबा नहीं दिखाना चाहते थे। वो क्रिटिक्स को प्रूव करना चाहते थे कि देखो हॉलीवुड में बगैर खून खराबे के 100 मूवी के बाद ये मूवी मैं बनाऊंगा और ये डरावनी बनाऊंगा और अच्छे से डरा कर दिखाऊंगा, और ये साबित करके उन्होंने दिखाया। तो खून खराबा इसमें ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जेम्स का विजन, यानी कि डायरेक्टर का विजन क्या था इस मूवी को बनाते हुए। डायरेक्टर जेम्स वैन का विजन इस फिल्म को लेकर बिल्कुल साफ और अलग था। वो पुरानी हॉन्टेड हाउस वाली फिल्मों के रूल्स को तोड़ना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा आइडिया ये था कि इस फिल्म में घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उस घर में रहने वाले छोटे बच्चे जो है ना, वो हॉन्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर फैमिली डर कर घर बदल भी ले तो भी जो डरावनी चीज है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर है वो डरावनी चीज है, लोगों के अंदर ही है वो शख्स, वो बुराइयां। क्योंकि जो डरावनी चीजें हैं वो अंदर से आती हैं, तो घर कितना भी बदल लो कोई फायदा है ही नहीं। जेम्स वैन ने इस फिल्म के लिए यूरोप के पुराने हॉरर फिल्म मेकर से इंस्पिरेशन ली थी, जो डर को दिखाने के लिए अजीब रंगों का यूज करते हैं। उन्होंने जानबूझकर फिल्म में लाल रंग को बुराई और डेंजर का सिंबल बनाया। उनका मकसद सिर्फ ऑडियंस को अचानक से डराना धमकाना नहीं था, बल्कि वो ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसा डर बैठाना चाहते थे जो फिल्म देखने के बाद जब लोग अपने घर जाएं तो उन्हें अपने ही घर के कोने डरावने लगने लगे। वो डर को बहुत ही नेचुरल और रियल दिखाना चाहते थे ताकि लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े, एक ऐसा इम्पैक्ट जिस इम्पैक्ट से एक्चुअली में इस मूवी की हाइप बने और डायरेक्टर की भी हाइप बने। अगली बार जब इस डायरेक्टर की मूवी आएगी ना, तो आप सर्च करेंगे, आप सोचेंगे कि यार फला डायरेक्टर की मूवी मुझे लाजमी देखनी ही देखनी है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इस मूवी को शूट कहाँ किया गया, इनकी लोकेशन यानी कि फिल्मिंग लोकेशन क्या रही। फिल्मिंग लोकेशन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के आसपास की असली जगहों पर की गई है। शूटिंग बजट कम होने के वजह से कई बड़े सेट्स जो हैं वो नहीं बनाए गए। आमतौर पे ज़रूरी होता है कि जब आप हॉरर मूवी बना रहे हो तो आपको सेट बनाना पड़ता है, बल्कि असली घरों का यूज़ किया गया इस मूवी में। फिल्म रियल लगे इसलिए फिल्म का जो पहला घर है जहाँ फैमिली शुरुआत में रहती है, जहाँ उनका बेटा कोमा में चला जाता है, ये आप मूवी देखेंगे तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा, वो मिडटाउन लॉस एंजलिस के विक्टोरिया पार्क का एक नाम है, या कहें वो एक एरिया है विक्टोरिया पार्क, वहाँ पर शूट हुई। उस घर का एड्रेस भी डिटेल में सोशल मीडिया पे पब्लिक डोमेन में हाजिर है, 4350 विक्टोरिया पार्क ड्राइव, हाँ ये है। तो आपको ये सब भी देखने को मिलेगा, मतलब बाकायदा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन आप जब भी कभी आप जाएँ ना लॉस एंजलिस, तो आपको वहाँ पर ये घर दिख जाएगा, ये 4350 विक्टोरिया पार्क ड्राइव, नोट कर लो भाई। जब फैमिली उस घर के डरावनी चीज़ों से, भूत से, हॉरर जो एलिमेंट है वहाँ पर, जब उससे डर कर दूसरे घर में शिफ्ट होती है, तो वो दूसरा घर भी लॉस एंजलिस के ही एरिया में था, और वहाँ का इलाका है साउथ पॉइंट व्यू स्ट्रीट, वहाँ पर वो घर मौजूद था। तो असली घर है, इन असली घरों के अंदर की तंग गलियां, पुराने कमरे फिल्म में डर का माहौल और जबरदस्त बना देते हैं, लाजवाब बना देते हैं। असली लोकेशन पर शूट करने से एक्टर को भी लग रहा था कि वो किसी रियल हॉन्टेड हाउस में है, जिससे ना एक्टिंग और ज्यादा नेचुरल आती है और ज्यादा क्लियर हो जाती है एक्टिंग। तो एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हॉरर मूवी में ये होता ही है कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक होनी चाहिए। एक लौता ऐसा जॉनर है जहां आपको एक्टिंग तो करनी है लेकिन अपने आप को चेंज भी बहुत करना होता है। इस मूवी में एक्टर्स को कोई लेकिन बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा था। एक्टर्स को अपने चेहरे पर रॉ पैनिक और असली डर दिखाना था। पैट्रिक विल्सन जो जॉश का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर शुरू में बिल्कुल नॉर्मल और इन सब बातों पर भरोसा ना करने वाला होता है, अरे हॉरर वगैरह कुछ नहीं होता, ये उनका मानना था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे वो एक थके हुए और डरे हुए बाप में बदल जाते हैं, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सबसे बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो जोसेफ बिशारा का था, जिन्हें हर रोज घंटों तक चेयर पर बैठना पड़ता था ताकि उनके चेहरे पर वो लाल और काला रंग लगाया जा सके, लंबे नाखून लगाए जा सके और उनके एक खून खराबा पसंद करने वाले इंसान या कैरेक्टर का लुक दिया जा सके। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि उन्हें खुद देखकर सेट पर लोग सच में डर जाया करते थे। तो ये तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो गई, लेकिन अब दिल और दिमाग के बारे में बात करते हैं, या कहें आंख और कान के बारे में, सिनेमाटोग्राफी और साउंड। सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, और किसी भी हॉरर की ताकत ऑब्वियसली सिनेमाटोग्राफी और साउंड ही होती है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर्स ने कैमरा को बहुत धीरे धीरे घुमाया है, जिससे ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कोई छुपकर घर के कोनों से सब देख रहा है। कैमरा अक्सर अंधेरे कमरों और खाली रास्तों पर रुकता है ताकि आपका ध्यान वहां जाए और आप डरें, अगल बगल देखने की कोशिश करें। जब कुछ ना दिखे और एकदम से जब रोशनी में कोई सामने आए ना, तो डर सच में बनता है। साउंड डिजाइन के बारे में तो जितना बोला जाए वो कम है दोस्तों, वो भी बड़ा लाजवाब है। इस फिल्म का जो म्यूजिक स्टैंडर्ड है ना, वो आम फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है, है ना। इसमें वायलेंस की ऐसी तेज और अजीब आवाजें यूज की गई हैं जो आपके कानों में चुभती हैं, आपको परेशान करती हैं, डर बढ़ाती है, आपके दिल की धड़कन को तेज करती है। बैकग्राउंड में एक पुरानी घड़ी के चलने की आवाज, ये हमेशा आती रहती है उसमें, जो टेंशन को बनाती है। ऑब्वियसली ये बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है जो डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, साउंड डिजाइनर, ये सब सारी चीजें ना सोचते हैं वो रेगुलर बेसिस पे। जब भी कोई कैरेक्टर सामने आता है, डरावना कैरेक्टर सामने आता है, तो अचानक से बहुत तेज और डरावना म्यूजिक बजता है जो आपको अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म का साउंड ही इसको आधी से ज्यादा डरावनी फिल्म बनाता है, और मुझे तो ये मूवी लाजवाब ही लगी। अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी का स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है। स्टोरी की बात करें तो ये एक छोटी स्पॉइलर फ्री सीन जो है मैं वो बताने वाला हूं। स्टोरी की बात करें तो एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री कहानी जो है मैं वो बता देता हूं। जॉश और रेनाई ये अपने बच्चों के साथ एक नए खूबसूरत घर में आते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उनका बड़ा बेटा डेल्टन, जिसका नाम है, वो छत के अंदर वाले कमरे में जाता है और वहां एक अजीब हादसे के बाद बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं पेरेंट्स, डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और वो एक मिस्टीरियस कोमा में चला जाता है। इसके बाद घर में अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं और कैरेक्टर दिखने लगते हैं। रेनाई डर जाती है और फैमिली घर बदल लेती है। सिंपल, यहां खेल शुरू होता है। जब वो नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वापस से वही सब रिपीट होने लगता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम घर में तो थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम जो है वो उनके बेटे में है। उनका बेटा सोते वक्त बहुत अजीब चीजें कर सकता था अपनी बॉडी से, वो भी यूनिक था इस मूवी में, और उसकी बॉडी के साथ जो होता है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक अलग दुनिया में चली जाती है। ये इस पे हम और डिटेल में नहीं आएंगे, वरना फिर वही है, डर जाएंगे। आप कह रहे अभी से बता दिया तो फिर मूवी देखूं ना देखूं। उसके अलावा इसी मूवी में हॉरर कैरेक्टर ऑलरेडी मौजूद है जो कि उसी के बॉडी में शामिल होना चाहती है। जॉश अब अपने बेटे को बचाना चाहता है और उसे डरावनी दुनिया से बाहर ले जाना चाहता है। तो ये खेल है, अब इसी खेल के अराउंड सारी मूवी चलती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता, ऑब्वियस सी बात है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन तो सही था, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी थी। परफॉर्मेंसेस के मामले में सभी एक्टर्स ने बहुत ही लाजवाब कमाल का काम किया है। पैट्रिक विल्सन और रोज ने पति पत्नी का रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि उनका डर और दुख बिल्कुल असली लगता है। जब उनका बच्चा बीमार होता है और घर में कैरेक्टर आते हैं तो उनके चेहरे की थकान और परेशानी देखकर ऑडियंस को उनसे हमदर्दी हो जाती है। पहला पड़ाव यहाँ तो पार हो गया इस मूवी का। फिर पर इस फिल्म में, या कहें इस फिल्म की सबसे बड़ी जो जान है वो है लिन शे, जिन्होंने एलिसे नाम की साइकिक मीडियम, यानी कि जो हॉरर कैरेक्टर है ना घर में, उसको भगाने वाले का रोल प्ले किया गया है। तो उनका कैरेक्टर बहुत ही अजीब पर साथ ही साथ बहुत प्यारा और हिम्मत वाला भी है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर उनका डराने का तरीका भी अलग है। छोटे बच्चे सिमकिंस ने भी डेल्टन के रूप में अच्छा काम किया है, जो पूरी फिल्म में लगभग सोया रहता है, पर उसकी मासूमियत डर को और बढ़ा देती है। जब मासूम लोग ज्यादा डरते हैं ना तब तो फिल्म जबरदस्त और लगने लगती है ना, तो फिर लगता है कि अरे यार इस मासूम के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो अपने को और ज्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे को ऐड किया है ना इस फिल्म में डायरेक्टर ने, बहुत स्मार्टली किया है। बाकी सभी की एक्टिंग इस मूवी में लाजवाब है और रियल लगती है। उसके अलावा क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी को लेकर, उस पर भी जरा नजर डाल देते हैं। क्रिटिक्स ने इस मूवी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं और ये रॉटन टोमेटोज बहुत ज्यादा लोगों को पता भी है, वहां पर 67% स्कोर किया है। ज्यादातर बड़े क्रिटिक्स ने जेम्स वैन की तारीफ की, उन्होंने पुराने तरीके से सस्पेंस बनाकर लोगों को डराया है। क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म का पहला आधा हिस्सा इतना डरावना है कि आप सांस नहीं ले पाते, आपको सच में जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग है ना उनको डर लगेगा। उन्होंने साउंड डिजाइन और एक्टर्स की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। कुछ मेन स्ट्रीम क्रिटिक्स को फिल्म का आखिरी हिस्सा थोड़ा कम पसंद आया। उनका मानना था कि कई बार जब फिल्म एक दुनिया से दूसरी दुनिया चली जाती है तो वो थोड़ी सी अजीब और कम डरावनी लगने लगती है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। लेकिन इस छोटी सी शिकायत के बावजूद सभी क्रिटिक्स इस बात पर सहमत थे कि इंसीडियस ने हॉरर जॉनर को एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने इसे एक मास्टर क्लास बताया जो दिखाती है कि बिना फिजूल के या खून खराबे के बड़े बजट के भी एक परफेक्ट बेहतरीन डरावनी मूवी बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद हमने क्रिटिक्स के बारे में भी बात करी कि क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी में। एक दो एलिमेंट अगर छोड़ दिया जाए या स्क्रिप्टिंग में छोड़ दिया जाए, और ऑब्वियसली यार हॉरर मूवी में कुछ तो नया करना ही पड़ेगा, उस नई चीज को लेकर आए क्रिटिक्स ने, उनका काम ही यही है कि क्रिटिसाइज करना है, तो उन्होंने अपनी तरह से क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब फाइनली बात क्या है, इस मूवी को देखना है नहीं देखना है, वर्डिक्ट क्या है। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। वर्डिक्ट देखिए, इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, सस्ते तरीकों से नहीं डराती है और डायरेक्टर ने बहुत आला दर्जे का काम किया। बिना खून खराबे के दिखाया, सिर्फ एक खाली घर, अजीब आवाजें और डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक से ऐसा माहौल बनाया है कि आपको पूरी फिल्म में डर लगेगा। मूवी का अल्टीमेट वर्डिक्ट यही है कि इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, सबसे बेहतरीन और डरावनी फिल्मों में से एक है। कहानी भी है, बाकी जो हॉरर वाली फिल्में होती हैं वो हमेशा घर हॉन्टेड होता है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है, पर इस फिल्म का नया ट्विस्ट यही था कि इसमें घर में नहीं बल्कि एक छोटा जो बच्चा है वो ही उसी में प्रॉब्लम है। उसके अलावा कम बजट बड़ा कमाल, कमजोर क्लाइमेक्स जरूर था, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है ऑडियंस को फिल्म का आखिरी हिस्सा थोड़ा कम डरावना और नाटक जैसा लगा, जहां हीरो अलग दुनिया में चला जाता है, लेकिन ये छोटी सी कमी फिल्म की शुरुआत से भयानक डर को कम नहीं करती है, लाजवाब रखती है। फाइनल टेक तो यही है, ये फिल्म हॉरर जॉनर के लिए एक मास्टरपीस है। इसका डराने का तरीका थोड़ा अलग है, वायलिन की आवाज आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहेगी। अगर आप ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो आपको सच में डरा सके तो ये मूवी आपके लिए है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। ये फिल्म के बारे में हमने बात करी और रिव्यू ऑफ द वीक में अब हम अगले हफ्ते से थर्सडे को मिलेंगे, मूवी का रिव्यू जो है थर्सडे को होगा। लेकिन इन सब के बीच के टाइमिंग चेंज हो गई, थर्सडे को मिलेंगे है ना, फ्राइडे को नहीं आएंगे, ट्यूसडे को क्या होगा, इन सब के बीच आदमी सेम रहेगा, फजील इधर ही रहेंगे, रिव्यू ऑफ द वीक आपको यहां पर मिलता रहेगा, एफएम 107 पे मिलता रहेगा। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आप जिनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Hello and welcome to the show called Qatar Business 360. I'm your host, your dost, Nazia. Well, दोस्तों आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में हम एक बहुत ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। वैसे कहा जाए तो आप जो हैं वो गल्फ लाइट इलेक्ट्रिकल कंपनी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें एक बागी की हैसियत से जानते हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त के कलाम से भी नवाजा जाता है और मैं कहूँगी पर्टिकुलरली एक ऐसा इंसान जिसका हार्ट एकदम सोने का है, मैन विद अ गोल्डन हार्ट, एक बहुत ही कमाल के सोशल worker, philanthropist, businessman. We are glad and absolute privilege for us to be into the office of Gulf Light Electrical Engineering and an honor to connect with the MD of Gulf Light Electrical Engineering, Mr. Sanaullah Abdul Rahman. We would love to welcome you on this episode of Qatar Business 360 and of course on FM 107. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaise hain?
4: Alaikum assalam wa rahmatullah. I'm very fine. Allah ka karam hai. And thanks for this opportunity for interview. And I'm really happy to see you, Intikhab Sahab, yourself.
3: Sir, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। हम जानते हैं कि आप बहुत मसरूफ हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट आपने हमें वक्त दिया, ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस। जैसे मैंने शुरुआत की कि आप खुद अपने आप को नवाजते हैं कि मैं बागी रहा, मेरी जिंदगी की शुरुआत जो है वो उस नोट पे हुई जहां मैं खुद भी नहीं करना चाहता था। तो हम सभी को, आई थिंक मेरी ऑडियंस को, सबको एक दिलचस्पी है खास आपकी ज़ाती जिंदगी को जानना चाहेंगे हम। तो अपनी ज़ाती जिंदगी के बारे में बताइए, अपनी चाइल्डहुड डेज के बारे में बताइए, और क्या हमेशा से आपने सोचा था कि आप जो है वो बिजनेसमैन ही बनेंगे?
4: Well, I born in average family, hand to mouth, but very royal. As my parents, my grandparents, and uncle, aunties, all very fine people, religious, moderate religious, and not fanatic at all. So I was very happy in my family. They pampered me because I was the only son. And uska result ye ho gaya ki main bigad gaya. पैम्पर्ड बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। सो बट जो एक चीज मुझे जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरे अंदर थी, जो मेरी वालदा कहा करती थी कि यू आर वेरी वेरी वेरी इंटेलिजेंट और पढ़ाई पे ध्यान दो, शरारते और इस किस्म के चीज़ों से दूर रहो। सो आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी रही और इम्पेशेंस ही बहुत रही। सबसे गंदी आदत रही मेरी, जो बहुत ही सेंसिटिव रहा मैं, तो इनजस्टिस मुझे अच्छा नहीं लगता था सिंस आई वाज लाइक 9-10 इयर्स उस जमाने से। या तो वो आया तो स्कूल में ही, जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। तो आई यूज्ड टू सी दैट आवर टीचर वाज not justifying with children, with students. He was favoring to big rich people, rich children.

0: सो इस तरह के जो चीज थी तो अचीवमेंट के लिए बहुत जरूरी था. सो बॉम्बे में मैंने 2 साल डिप्लोमा का रिवाइंडिंग एंड कंट्रोल्स का किया हुआ है. ओके. और रात दिन में काम करता था. यहाँ पे आके शुरुआत की और मेरे ड्रीम था कि आई विल स्टार्ट माय ओन वर्कशॉप.
1: जी.
0: तो बाद में उसके बाद लॉक लग गया. मेरे चाचा यहाँ पे थे, सगे चाचा, जिसको बड़ा किया था मेरे अब्बा हजूर ने. वो छोटे थे उनसे. माय आंटी वाज कजिन एंड ही वाज माय चाचा. माय मदर टोल्ड ये बिगड़ा बच्चा है, इसको लेके जाओ और कुछ सिखा लो. तो ब्रिटिश एम्बेसी वगैरह से मैंने शॉर्ट टर्म वो किए हुए कोर्सेस, इंजीनियरिंग पार्शियली होती थी. तो उसमें 7-8 साल निकल गए मेरे. बट आई लर्न लॉट. I started working with Al Nasser, Midmac, BICC. Okay. Then part time मैंने contract लेना शुरू कर दिया electromechanical. But proper business 98 में शुरू किया हमने. ठीक है. उसके बाद 2000 में बेटियां आ गई. सीमा, सीमा is like my right hand. She's very professional. और बॉम्बे से पढ़ के आई थी. Because as everybody knows that my wife was with children with my parents, they were sick. तो बड़ी कुर्बानी दी थी मुझसे ज़्यादा उन्होंने दिए. और बच्चों को पढ़ाया और वहाँ पे हायर एजुकेशन पूरा करके फिर मास्टर्स वगैरह यहाँ पे करा दिए मैंने. उन लोगों को काम सीख गए. सो दिस इज व्हाट दिस इज इन द शॉर्ट. उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा नहीं हम लोगों ने, क्योंकि सीमा मुझसे भी ज़्यादा तेज तरार है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है. हूँ मास्टर्स की है. स्पेशलाइजेशन के लिए हमने फिर उसको जर्मन भेज दिया. इटली गई. शी ट्रैवल लॉट टू बिकम ए प्रोफेशनल. यहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, उनके नीचे काम किए. सीमा और सबिया दोनों ने काम किया. लाइन चेंज कर दिया ना उनकी, स्पेशलिस्ट में बना दिया लाइटिंग में उनको. बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए हमने, ह्यूज. सो MEP है हम लोगों की एंड ट्रेडिंग है, पावर ट्रेडिंग, लाइटिंग ट्रेडिंग, देन वर्कशॉप इंजीनियरिंग. जो ये बता रहा हूँ ये असली मेरा काम है. इससे लेकिन हमारी इतनी मोटी पोर्टफोलियो, यू कैन गो इन आवर वेबसाइट, यू कैन सी वी एक्सपैंडेड. यू गॉट मोर देन 40 एजेंसीज एंड वी वर्क विथ लॉट ऑफ प्लेसेस, मिनिस्ट्रीज, कारमा, अजकाल, कतर पेट्रोलियम, कतर फाउंडेशन एंड lot of projects we did here. More than 400 projects we did.
1: Sir, jab aap Qatar aaye honge, us waqt ka market was comparatively less competitive. Abhi exactly. Toh, yeah, it is more competitive.
0: There was nothing.
1: Yeah.
0: Very, very small. I think total population was 400,000. 200,000 Qataris, 200,000 expat. And everything was very, very cheap.
1: That time?
0: Yeah. Very cheap. आपके आपके जेब में 500 रियाल है तो बहुत हो गया आपको. 200 रियाल में आपका हो गया था. यानी ठीक है, उस जमाने में हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती थी. यू नो लाइफस्टाइल तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए थी और बचत करने के लिए.
1: सर, जब आपने गल्फ लाइट को एस्टैब्लिश किया, व्हाट वाज योर विजन बिहाइंड एट दैट टाइम?
0: ऑफ कोर्स मनी.
1: I'm sure.
0: End of the day, आप किस लिए काम कर रहे हो? कि बेटर रिस्पेक्ट मिले आपको और जो आपकी मर्जी का काम है वो आप करें. तो सैलरी मुझे मिडमैक में बहुत अच्छी मिलती थी. I was earning 12,000 in 1980.
1: That time?
0: Yeah.
1: Nice.
0: More than engineer. And I learned a lot from Lebanese community. Hard work and knowledge. Hard work, knowledge. Till today, I'm learning. Learning process is not dying till death.
1: So that's how
0: time will change now. There is no more conventional business. You know, a lot of technologies are improvising and expanding, and everything has changed in terms of technology and manpower, their brain, their smartness, their professionalism. It's unbelievable. I got a lot of boys, you know. In Saudi, in Qatar, in Abu Dhabi, and they are far, far smart and far ahead.

0: So the professionals, they are not hesitating for this. Why? They are professionals. Okay, human error can be occurred.
1: Yeah, there are possibilities too.
0: But 2%, 3% maybe. So they are all the time on the toe that, okay, we should not do this mistake. Punishment is there. Legal. Legal is there. So and if there are some errors.
1: Yeah.
0: Okay, but not big one.
1: That means you have mistakes ko to chala lenge, but there shouldn't be blunders.
0: Yeah.
1: Blunders nahi honge.
0: Yeah, we should. I mean, if we are sober and soft and kind for those lazy and unprofessionals, you're asking bankruptcy. Very simple. Correct?
1: But I think they get inspiration from you. Jab boss is always okay. On time.
0: No, I'm tough. I'm tough. Believe me. When I sit on here, if I'm here on this seat, I'm a different person.
1: Mm-hmm.
0: When I'm with friends or in my home,
1: You're a
0: lovely, kind and jolly person all the time.
1: But you own a beautiful heart that we all know.
0: No, of course.
1: This community.
0: I'm proud of that. I'm thankful to God.
1: Mashallah.
0: This is in jinns.
1: Mashallah.
0: Sometimes people, they are bad, they are doing bad thing and they are happy.
1: Mm-hmm.
0: If I do bad thing, I feel guilt.
1: Yeah.
0: If I'm cruel or I'm doing some brutality, I can't sleep. I feel I did the wrong thing. I will say sorry. Sorry to the person. By mistake, suppose I hurt somebody. So I will never allow myself to sleep nicely. Second day I will call, I will say sorry. My apology. It is my mistake. Sometimes your tongue is a little bit, you know, uncontrolled. So...
1: But then people know that you are good and ultimately...
0: We've proven that. I think the life, if I talk about life, we know that. We are in Urdu, Ashraful Makhlukat, the superior creation of God.
1: Yes.
0: So He has given us unbelievable qualities. Unbelievable. You can't buy one part in multi-trillion dollar. Brain, 12 billion cells.
1: Yes.
0: Eyes, nose, tongue.
1: Yes.
0: Everything. Hands, feet. Your organs, you eat, you enjoy.
1: True.
0: You drink, you enjoy. You meet your parents, you love them, they love you. It's unbelievable. If you the life, if you think about our life, Ashraful Makhlukat, inshallah you don't have $1 million, 1 million rupees even. Okay? If you are healthy, you are more than trillionaire.
1: बिल्कुल सही, बहुत सही सर, जैसे हम यहाँ देखते हैं कतर का एक तो मार्केट ऐसा है कि बहुत डाइवर्स नेशनलिटी है, प्लस अगर कतरी कल्चर को ध्यान में रखा जाए तो आपके बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि लोकल कम्युनिटी या लोकल कल्चर ट्रेडिशंस को भी ध्यान में रखें. वन सेकेंडली, आपके जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है, सो व्हाट मेक्स योर कंपनी स्टैंड आउट इन दिस
0: फील्ड? Competition is not easy, okay? After World Cup, especially in Doha, the market is slowed down. This couple of years to 3 years, you can say. But whoever is having good customers, good clients, okay? So we sustain. Little bit graph came down, but hard work gives you back. You must be sleepless. Okay, then our dream, dekhna hai. तो जागते हुए देखे और आपकी बेचैनी आपको अलाउ नहीं करेगी. तो ग्राफ कम से कम ऐसे नहीं जा रहा है, तो कम से कम फॉर्म तो रहे. तो आपको 10 जॉब 10 प्रोजेक्ट की जगह 20 25 प्रोजेक्ट 30 प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा. तो वो कंपाइल करके आपको प्रॉफिट जो मार्जिन है कम होती है, तो सेम वो मेंटेन हो जाएगा जो पहला है, जो ग्राफ जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्राफ है उस पर आप मेंटेन कर सकते हो. तो आपको 3 times ज्यादा स्ट्रगल करना है.
1: 3 times
0: 3 times In these days, especially.
1: Especially 3 years
0: after the World Cup.
1: True. Back to back, कुछ ऐसे हालात भी बनते चले गए कि it has become a challenge.
0: Lot of companies closed down, और कुछ बहुत सारे companies हैं जो बराबर अच्छा काम कर रहे हैं, and people are surviving nicely. Depend है आपके ऊपर, या आप हार के आप बैठ जाओ घर पे, क्या अभी तो नहीं होगा यार, छोड़ दो. So you are finished. एक वही कह रहा हूँ कि जो बेचैनी होती है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ बागी होना चाहिए यार आदमी ने. आपके अंदर वो बेचैनी होना चाहिए यार, वो आई शुड मैं डिफीट ले लूँ और बैठ जाऊँ घर पे. वो तो डिपेंड है ना, हर आदमी जो भी बैठा है जहाँ भी बैठा है वो उस काबिल का होता है. मैं बड़े लोगों के नाम नहीं लूंगा अभी, मगर बड़े बिजनेसमैन बने हुए जो मल्टी बिलियनर्स, सैकड़ों बिलियन के ट्रिलियनर्स बने बैठे हैं अमेरिकन, आप उनकी मिसाल लो तो आप सोच नहीं सकते हैं. कॉलेज ड्रॉप है, हाई स्कूल ड्रॉप लोग हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, औकात नहीं अपनी. तो डे एंड नाइट वो लोग काम करते हैं. दे हायर लॉट ऑफ साइंटिस्ट, एजुकेटेड इंजीनियर्स, व्हाटएवर, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जिस लाइन में भी जो है, दे आर कलेक्टिंग द बेस्ट ब्रेन एंड दे एक्सपैंड देमसेल्फ. वो अलग, तो वो कम से कम उनसे इंस्पायर तो होना चाहिए, कि लोग जो बसे अभी तक बचे हुए हैं, हाउ दे सर्वाइव, दे एक्सपैंड. सो इन जनरल उनकी क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या होती है, उनकी फिटनेस कैसी होती है, नॉलेजेबल और कलेक्शन ऑफ पीपल, व्हाट दे सराउंडेड बाय, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट.
1: कहते ना सर, अ पर्सन इज नोन बाय इट्स कंपनी, द कंपनी ही कीप्स. तो कैसे आपके साथ लोग रहते हैं?
0: मेरे ड्रीम बड़े नहीं थे, मेरे बड़े लोग बहुत दोहा में बहुत थे, जिनको हार्ट अटैक आ गया, कोई को क्या हो, फालिज हो गया, कोई को क्या हो गया. सो वेरी सिंपल, एक ही चीज जो दिमाग में चलती है मेरे, आई लव, एक मैं म्यूजिकल आदमी हूँ, शायरी पसंद है, बट बोल नहीं सकता मैं. शायरी अच्छी होती है, एक दो अशार में बहुत कुछ शायर बोल जाता है, और जिंदगी के बारे में एक ही चीज सीखा मैंने बहुत सारे लोगों से, कि जो मेरी साइज क्या ब्रेन और मेरी बॉडी कितना लोड ले सकती है, मुझे उतना ही करके जिंदा रह के एंजॉय करना है लाइफ को. बिलीव मी, आई कैन मेक 10 टाइम बिगर साइज ऑफ दिस कंपनी, बट उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा. फॉर व्हाट?
1: आई थिंक यू एंजॉय डूइंग दिस, बिजनेस इज योर पैशन.
0: आई गॉट, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, आई वेयर आई वाज एंड हाउ अल्लाह हेल्प मी. वो जुमन तशा तो जुलुमन तशा, तो उसमें मेरी माँ का बड़ा हाथ रहा है, यानी चाबुक से मार के उसने सुधार दिन मिले जिंदगी में.
1: मुझे लगता है सर आपकी जिंदगी में आपकी उस टीचर का भी रोल बहुत अहम रहा, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जमीर को झंझोर दिया, एंड यू वर लाइक लाइंग ऑन द बेड फॉर 15 डेज.
0: टीचर का वो एक सरकमस्टेंसेस थे, बिकॉज़ ही वाज बैड इन माय ओपिनियन, ही वाज अ ब्रूटल एंड बहुत ही इनजस्टिस था उसके अंदर. इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाउ वी टेक, कि आपने मुझ पे जुल्म किया, आपको मारपीट कर रही है, मुझे क्या मिलेगा, जेल में जाके बैठ जाऊंगा. मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि व्हाई पीपल आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, व्हाट इज लैकिंग. वो लैकिंग ढूंढ के निकाल के उसके ऊपर काम करना चाहिए. करेक्ट, सबों के साथ ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट नेसेसरी कि काफी लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं मेरे. आई विल नॉट से कि उन लोगों ने अचीवमेंट नहीं किया, दे लव दैट लाइफ. बोले भाई सैलरी आ रही है, आई एम रिलैक्स, बीवी बच्चे हैं और एंजॉय करो. मुझे वो पसंद नहीं ज्यादा कि रिलैक्स बैठ जाऊं मैं, बिकॉज मुझे पता है कि
1: मुझे काम करना है.
0: पैसे की वैल्यू क्या होती है, कि मेरे जनरेशन को भी वही सिखाता हूँ मैं, डोंट बिकम आराम पसंद नहीं बनाओ.
1: शायद ये एक फंडा भी है कामयाबी का.
0: तो आराम पसंद क्या करोगे आप? एक्सरसाइज आज भी करता हूँ मैं, स्विमिंग घर में करता हूँ, घर में ये मेरे जिम भी घर में है, मेरे वाइफ भी, मैं भी. और जो कहा मैंने कि जो गिफ्ट है अल्लाह का सबसे बड़ा, वो है जिंदगी अपनी. अगर हम लोग ना शुक्र और गैर जिम्मेदार होंगे, अगर हम अपनी जिंदगी को खुद ही खराब कर लो, कि इतना खा रहे हैं, ऑयल खा रहे, मीट खा रहे, पता नहीं जो

0: जो नुकसानदार चीजें हैं. सो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन और दुआ. ही विल से गेट लॉस्ट. आपको अकल सलीम दिया था मैंने और उसके लिए किताब दी थी मैंने. अपने किताब में लिखा है 33% खाएं, 33% पानी, 33% खाली रखें. आप आपको बीमारी बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. तो देर आर मेनी थिंग्स और दीन इज टीचिंग अस. ओके, और आप पढ़े लिखे आज तो आज की दुनिया में क्या नहीं है. आपको एक क्लिक करो आपको हर चीज का सोल्यूशन है. सो वो खुद के हाथ में है. वेरी सिंपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिजास्टर ओके और प्रॉस्पेरिटी और एंड एंड एंड योर सक्सेस. योर सेल्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल. अल्लाह हैज गिवन यू ब्रेन एंड यू कैन लर्न थ्रू दोज पीपल हु आर सक्सेस, योर फ्रेंड्स, योर सर्कल इन आवर कंट्री हियर अराउंड द वर्ल्ड. देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल, दे आर द एग्जांपल्स. So this life is very easy. We make it easy or we make complicated.
1: True.
0: This is what I learn, and we can't blame anybody for the disaster. We are responsible.
1: We are.
0: This is what many time I did mistake and I've been punished. I lost lot of money in terms of business, mm-hmm. and that was errors. Okay, and we believe in straightforward business and in market. The best customers, they love us. They are best and very, very strong companies. Belongs to semi-government, government, and private as well. Because we don't play. As I told you, I'm like a military man. I punish people if they do little bit mistakes or some stupidity. And somebody call me, they are all my friends, clients, consultants, and say, so what happened? Why you did this? Your people are not professionals. Same day I sack people. I can't, you can't tolerate this type of nonsense. And you'll put yourself in the trouble. Business is like a naked sword on your head, 24 hours. When you are not mistaking, you are scared, you enjoy life. Mistakes will punish you like a hell.
1: That's a big lesson, I think, to all my viewers who also are keen in, you know, exploring their selves into business. As you mentioned, it's not easy. There's no gunjaish of one mistake.
0: You must be conscious about yourself, precaution mein rakhein, or monitoring and control your people, monitoring the market. And there are many factors, you know, not easy. A lot of people, they think business is easy.
1: No.
0: It is not easy.
1: Really?
0: Like, oh, moti chamri chahiye uske liye. Okay, kuch bhi ho gaya. My wife all the time bole, yaar, tum humare rishtedar hai na, yaan pe bole, aisa kuch nuksan ugara ho gaya, itna pada. Tum relax baithe ho, yaar. Allah create karta har aadmi ko. Us kaam ke liye, wahi kaam usko mil jata hai. जो चिकन हार्टेड आदमी होते हैं वो मर जाते हैं बेचारे. आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते. दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू नो. आप रेडियो पे बैठ गए, आपको आता है, यू नो, यू आर कैपेबल टू डू दैट. हो सकता है आपकी बहन या भाई होंगे, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है. वो इंजीनियर से या कुछ और है, या डॉक्टर, जो भी है. हर एक आदमी को अल्लाह ने नवाजा होता है कि भाई एक्स वाई जेड इस डेजिग्नेशन के लिए फिट है. मार खाते खाते ऊपर आ जाता है. इजी किसी को कुछ नहीं,
1: किसी को नहीं. और सबसे टफ और चैलेंजिंग बात सर ये है कि हम लोग अपनी एबिलिटीज पहचान ही नहीं पाते. लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग, दे डोंट नो कि हमारे अंदर क्या खूबी है. दे एंड अप डूइंग दिस, देन दे स्टार्ट दिस, देन दे वांट टू डू दिस.
0: जो चीज व्हाट आई, क्योंकि हमने बहुत रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू किए,
1: यस,
0: तो उसमें 1.3 मिलियन नुकसान हो गया रियाल. तो जो मेरा काम ही नहीं है, okay? छोटी बातें कर रहा हूँ. और भी कुछ स्टार्ट किए थे हमने, जो गुजराती में कुछ ऐसी डायलॉग है, जाने का हम तो जाने बीजा करे सो गोता खाए. इसका मतलब है जिसका काम जो है उसी को स्ट्रांगली एक्सपैंड करते जाए. यू मस्ट बी स्किल्ड, यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग. अदरवाइज पीपल विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, दे विल चीट यू, ओके. और आप साइन करते रहोगे चेक्स, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है. यू विल नेवर नो, विद इन कपल ऑफ इयर्स यू विल गेट बैंकरप्ट. बहुत सारे लोग हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेता.

0: था ज्यादा, क्योंकि आई लव टू लिव लाइफ. इंसान वाली जिंदगी चाहिए मुझे, मशीन वाली लाइफ में बना सकता था, बट मैं बहुत सीखता हूँ लोगों से. अब देखता हूँ अंजाम क्या क्या हो गया लोगों के, तो जो जो टिक गए, जो बड़े बड़े बन गए, वो टिक गए, उस उतनी स्ट्रेंथ उनकी बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर है.
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड शेयरिंग अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स विद अस. वी कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और इतनी मोटिवेशनल बात, इतनी प्रैक्टिकल बात हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की. जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू.
0: आई होप दे लाइक इट. कभी कभी मैं थोड़ा सा, थोड़ी सी हर्ष लैंग्वेज हो जाती है, सॉफ्ट लैंग्वेज मुझे आती नहीं है.
1: सर आप दिल से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, बनाव के बनावट से नहीं.
0: जो सच है वो बोलता हूँ मैं, कभी कभी सच, जो ट्रूथ इज बिटर समटाइम, एंड आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी है और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी लगी है. आई लव एवरी ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ, एवरी ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ आई लव. आई वुड लाइक टू सी द प्रॉस्पेरिटी ऑन द अर्थ. That's all. Every human being should enjoy life.
1: Inshallah.
0: And they do the best of the best out of themselves. Jio aur jine do.
1: Wow. Jio aur jine do. Thank you once again. Isi ke saath, dosto, waqt hai aapse ijazat lene ka is waade ke saath. Inshallah, aapki hamari mulaqat next episode mein ek naye guest ke saath hogi. Well, tab tak ke liye apna bahut zyada khayal rakhiye. Khush rahiye and sunte rahiye FM 107. Dil se desi.
2: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में।

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
1: मेरे लिए ट्रम्पेट बजने चाहिए इस शो में, तो भाई त्रिकधात नहीं, त्रिकधा तो ट्रम्पेट नहीं हुआ। एनीवे, यू गेट द आइडिया राइट। थोड़ा सा वेलकम शेलकम होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये शो है और बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग ऑक्टिव एनर्जी निकलती है भारी भारी शब्दों के साथ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। देखो जी, टॉप 10 का मसला इतना है कि आपके बिना ये शो मुमकिन नहीं है। और आपके पास जो है हमारी इंटरनल जनता भी आती है, जो हमारे ऑफिस में डिस्कशन होता है, लिटरली ऐसा होता है कि पता नहीं कोई सा बिल पास करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल वैसी बातें होती हैं, कौन सा गाना क्या है, कहाँ पे आना चाहिए, और ये गाना तो मुझे लगता है फिर नंबर 1 पे आना चाहिए, फिर कोई कह देगा ना जी ना ये नंबर 1 पे को नहीं है, फिर नीचे से लिस्ट को जो हम शुरू करते हैं बताना, तो साथ साथ मेरी भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, बिकॉज आई नो कि कुछ लोगों का जो गाना फेवरेट हो सकता है वो हो सकता है कि नंबर 1 पे ना हो के नंबर 5-6 पे हो, बट इट इज ऑल अबाउट द शो। सो हो सकता है जो गाना अभी 10 से शुरू हो रहा हो वो आगे जाके नंबर 1 पे पहुंच जाए, यू नेवर नो। ये सारी की सारी लिस्ट में जितने भी गाने हैं, आज से जितने भी शोज हुए हैं, दे आर बेस्ड ऑन यूट्यूब व्यूज, स्ट्रीम लाइंस, जितने भी स्ट्रीमिंग पे चलते हैं गाने, और इसके बाद इसकी रिप्लेबिलिटी और इसके हुक का या फिर किसी पोर्शन का फेमस हो जाना, वायरल हो जाना, या फिर डांस स्टेप, बहुत सारी चीजें हैं जो एक गाने को लिस्ट में बना के रखती हैं, एंड आज की लिस्ट भी तैयार है। तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, हमसे जरूर जरूर जुड़े रहिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो हम लेडर चढ़ते हैं वैसे ही 10, 9, 8, 7 और फिर विल गो फर्दर अप टूवर्ड्स द टॉप ट्रैक ऑफ द वीक। तो शुरू करेंगे नंबर 10 से। नंबर 10 पे है बूहे बारियां। ये गाना भाई, ये गाना ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गाना ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। आदित्य रिखारी जो साहब हैं, उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो एकदम से हिट हो के एकदम से नंबर 1 हो जाए, मगर इवेंचुअली ये गाना ऊपर जाता है और वायरल जरूर होता है। रोजा कोहली के साथ इस बार उन्होंने काम किया है, रोशनी वाले भी हैं उनके साथ में। गाना जो है बूहे बारियां, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक। द सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी लाइन, और स्टोरी लाइन के साथ साथ जो वीडियो है वो बेहद खूबसूरत है। जो बूहे बारियां है उसकी एक जो जो क्या कहते हैं उसको, हुक को कैसे समझाऊं मैं, रिप्लेबिलिटी है, मतलब आप सुनेंगे तो आपके जहन में अटक जाएगा इस गाने का हुक। ये वैसा गाना है, कुछ लाइंस है जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बोलेंगे यार ये क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है। तो लिरिकली भी विजुअली भी ये गाना एक नंबर है, और ऊपर से देते रिखारी का जो गाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है और बड़ा ही कमाल का है। उनकी वॉइस का टेक्सचर, क्योंकि मैं इस आवाज़ की दुनिया में कहीं ना कहीं अपने आप को सिटीजन मानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ पे जज करने का थोड़ा तो मुझे हक है, तो उस थोड़े से हक से मैं यही मानता हूँ कि आदित्य की जो आवाज़ है वो एक ऐसा टेक्सचर है जो अगर 10 लोग भी ट्राई करना चाहें तो कॉपी नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड आवाज़ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो गाना नंबर 10 है बूहे बारियां, आदित्य रिखारी ऑफ कोर्स विद रोचक कोहली एंड रोशनी वालिया, सुन के देखिए। ऑलराइट, अब गाना नंबर 9 की बारी है। गाना नंबर 9, ये गाना जो है अचानक से बीच में आया है, बीच में आके पूरी लिस्ट को हिला के रख दिया है। ये गाना जिस मूवी का है, जिस एक्टर का है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं एंड अब तो जग जाहिर है मैं इनका फैन हूं, इमरान हाशमी। आवारापन 2 रिलीज हुई, ये गाना रिलीज नहीं हुआ था मूवी से पहले, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, नथिंग वाज हैपनिंग, एंड देन गाना धीरे धीरे सुनने में आया, इट वाज आई थिंक इन द ट्रेलर और समथिंग, शायद ऑडियो रिलीज हुआ था, कुछ तो हुआ था, बट इट वाज राइट बिफोर द रिलीज, आई थिंक एक दिन पहले। फिर उसके बाद जब मैंने मूवी में इस गाने की पोजिशनिंग देखी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि गाना मूवी में आ कब रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हीरो हीरोइन जो है वो रोमांस कर रहे हैं अचानक से वो गाना चला और उन्हें सीधा पहाड़ों पे ले गए, क्योंकि वो बड़ा ऑड लगता है, बट द पोजिशनिंग ऑफ द ट्रैक वो बहुत परफेक्ट है। आवारापन 2 में ये गाना ऐसी जगह पे आता है जहां पे इसके लिरिक्स फिट बैठते हैं, जहां पे इसकी वाइब फिट बैठती है। इट इज नॉट आउट एंड आउट अ क्लब नंबर, लेकिन ये क्लब में बच रहा है, और ऐसा मुझे

0: अच्छा लगता है जब चीजें ऑपोजिट होती हैं और फिर भी खूबसूरत लगती है। गाना बहुत ही प्यारा है एंड इट रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। एक ब्रांड का भी ऐसा ही गाना था, इसी जॉनर का गाना था, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट बट इट फिट्स परफेक्टली। एंड जिन्होंने जो दो लोग हैं जिन्होंने डांस किया इस गाने पे ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे कि फाइनली इट्स नाइस टू सी योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। तो नए नए आर्टिस्ट को मौका मिलता है तो अच्छा लगता है एंड ये गाना एकदम बढ़िया है। गाने का नाम है मेरा पिया घर आया, ओए गा दिया, अलग गा दिया, अलग गा दिया। तो इसीलिए इसके अलग होने की वजह से और इसके वेटेज की वजह से बिकॉज इट हैज जस्ट बीन रिलीज, तो आवारापन टू से पिया घर आया इज एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट।
1: महफिल सजिया तेरे लिए हुजूर मेरा पिया घर आया।
0: अब जरा आगे बढ़ते हैं गाना नंबर 8 की तरफ। गाना नंबर 8, मैंने इसकी तारीफ पिछले हफ्ते करी थी और पिछले हफ्ते हमारी लिस्ट में शामिल हुआ था। दर्शन रावल ये वो आदमी है जिसकी अपनी दुनिया चल रही है, पैरेलली ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं बॉलीवुड वाले गवाएं कि ना गवाएं। दर्शन रावल का स्टारडम इन द सिंगिंग वर्ल्ड इज डिफरेंट, जैसे अरमान मलिक के साथ है। वो शायद आपको बॉलीवुड में ज्यादातर गाने आजकल ना गाते हुए सुनाई दें बट व्हेन ही इज डूइंग समथिंग उनका कोई भी काम कोई भी निशाना खाली नहीं जाता, वैसी दर्शन रावल के साथ भी है। बॉलीवुड ने इन्हें गुजराती गानों के लिए बहुत यूज किया है विच इज ओके, मगर दर्शन रावल व्हेन ही डज हिज ओन वर्क अपनी कंडीशन पे तो वो नजर आता है कि ये बंदा बिना किसी कंस्ट्रेन के काम कर रहा है। होता ना कि क्रिएटिव आदमी को कल्ले कल्ले छोड़ दो फिर देखो आपको कैसा मटेरियल देता है वो, तो जो कंटेंट निकल के दर्शन रावल से आता है जब वो सोलो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या कोई सोलो एल्बम या गाना निकालते हैं तो बात ही कुछ और होती है। एंड बरसात लग दी इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसमें पता लग रहा है कि हार्ट एंड सोल लगाई है दर्शन रावल ने। ट्रैक इज अमेजिंग, और जिसका भी ये वीडियो को आइडिया था ना कि जहां भी वो बैठे हैं बारिश हो रही है उसको मेरी तरफ से 2100 की सलामी। पहले मुझे लग रहा था काफी ऑड सा है, फिर मैंने लिरिक्स को सुना एंड द लिरिक्स एक्चुअली मैचेस विद द विजुअल थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो में ऐसा है कि दर्शन रावल जहां बैठे हैं वहां बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में चल रहा है वो हुक लाइन बरसात लग दी है, आए क्या भाई बहुत बढ़िया हुक बनाया, बहुत बढ़िया हुक बनाया। इज ऑल्सो वेरी गुड विद मेकिंग नाइस हुक्स जो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे अटक से जाएं। मुझे कोई वो नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा अगर ये गाना बॉलीवुड वाले ले लें बिकॉज इट कैन बी यूज्ड, मगर वही है फिर तनिष बागची इस गाने कुछ और ही बना देंगे मगर एज अ सोलो ट्रैक दर्शन रावल हैज डन एवरीथिंग टू इट और बहुत बहुत खूबसूरत गाना है एंड डेफिनेटली अपनी जगह डिजर्व करता है एट नंबर 8 पोजीशन। यू नेवर नो ऊपर भी आ सकता है बट लेट्स सी। सो ये है बरसात लग दी है दर्शन रावल की आवाज में। ऑलराइट, सो ये कुछ गाने हैं, कुछ क्या तीन ही गाने मैंने आपको बताए, 10, 9, 8 और उसके बाद हम इस लेडर पे ऊपर चढ़ेंगे। सो गाना नंबर 10 रहा बोहेबारियां आदित्य रिखारी और रोचक खोली साथ में रोशनी वालिया, नंबर 9 पे है आवारापन 2 से पिया घर आया और नंबर 8 पे है बरसात लग दी दर्शन रावल और साथ में सिमरन चौधरी। ब्यूटिफुल ट्राई एट नंबर 8, वापिस आएंगे जाना नहीं आपने, स्टैच्यू स्टे ट्यून्ड।
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. Main Doha wala Kabir, FM 107 pe, and this is Top 10 this week. Abhi 10 9 8 to ho liya bhai. Ab badhenge gana number 7 ki taraf. Gana number 7 us shakhs ka hai jinka main hamesha se fan raha hu. जिनसे मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं लगाई कि अरे कुछ अटपटा सा कर दो यार. मगर जब भी आवाज सुनते हैं इनकी तो पता लग जाता है कि हाँ ये मंझा हुआ कलाकार है. मैं बात कर रहा हूँ आतिफ असलम साहब की. आतिफ असलम अपने करियर के उस मुकाम पे हैं जहां पे वो गाना अगर दो भी डालेंगे साल भर में तो चल जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज स्टिल हमिंग वो सारे गाने जो आतिफ असलम ने दिए हैं अपने फैंस को ओवर सो मैनी ईयर्स. वो कहीं भी गाते हैं, वो कोक स्टूडियो में जाके गाते हैं, वो ऐसी गाना निकाल दें सिंगल, चलना ही चलना है. इतने अच्छे फेम के बाद भी फैंस के बारे में सोचना और एल्बम निकालना, ये दिखाता है कि आर्टिस्ट को कितनी पड़ी है, आर्टिस्ट कितना मेहनती है, आर्टिस्ट अपने काम के लिए कितना पैशनेट है. एंड दैट इज समथिंग आई रियली रियली लव्ड अबाउट इट. उन्होंने एल्बम निकाली अभी रिसेंटली, उसका गाना नंबर 7 पे मैं प्ले करने वाला हूँ. गाना है सच्चे वादे.
2: सच्चे वादे क्यों तोड़ते मोड़ते तुम जल्दी.
1: इस पूरी एल्बम में बहुत से गाने हैं और हर गाना एक अलग एक्सप्रेशन को दिखाता है. अगर आप ऊपर से नीचे तक गाने को सुनेंगे तो एक पूरी जर्नी है. कुछ गाने आपको लगेंगे थोड़े से सैड हैं मगर काफी मीनिंगफुल हैं. एक गाना ऐसा थोड़ा सा लगता है कि क्लब बैंगर भी बनाया है, जो कि बहुत अच्छी कोशिश है. एक गाना ऐसा है जहां पे आतिफ असलम आपको थोड़ा सा हिप हॉप करते हुए भी नजर आएंगे, विच इज वेरी यूनिक, पर अगर फिट होता है उनकी आवाज में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. एंड अबव ऑल एल्बम का जो कवर आर्ट है ना, वो बड़ा बड़ा मैटर करता है. कई मरतबा आर्टिस्ट जब एल्बम कवर आर्ट बनाते हैं तो उसमें वो आलस दिखा देते हैं, उन्हें सोचता है अरे क्या पड़ी है लोगों को कवर आर्ट की, लोगों को इवेंचुअली गाने ही सुनने हैं ना. पर जब आर्टिस्ट कवर आर्ट में भी मेहनत करे तो पता लगता है भाई इसने बहुत सोचा है. तो कवर आर्ट बहुत शानदार है उसमें. पहली बात तो मुझे लगता है शायद पहली मरतबा किसी आर्टिस्ट ने गानों के नाम उर्दू में लिखे हैं. पूरी एल्बम में उर्दू में लिखे हैं, इनके जो फॉन्ट है पूरा, वो जो लैंग्वेज है वो पूरी उर्दू में लिखे हैं. एक एक जो पूरी ट्रैक लिस्ट है वो उर्दू में है. आई डोंट थिंक उनसे

0: पहले किसी ने किया किया तो मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने नहीं देखा पर्सनली, तो मेरे लिए तो पहली बार था भाई, और मुझे यूनिक लगा कि यार इतना भी सोचा, ये बड़ी सिंपल और बड़ी इफेक्टिव चीज लगी मुझे जो आतिफ असलम ने करी। तो ये गाना डेफिनेटली डिजर्व दिस पोजीशन, नंबर 7 पे है गाना आतिफ असलम की आवाज में, डेफिनेटली अ वेरी वेल डिजर्विंग ट्रैक और बहुत बहुत अच्छा गाना है, तो सुन के देखिए जी, मौज करा देंगे। अब बढ़ते हैं गाना नंबर 6 की तरफ, क्रिटिकल पोजीशन। यहां से गाने या तो सरक जाते हैं या फिर पूरी तरह से लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, मगर जिस गाने की बात मैं कर रहा हूं ये मुझे नहीं लगता कि लिस्ट से इधर उधर जाने वाला है। आई रियली डोंट थिंक सो। ये गाना वो है जो अभी रहेगा, ये आते जाते वाला गाना नहीं है, ये रहेगा। इस गाने के हिट होने की जो वजह है उनमें शामिल है इसका इसका इसकी हुकलाइन, इसकी कोरियोग्राफी, लिरिक्स एंड हम एबिलिटी, कहता हूँ मैं क्या आप लगातार इसे हम कर सकते हैं। तो गाना है बन जा तू मेरी, आए चरणप्रीत भाई क्या गा दिया भाई ने, भाई आग ला दी। तो चरणप्रीत भाई का ये गाना है, साथ में बादशाह भाई ने रैप किया, रैप भी बहुत बढ़िया किया है। बन जा तू मेरी, बन जा। इस गाने ने ना सिर्फ वायरलिटी पाई है, वायरल तो हुआ ही है, मगर इसके हुक स्टेप ने, इसके डांस स्टेप्स ने लोगों के करियर बनाया भाई। दिव्या गोयल जो कोरियोग्राफर हैं, उनका करियर रॉकेट हो गया भाई। जगह जगह जगह फॉर्म कर रही हैं, लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, उनके डांस स्कूल को बहुत प्यार मिल रहा है। और साथ में जो आसी हैं, जिन्होंने जो मास्क पहन के अक्सर परफॉर्म करती हैं गानों में, उनको टूर्स मिल रहे हैं, वो इधर उधर जा रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं विद बादशाह भाई एंड चरणप्रीत। काफ़ी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की है उन्होंने इस गाने का, उन्हें काम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये गाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैकेज है। नॉट जस्ट दैट कि गाना बहुत बढ़िया, गाना तो है ही बढ़िया, मगर इसने ना सब कुछ दे दिया सारे आर्टिस्ट को। और जिसने ऑफकोर्स जो बनाया चरणप्रीत ने गाना, मुझे उनके लिए डर भी लग रहा है। कई मरतबा आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं ना, वो लगता है बाप रे इससे बढ़िया तो मैं नहीं कर सकता, ये वो वाला सीन हो गया उनके लिए। और जब आर्टिस्ट होते हैं आप और कुछ ऐसा कॉन्टेंट आप प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक तो दो चीज होती है, एक तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बन जाती है कि भाई अगला गाना इससे बढ़िया होना चाहिए, और इस प्रेशर में गलतियां भी होती हैं, मगर एक अच्छी बात भी होती है। अच्छी बात ये होती है कि जब आप कुछ बहुत ही बढ़िया कर देते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो आपके पास वक्त होता है दूसरे काम को डिलीवर करने का, क्योंकि लोग आपके पहले काम के दीवाने होते हैं। तो सब्र आ जाता है कि चलो ठीक है यार, चरण भाई ने ये गाना बहुत बढ़िया दिया, बन जा तू मेरी, अभी मैं वेट कर सकता हूं उनके अगले गाने का। एंड वेट कराना इज फाइन, बिकॉज अभी उनको अपना ही बनाया हुआ बेंचमार्क तोड़ना होगा अगर इससे बढ़िया गाना बनाना है। तो आप समझ रहे गाना कितना कितना वेट रखता है, तो इसलिए गाना अभी तक लिस्ट में शामिल है और बहुत टाइम से शामिल है। गाना बढ़ जा तो मेरी बादशाह चरणप्रीत इज एट नंबर 6 ऑन द लिस्ट। ओके, अब जरा बढ़ते हैं गाना नंबर 5 की तरफ। यहां पर मैं थोड़ा बायस्ड हूं, आई हैव द राइट कि एक गाने के लिए मैं बायस्ड हो सकूं, और मैं हूं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का गाना है ढांडा न्योली वाला। नॉट जस्ट कि वो रैप करते हैं इसलिए लोग सोचेंगे वो रैप करता ना इसलिए इसको रैप आर्टिस्ट चाहिए, नहीं, नथिंग लाइक दैट। लिरिक्स पे भी अगर आप ध्यान देंगे ना ढांडा भाई की, तो लिरिक्स इतने पावरफुल हैं, इतने मैजिकली वो लिखते हैं यार, लगता है ये आदमी ने सोचा कैसे। इतनी सिंपल सी लाइन है इस गाने में आती है जो नंबर 5 पे जगाने, इसमें लाइन है कि बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी,
1: बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी।
0: उन्होंने कोई खतरनाक शायरी नहीं कर दी, अ वेरी सिंपल थॉट, और इस गाने में जो वो थॉट आया है और जिस पॉइंट पे आया है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल साउंड करता है। एंड उनके लिरिसिज्म की तो मैं क्या तारीफ करूं, ही कैन पॉप ही कैन हिप हॉप। और जब ये परफेक्ट फ्यूजन मिलता है, क्योंकि कई मरतबा होता है कि एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा रैप कर सकता है मगर गा नहीं सकता, एक आर्टिस्ट गा सकता है लेकिन अच्छा रैप नहीं कर सकता, तो रिदम एंड पोइट्री और पॉप म्यूजिक दोनों अलग अलग रहते हैं, मगर जब एक आर्टिस्ट इन दोनों को फ्यूज करता है और अच्छे से एक साथ फ्यूजन कर पाता है तो बहुत शानदार गाना बनता है। और उनका हर गाना रिसेंटली हिट है, इंक्लूडिंग दिस वन विच इज ऑन द लिस्ट। तो नंबर 5 पे है जगाने डांडा न्योली वाला, सुन के देख लो जी।
2: FM 107 Top 10 Number

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से।

0: हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जुबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी एफएम

0: FM 107 Top 10.
1: ओके सो अब हमें पड़ाव चढ़ना है 4-3-2-1 का, तो ये करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं. तो गाना नंबर 10 रहा बूहे बारियां, रोचक कोहली और रोशनी वालिया और साथ में आदित्य रिखारी द आर्टिस्ट. उसके बाद नंबर 9 पे है मेरा पिया घर आया आवारा पंटू से, और फिर नंबर 8 पे है बरसात लग दिए दर्शन रावल और सिमरन चौधरी, फिर नंबर 7 पे है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज में, नंबर 6 पे है बढ़ जा तू मेरी बादशाह चरणप्रीत, नंबर 5 पे है जगाने. अब जी जगह बनाए क्योंकि अब वक्त है गाना नंबर 4-3-2-1 का. तो गाना नंबर 4 जो है वेरी क्रिटिकल पोजिशन अगेन. गाना नंबर 4 पे एक कदम नीचे आके एंट्री मारी है आवारा पंटू के गाने वे जुनून. बहुत पावरफुल इमोशनल गाना है ये, बहुत पावरफुल. लोगों ने इस गाने को शुरुआत में बहुत हल्के में लिया, कहने लगे कि ये आवारापन वाली वाइब है ही नहीं, ये तो सैयारा वाली वाइब लग रही है और फलाना फलाना फलाना. मगर सईद कादरी साहब ने जो लिखा है इस गाने को जिस तरीके से, वो बेहतरीन है यार. मगर कोई कैसे कह सकता है कि गाना अच्छा नहीं है. ये 6 मिनट का गाना है टोटल, 6 मिनट का, लेकिन इतना ब्यूटिफुली गाया है सुबोध भाई ने, कमाल का फॉर्म किया है. और लिरिक्स पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो इतने पावरफुल लिरिक्स आपको रिसेंटली मिले भी नहीं होंगे. सो वे जुनून आवारा पंटू का गाना इज एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट. सुन के देखो. अब फटाफट बढ़ते हैं गाना नंबर 3 की तरफ, क्योंकि आप टॉप 3 की तरफ आ चुके हैं. गाना नंबर 3, 2 और 1 इनमें बहुत सिमिलरिटी है, पता लग जाएगा आपको. गाना नंबर 3 जो है लेटेस्ट एंट्री मगर नॉस्टैल्जिक एंट्री. तो फिर आओ पार्ट 2 आवारा पंटू से इस लिस्ट में शामिल होता है.
2: तो फिर आओ मुझे बोलला.
1: ये गाना भी रिलीज हुआ मूवी के साथ ही, और वो भी इंट्रो ट्रैक है. इमरान हाशमी ऑन द बाइक और काला कुर्ता पहने हुए जा रहे हैं और ये गाना पीछे चलता है. तो फिर आए यार कैसे ने जगह बनाई अपनी, एक बार फिर से रीलिविंग एवरीथिंग अगेन. 19 साल पहले की याद इस गाने से डेफिनेटली आती है. गाना तो फिर आओ

पार्ट टू इज एट नंबर थ्री ऑन द लिस्ट। अब ऊपर के जी दो गाने कौन से होंगे? नंबर दो पे है अगेन अगेन अगेन आवारा पंटू से अरिजीत सिंह की आवाज में, एंड ये गाना भी बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली इस गाने ने वापस पिक किए अपने व्यूज, शुरुआत में थोड़े डल हुए थे हिट होने के बाद, फिर वापस अभी पकड़ लिया है। अरिजीत सिंह ने शॉर्ट स्टोरी इसके लिए कोई पैसे नहीं चार्ज किए, एंड ही डिड इट फॉर फ्री। और ये आवारापन जो मूवी का एक तरीके से टाइटल ट्रैक है, ये गाना है एट नंबर टू ऑन द लिस्ट। डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स। लोगों की उम्मीद ऐसी होती है ना, हमें तो भाई गाना चाहिए भाई, कुछ नया और अच्छा मिल, सुन लिया करो। सैयद कादरी साहब ने इस गाने को भी लिखा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक्स। और अरिजीत सिंह ने गाया, मतलब इस पे कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? तो गाना नंबर दो यही है, ये आवारापन एट नंबर टू ऑन द लिस्ट। अब बढ़ते हैं द टॉप ट्रैक दिस वीक, जिसने अपनी जगह बनाई हुई है, जो अपना थ्रोन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वो गाना है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि इस गाने में रिकॉल वैल्यू है, इस गाने में नॉस्टैल्जिया है, इस गाने में यादें हैं, इस गाने में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो 19 साल से लेकर अभी तक आपको बांध के रखती हैं। ये गाना है तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज, जिसका दूसरा वर्जन इतना कमाल का गा, मुझे मजा आ गया यार। आवारापन टू से तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज इज एट नंबर वन, कंटिन्यूज एट दिस पोजिशन एंड डेफिनेटली किल्स इट आउट ऑफ द ब्लू। ये गाना डेफिनेटली अपनी जगह डिजर्व करता है द टॉप ट्रैक of this week. तो ये थी टॉप 10 लिस्ट हमारी, और अगर आप भी इसमें कुछ गाना को इंक्लूड करना चाहते हैं या बाहर निकालना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, प्लीज हम तक जरूर पहुंचाएं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar के अलावा आप मुझे भी मुझसे भी जुड़ सकते हैं, दोहा वाला कबीर, और कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR। यू कैन फाइंड मी ऑन टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। एंड ऑन दैट नोट मिलते हैं जी, बाकी शोज में मुलाकात होती रहेगी। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलाम। FM 107

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, पहचान सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ, और इस हफ्ते मेरी पहचान में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके ये गर्मियों के दिन भी बड़े मजे के जा रहे होंगे। वेल, आज मेरी पहचान में क्या बातचीत होने वाली है, चलिए आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, सोचिए कि एक आम सा वीकडे है, ठीक है, हमारे जो दोहा की धूप है वो बाहर भी बिल्कुल उतनी ही शार्प है जितनी हमको अंदर से दिख रही है। अब कुछ जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक है और आप अपने घर के ठंडे कमरे में ना बैठी हैं, लेकिन इस ठंडक के बावजूद आपके अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रही हैं अपने इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की। ये परफॉर्मेंस क्या है? ये परफॉर्मेंस किसी स्टेज पर नहीं होनी है, किसी थिएटर में नहीं होनी है। इसके ऑडियंस सिर्फ दो लोग हैं जो हजारों मील दूर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आपका फोन बजता है, स्क्रीन पर मम्मी या पापा का नाम चमक रहा होता है, लेकिन एक्सेप्ट का बटन दबाने से पहले आप एक क्विक मेंटल चेक करती हैं। आप शीशे में अपनी थकी हुई आंखों को देखती हैं और उन्हें थोड़ा सा ना साफ करती हैं। माथे पर जो पसीना होता है या थकान होती है उसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करती हैं। कैमरे का एंगल ऐसे सेट करती हैं कि पीछे जो अनपेड बिल्स का ढेर पड़ा है वो नजर ना आए। वो बिखरे हुए कपड़े, वो अधूरा काम, सब कैमरे के फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। और फिर आप अपने बच्चों की तरफ मुड़ती हैं और धीरे से मगर सख्ती से कहती हैं, प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे एक्ट करो जैसे तुम दुनिया के सबसे खुश बच्चे हो। हाँ, नो फाइटिंग। वैसे ये डायलॉग हर घर का कुछ अलग लेवल का आता है। कई बार तो धमकियां मिलती है पेरेंट्स की, वो भी बहुत तेज, की दादा दादी का कॉल है या नाना नानी का कॉल है, बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए वरना फिर देखना है कि नहीं। फिर आप वो बटन स्वाइप करती है, स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखता है, वही उम्मीद से भरी आंखें, वही फिकर। आप अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं जो शायद आपने पिछले 4 दिनों में ना महसूस भी नहीं की होती है। और फिर आप वो 4 लफ्ज कहती हैं जो हम जो अपने घरों से दूर होते हैं जिंदगी के सबसे महंगे अल्फाज हैं, कि सब ठीक है मम्मी, सब ठीक है पापा, है कि नहीं, सब ठीक है क्या, एवरीथिंग इज फाइन, क्या सब वाकई में ठीक है। ये 4 शब्द कहने के लिए कितनी हिम्मत लगती है ना, ये सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश से दूर होते हैं, अपने घरों से भी दूर होते हैं, तो दूर होने के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और स्पेशली जब हम फैमिली वाले होते हैं तब तो बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने चैलेंजेस गिनाएंगे तो हमारे पेरेंट्स की फिकर बढ़ जाएगी। हाँ, आप उन्हें नहीं बताना चाहते कि आज ऑफिस में बॉस ने क्या कहा, आप उन्हें बिल्कुल नहीं बताती कि महीने का रेंट कितना बढ़ गया है और आपकी नींदें उड़ गई हैं, है कि नहीं। आप ये भी नहीं बताती कि पिछले 3 दिनों से आपको माइग्रेन हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें बिल्कुल टेंशन या दुख नहीं देना चाहती। वेल, हम एक ऐसी जनरेशन बन गए ना जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हम इस गोल्डन केज यानी इस सोने के पिंजरे में बैठे तो हैं जहां बाहर से सब कुछ चमक धमक रहा है, मगर अंदर थोड़ी सी ना खामोशी वो बढ़ती जा रही है। हम खुशी या यूं कहें हैप्पीनेस परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो मॉम डैड हैं वो सुकून से जी सके या सुकून से सो सके, ताकि उन्हें लगे कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पर है, खुश मिजाज है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस मिसाल को बनाए रखने के लिए हम हर रोज अपनी थकान का सौदा करते हैं। सो ब्यूटीफुल लेडीज, कभी सोचा है आपने कि जब वो कॉल कट जाती है, जब वो मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाती है और आप उस अंधेरे स्क्रीन में अपना ही चेहरा देखती हैं, तब क्या महसूस करती है? एक अजीब सा खौफ दिमाग में आता है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उन्हें सच्चाई से दूर

रखने के चक्कर में क्या आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जहां से अब कोई अंदर नहीं आ सकता? क्या उन्हें सुकून देते देते आपने खुद को तन्हा या यूं कहें अलोन कर लिया है? देखो, आज मेरी पहचान में हम बात इसी के बारे में करने वाले हैं, इस परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बनते जा रहा है कि नहीं? तो चलो, फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का उन एफएम 107 पर। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। मेरी पहचान में इस वक्त आज की सोच पर हम एक चर्चा करने वाले हैं। आज की सोच एक ऐसे बोझ के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम सब ने ना बड़ा प्राइडली या यूं कहें गर्व के साथ उठाया हुआ है। इस बोझ का नाम बड़ा खूबसूरत है, हम इसे कहते हैं द बर्डन ऑफ पीस, यानी सुकून का वो बोझ जो हमने अपने कंधों पर अपने दिल पर लगा रखा है। सुकून, ये लफ्ज सुनने में कितना हल्का लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका हो, लेकिन हम इस सुकून के बारे में जब सोचते हैं तो हमको बड़ा भारी लगता है कि नहीं? ये वो सुकून है जो हम अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, उनके हिस्से का चैन हम खरीदना चाहते हैं अपने सच्चाई की कीमत देकर। देखो, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मम्मी पापा से कभी कभी अपना दर्द छुपाएं तो उसमें गलत है, लेकिन जब ये आदत बन जाए तो ये बहुत गलत है। समझ रहे हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमने सच बता दिया या अगर हमने कह दिया कि मम्मी मैं थक गई हूँ या पापा मुझे अब नींद नहीं आ रही या मुझे सोने दो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका सुकून छिन जाएगा। और उनका सुकून बचाने के लिए हम हर रोज अपने अंदर एक नया झूठ पालते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस सुकून की बुनियाद झूठ पर रखी है? वो सुकून असली में है भी या नहीं? हमारी तहजीब में, हमारी परवरिश में एक बात कोट कोट कर भरी जाती है और ये एक अच्छी बात है। कैसे? एक अच्छी बेटी या एक जिम्मेदार बेटा वही होता है जो अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। हम पर उनकी उम्मीदों का एक अजीम शान या यूं कहे एक ग्रैंड बोझ होता है। हमें याद दिलाया जाता है कि शायद हम खुद को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जमीन बेची थी हमें पढ़ाने के लिए या हमारे किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। कैसे मम्मी ने अपने गहने गिरवी रखे थे कि भाई अगर किसी जगह जा रहे हैं, विदेश यात्रा में जा रहे हैं जहां हमें पढ़ाई करनी है, तो उसकी टिकट कर ले। कहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम पर लगा दी होती है, बताए जरा। और बस यही से शुरू होता है वो सक्सेस स्टोरी बनने का दबाव। हमें लगता है कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। हमें लगता है कि अगर हमने बताया कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, काफ़ी तंग चल रही है या हम मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो हम उन्हें ब्रेक कर देंगे। हम उनकी कुर्बानियों को इंसल्ट नहीं कर सकते, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये जता देंगे कि उनका फैसला गलत था। लेकिन जनाब, क्या सच में वो इतने कमजोर हैं या हमने उन्हें कमजोर समझ लिया है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर सोचिए इसके बारे में। मेरी बात आज बहुत गौर से सुनिएगा। उनका सुकून बचाने की इस कोशिश में आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप अपनी रूह का कत्ल भी कर रहे हैं। हाँ जी, जब आप उनके सामने जो झूठी मूठी मुस्कान रखते हैं ना, वो सही नहीं है। हाँ, जब आप हर मुश्किल को हंस कर टाल देते हैं तो पता है क्या होता है? आप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यू बिकम इमोशनली इनविजिबल। आप फिजिकली तो उनसे हजारों मील दूर है ही, मगर अब आपने अपने आप को और उनके बीच एक ऐसा पर्दा गिरा लिया है जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता। आप उनके लिए सिर्फ एक सक्सेस सिंबल बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी फोटो जो उनके ड्राइंग रूम में लगी है और जिसे वो सबको गर्व से दिखाते हैं। लेकिन उस फोटो के पीछे जो इंसान है, जो लड़की है, जो रात को सो नहीं पाती, जो लड़का है, जो ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है, उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है क्या? आपने उन्हें सुकून तो दे दिया, मगर उनसे उनका बच्चा छीन लिया। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये सौदा सही है? क्या एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे की कामयाबी उसकी खुशी से ज्यादा अहम हो सकती है? शायद नहीं। हमें लगता है कि ऑनेस्टी यानी सच्चाई एक बोझ है जो हम उन पर डाल देंगे, मगर सच तो ये है कि ऑनेस्टी कोई बोझ नहीं है बल्कि एक खूबसूरत सा ब्रिज है, एक पुल है जो आप उन तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। सोचिए जब आप उन्हें बताते हैं कि आप परेशान हैं, तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, वो फिर से माँ बाप बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज भी आपके काम आ सकते हैं, उनका तजुर्बा, उनकी हिकमत, उनकी दुआएं, वो सब आपके लिए रास्ता खोलने लगती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी उस परफेक्ट तस्वीर से उन्हें रूबरू करवाएंगे तो वो आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। कम ऑन, वो उस परफॉर्मेंस से इश्क कर रहे हैं जो आप हर रोज उनके लिए स्टेज पर दिखाते हैं, वीडियो कॉल्स पर दिखाते हैं। रिश्ते परफेक्शन से नहीं, वल्नरेबिलिटी से मजबूत होते हैं। जब तक आप उन्हें अपने जख्म नहीं दिखाएंगे ना, वो उन पर मरहम कैसे लगाएंगे, कभी सोचा है आपने? तो आज हमारा मेरी पहचान शो का ग्रैंड फिनाले है, इस सीजन का ग्रैंड फिनाले, और मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, सक्सेस स्टोरी बनाना बंद कीजिए, एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। कतर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ मौके हैं, यहाँ तरक्की है, मगर यहाँ कभी कभी जब हम अपनी चीजों में जूझ जाते हैं तो हम अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर इसे मत दबाइए, अपने घर वालों को अपने असली रंग दिखाइए। उनसे क्या होगा, उन्हें बताएंगे कि आप थके हैं, आप को रोना आ रहा है या आपको उनके खाने की याद आ रही है। ये जो दूरी है ना रिश्तों की, वो कम होते नजर आएगी। याद रखिए, आपके माँ बाप ने आपको इस दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा था कि आप एक गोल्डन रोबोट बन जाए जो सिर्फ पैसे और अच्छी खबरें ही सुनाते रहे। उन्होंने आपको इसीलिए भेजा ताकि आप अपनी जिंदगी बना सकें, और जिंदगी तभी बनती है जब उसमें सच हो। अपने माँ बाप को ये हक दीजिए कि वो आपकी तकलीफ में आपका साथ दे सके। उन्हें अपने बर्डन ऑफ पीस से आजाद कीजिए, और खुद को इस परफॉर्मेंस से भी कि हाँ मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बेटी हूँ या मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बहू हूँ और मैं सब कुछ परफेक्ट ही बताऊंगी। नहीं, आपके अपनों को अपना दर्द दिखाइए। तो चलो फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का उन FM 107 पर मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान Well, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो रोज वीडियो कॉल्स पर कहीं ना कहीं हम कर ही देते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परफॉर्मेंस की कीमत आपकी बॉडी को भी चुकानी पड़ती है क्योंकि मेंटल फटीग के साथ जब ये जो मास्क हमने लगाया होता है अपने चेहरे पे और उतरता है तो फिजिकल फटीग भी हो जाती है और फिर क्या होता है मेडिकल मास्क लगाने पड़ते हैं यानी कि मेडिकल के चक्कर लगने लगते हैं सोचिए आप एक 30 मिनट की कॉल पर है आपकी आवाज थोड़ी हाई पिच्ड हो जाती है हाँ मम्मी सब बहुत मजे में चल रहा है बच्चे बहुत खुश हैं आपका चेहरा एक मुस्कुराहट जैसे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है उफ लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज साइंस कहती है कि जब आपका मन दुखी हो और आपका चेहरा झूठी मुस्कुराहट दिखाए ना तो आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है आपका बदन जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्या आपने कभी नोटिस किया है कॉल खत्म होते ही आपको बिल्कुल एकदम थकान सी महसूस होती है आपके गले में एक ड्राइनेस आ जाती है आपके कंधे एकदम कान तक चढ़ जाते हैं और आप टेंस हो जाते हैं कि ओ हो अब मैं क्या ही करूं सो ये हमारे जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो भी थोड़ा सा बिगड़ने लगता है आपका ब्रेन लगातार स्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहा है क्योंकि उसे नकाब पहनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है आप अपने माँ बाप को तो धोखा दे रहे होते हैं लेकिन आप अपने डीएनए को धोखा नहीं दे सकते हैं तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है साइलेंट होना हमें लगता है कि अगर हमने अपनी थकान दिखा दी तो हम कमजोर हो गए हम इतने खूबसूरत शहर में हैं, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में हैं, जहां हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर सक्सेस के साथ हमें थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया तो क्या वो बताना गलत है हाँ ये जो मास्क फटीग है ना धीरे धीरे आपको अंदर से ना खोखला कर देगी जब आप हर रोज एक झूठी पहचान के लिए जीते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप भूल जाते हैं कि असली आप कौन है आपकी असली पहचान क्या है आपके और आपके अपनों के बीच एक ऐसा गैप पैदा हो जाता है जिसे भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर आगे आप उसके बारे में सोचते भी नहीं तो आज हमारे मेरी पहचान के ग्रैंड फिनाले में मैं चाहती हूँ कि जब आप कहें कि एवरीथिंग इज फाइन तो वाकई में सब कुछ फाइन रहे ना कि अंदर से आप टूटा हुआ महसूस करें है कि नहीं Well, कुछ चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगी जैसे कि द मिरर साय यानी कि पहला ऐसा टूल है जिसको कहते हैं द मिरर साय और मैं चाहती हूँ कि आप अभी जहां भी हैं चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं या घर में हैं मेरे साथ ये चीज कर लो क्या अगली बार जब वो फैमिली का कॉल आए तो एक्सेप्ट करने से पहले शीशे के सामने ना खड़े हो जाओ दो मिनट के लिए फोन को साइड में रख के अपने आप को देखो उन आंखों में देखो कि थकी हुई है या फिर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा रेस्ट करना है क्या हो क्या रहा है अपने आप को पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो और एक बहुत गहरी सांस लो इतनी गहरी कि आपका जो स्टमक है वो फूल जाए और फिर उसे अपने मुंह से जोर से हा की आवाज करते हुए बाहर निकालो फिर से इसे करो और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी हल्के रिलैक्स मोड में जाती है अपने जबड़े को लूज छोड़ो और शीशे में देखकर खुद से कहो मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है मैं जैसी हूँ काफी हूँ ये साय आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि सेफ्टी है ये आपके मास्क को थोड़ा ढीला कर देता है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तभी आप दूसरों के सामने थोड़ा सा सच रखने की हिम्मत जुटा पाते हैं ये आपका अपने आप से एक वादा है कि मैंने कम से कम अपने लिए इनविजिबल होना तो छोड़ दिया है कि नहीं मतलब जो है जैसे हैं वैसे हम अपने अपनों के साथ हैं अब आते हैं उस कॉल पर मैं जानती हूँ कि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहते दिस आई नो वेरी वेल ये सेम हाल हमारा भी है उन्हें क्योंकि कभी कभी कुछ जो पेरेंट्स हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं जैसे कि मेरे फादर भी हार्ट पेशेंट हैं और इस डर के चक्कर में कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए मैं समझती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें भी उनको पहले नहीं बताती थी, इसीलिए हर चीज़ छुपाना ज़रूरी लगने लगा। लेकिन 100% झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें द ट्रूथ सैंडविच का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड और बीच में फिलिंग्स होती हैं, आपको भी वही करना है। पहली लेयर गुड न्यूज़, अपने पेरेंट्स को जब भी कॉल करते हो या उनका कॉल आता है तो मम्मी आज बच्चों का रिजल्ट आया है, वो बहुत खुश है, स्टार्ट विथ अ गुड न्यूज़। बीच के लेयर में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाओ अपना, लेकिन मम्मी सच बताऊं तो इस हफ्ते मैं थोड़ा ओवरवेल्म महसूस कर रही हूँ, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी थकान हो गई है। यू हैव टू टेल, है ना, आपको रियल होना पड़ेगा। और आखिरी लेयर जो होगी वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होगी, बस आज जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, कल तक थोड़ा सा बेहतर लगेगा, आप बस दुआ कीजिए। यू नो, पता है इससे क्या होता है, इससे आपका प्रेशर वेल्व जो है वो खुल जाता है। आपने उन्हें क्राइसिस में नहीं डाला, मगर उन्हें अपनी हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। इससे उन्हें एक मौका मिलता है फिर से माँ बाप बनने का। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को, उनके बेटे को आज भी उनकी ज़रूरत है, उनकी तसल्ली की, उनके कंफर्ट की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं आज भी आपके लिए शील्ड की तरह काम कर रही हैं। लेट देम बी पेरेंट्स अगेन, उन्हें उनके इस हक से ना महरूम मत कीजिए। तो आप समझे ये ट्रुथ सैंडविच कैसे इस्तेमाल करना है। आपको लगेगा कि आपने अपने दिल का जो बोझ है ना थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर लिया है, पर उन पर डाला नहीं है। जिंदगी जो है एवरीथिंग इज फाइन के बोर्ड को लगाने के लिए नहीं होती है, जिंदगी तो उन रिश्तों को निभाने के लिए होती है जहां हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेड हो, या यूं कहें वैसे ही कबूल हो। पर मैं हूं अमिता आपके साथ और मेरी पहचान में आज हमारी ये बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन आप सुन रहे हैं एफएम 107 पर मेरी पहचान आपकी

अमिता के साथ। अब हम उस खास सेगमेंट पर कदम रखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मैं। आज की छुपी हुई कोई एक औरत नहीं है, वो हम सब हैं जो इस वक्त कतर की चमकती सड़कों पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। सोचिए, आप अभी अभी सुपरमार्केट से निकली हैं, हाथ में भरे हुए बैग्स हैं, बच्चे शायद पीछे की सीट पर सो गए हैं। आप अपने गाड़ी के एसी को फुल करती हैं बाहर की गर्मी से बचने के लिए, लेकिन जैसे ही आप गियर डालती हैं, अचानक आपकी आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर एक और आप वहां सुपरमार्केट की पार्किंग में अपनी शाइनी एसयूवी में बैठकर रोने लगती हैं। क्यों? आपको खुद नहीं पता, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, किसी ने बुरा भी नहीं कहा है, मगर वो जो अंदर से एक हैवीनेस हो रहा है ना, वो फट जाता है। आप स्टेयरिंग व्हील पर सर रख लेती हैं और दो मिनट बाद अपना चेहरा साफ करती हैं, थोड़ा सा पाउडर लगाती हैं, नाली लगाती हैं, अपने आप को सही करती हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। ओ हो हो, यही पे तो आके दुनिया अटक जाती है। और ये है वो छुपी हुई मैं जो हर रोज अपने दर्द को बैक सीट पर बैठा कर ड्राइव कर रही होती है। या फिर सोचिए, आप मुशेरिब डाउनटाउन के किसी बहुत ही एस्थेटिक और खूबसूरत कैफे में बैठी हैं। आपके हाथ में एक महंगा सा कॉफी का कप है और चारों तरफ लोग स्टाइलिश कपड़ों में हसीन बातें कर रहे हैं। आप कतर के सबसे पॉश इलाके में, सबसे बेहतरीन माहौल में कॉफी पीने के लिए बैठी हैं। लेकिन उस भीड़ में बैठकर भी ना आपको अचानक लगता है कि एक फ्रॉड है। क्यों? आपको लगता है कि ये लग्जरी आपके चारों तरफ है, ये आपकी नहीं है, आप इसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। उफ, लोग आपके डिजाइनर बैग देख रहे हैं, आपकी स्माइल देख रहे हैं, मगर आपका दुख नहीं देख पा रहे। उफ, आपको लगता है कि आप एक घोस्ट की तरह अपनी ही जिंदगी में घूम रही हैं। डिनर पार्टीज हो, स्कूल इवेंट्स हो, या दोस्तों के साथ ब्रंच हो, आप वहां होती ही नहीं है। आपने एक ऐसा मास्क पहन लिया होता है जो बड़ा भारी होता है कि नहीं? और आप सोचती हैं कि अगर आपने बता दिया कि आपका दिल बहुत दुखी है या किसी पेन से आप गुजर रही हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि इसके पास तो सब कुछ है, फिर ये दुखी क्यों है कि नहीं? ये सवाल जनाब सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि पॉइजन है, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं है। कतर में हमें हर फैसिलिटी मिली है, सेफ स्ट्रीट्स हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ है, और यही कंफर्ट हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारे अपने भी स्ट्रगल्स हैं और उनका जिक्र हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ इतने अच्छे से रह रहे हैं और अगर हमने बता दिया कि भाई देखो हमारे काम के चक्कर में है या किसी भी चक्कर में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है या हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हम या डिप्रेस हो रहे हैं, तो फिर हमें लोग कहेंगे कि हम बहुत ही अनग्रेटफुल हैं या ना शुक्रे हैं। इसलिए आप द स्ट्रॉन्ग वन बन जाते हैं, फैमिली की एंकर, बच्चों की सुपर मॉम, हस्बैंड की सुपर सिस्टम, ओफ, और माँ बाप का सक्सेस सिंबल। आप थक गई हैं, लगता नहीं है थोड़ा बहुत कि आप ये स्ट्रॉन्ग वन का जो टैग है ना, धो धो कर पहन लेती हैं, है कि नहीं? आपको डर लगता है कि अगर आपने एक छोटा सा क्रैक भी दिखा दिया तो ये जो परफेक्शन की जिंदगी है ये बिखर जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो हीरा होता है ना, डायमंड भी, ये स्ट्रेस से ही बनता है, ये सच है, मगर एक हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तो अंधेरे में हीरा भी सिर्फ एक काला पत्थर ही लगता है। सो यू डोंट हैव टू बी अनब्रेकेबल। आपका टूटना, आपका रोना, आपका कमजोर महसूस करना आपको इंसान बनाता है, कमजोर नहीं। इसे जरूर याद रखें, बिकॉज यही आजकल के ट्रेंड में होते जा रहा है। अब जैसे जैसे हम इस सीजन के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, तो हमारी बात उतनी ही गहरी हो गई है। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी गुजारिश करना चाहती हूँ। आज वक्त आ गया है कि आप अपने परिवार की खुशियों के डायरेक्टर के ओहदे से रिजाइन कर दें और इस इस्तीफे को देने के बाद थोड़ा सुकून में आए। बहुत हो गया सीन डायरेक्ट करना, बहुत हो गया कैमरा एंगल सेट करना ताकि सब बिल्कुल हंसता खेलता दिखाई दे, बहुत हो गया स्क्रिप्ट एडिट करना कि भाई मैं तो दुखी

ये लाइन मुझे नहीं कहनी. स्टॉप डायरेक्टिंग द मूवी ऑफ योर लाइफ. एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए बस उनकी बेटी बन जाए, बस उनका बेटा बन जाए. आपके माँ बाप ना जो कि कतर से दूर हैं, वो बहुत अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें अच्छी खबर के साथ अपना स्ट्रगल भी बताएं. उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि उनकी बेटी कैसी है अभी असलियत में. उन्हें ये जानने का हक है कि उसके बुरे दिन भी होते हैं. पता है जब आप उनसे अपने दुख दर्द शेयर करते हैं तो आप उन्हें जिंदा महसूस कराते हैं. हाँ जी, मैंने बहुत गहरी लाइन इस वक्त आपके सामने रख दी है. जिंदा महसूस कराते हैं, उन्हें लगता है कि वो आज भी आपका साया बन सकते हैं. उन्हें बताइए कि आपको आज भी अपनी माँ की आवाज की उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में चोट लगने पर होती थी. वही वल्नरेबिलिटी, वही रियलिटी और वही आप है कि नहीं. देखिए जनाब, आज ये जो मुद्दा था ना परफॉर्मेंस का, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये काम कर ही रहे होते हैं, और मैंने तो किया है. तो मैंने कहा कि चलो जो चीज मेरा एक्सपीरियंस है वो शायद औरों का भी एक्सपीरियंस हो और आज आपसे शेयर करना बनता है. तो कुछ बातें हैं जिसका जिक्र आपसे करना जरूरी है कि मैं ये नहीं कहती कि आज ही कॉल करके सब कुछ बोल दीजिए, ठीक है. बस अगली बार जब घर कॉल करें तो 10% ज्यादा थोड़ा सच बोलें और सच्चे होने की कोशिश करें. अगर उन्होंने पूछा कैसे हो तो सब ठीक है कहने के बजाय कहिए कि मम्मी सब ठीक है मगर आज थोड़ा मन उदास है. मतलब बातों में उन्हें जताएं कि जो आपके साथ हो रहा है. बस इतना ही. सिर्फ 10% या 10% अगर आप सच बोलेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप वो 10% सच बोलने पर आपका जो बोझ है ना वो 90% यानी 90% तक हल्का हो जाता है. एक साथ रोया गाया या एक आंसू उस झूठी मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा हीलिंग होता है. रिश्तों में ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एहसास की जरूरत होती है. आज से ये परफॉर्मेंस बंद कर दो और असलियत शुरू कर दो. तो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरी पहचान का ये पहला सीजन आज खत्म हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिल से हमारा साथ दिया और अपनी गाड़ियों के या अपने घरों के रेडियो में रेडियो सेट्स के जरिए मुझे सुना आपकी अमिता को. तो मेरी पहचान ये खासम खास शो जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए. बस याद रखिए कि आपकी असली पहचान आपकी सच्चाई में है, आपके दिखावे में नहीं. आप जैसी हैं वैसे ही मुकम्मल है, वैसे ही कंप्लीट है कि नहीं. और आपको हमारा शो मेरी पहचान कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, सो 666-22-107 पर आप शेयर कर सकते हैं या FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी अपने दिल की बात कह सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपनी अमिता को भी ढूंढ सकते हैं. फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत. आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले सीजन में. तब तक के लिए क्या करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपनी पहचान को कभी नहीं गंवाना है. और इसी के साथ अब मुझे दे दीजिए इजाजत. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Cricket ho.
4: And he's hooked that away. That's 4 runs.
3: Football ho. Ya koi aur bada sporting action. हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
3: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज। भूले

हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ

सिंह और हैरत अंगेज राजों को खोलते हैं आपके सामने। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो लिटरली लाइट ईयर्स अहेड है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोशनी की जो सीधा चलने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हाँ जी साथियों, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अच्छा चलें इसको समझना आपके लिए इजी बनाती हूँ। ये बात तो हम सब ने सुन रखी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन साथियों स्पेस में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां लाइट भी कहती है भाई मैं सीधा नहीं चल सकती, यहां तो ग्रेविटी ने ट्रैफिक जैम लगा रखा है। तो भाई साथियों जरा सोचिए एक ऐसा मंजर जहां एक दूर का सितारा किसी और मैसिव गैलेक्सी के पीछे छुपा हुआ हो, लेकिन हम फिर भी उसकी लाइट देख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीच वाली गैलेक्सी या ब्लैक होल अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से उस लाइट को बेंड कर देती है, जैसे किसी ने आसमान में एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया हो। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है साथियों, ये प्योर साइंस है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था हमारे साइंस के लेजेंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी मशहूर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। भाई उस वक्त आइंस्टाइन ने ये स्टेट किया था कि ग्रेविटी सिर्फ चीजों को नीचे नहीं खींचती, ये स्पेस और टाइम को ही झुका देती है। लोगों ने पहले कहा कि भाई ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन आज जब हबल टेलीस्कोप और मॉडर्न सैटेलाइट्स ने प्रूव कर दिया है कि भाई आइंस्टाइन बिल्कुल ठीक थे, यानी कि उनकी कही बात हकीकत थी। आज साइंटिस्ट इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए यूनिवर्स के सबसे पुराने और दूर दराज गैलेक्सीज तक झांक रहे हैं। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल या गैलेक्सी क्लस्टर किसी पीछे के ऑब्जेक्ट के सामने आता है तो वो एक नेचुरल लेंस की तरह काम करता है। लाइट उसके इर्द गिर्द झुकती है और हमें लगता है कि जैसे एक ही स्टार के कई वर्जन्स हमारे सामने हैं, यानी एक कॉस्मिक इल्यूजन। तो साथियों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां लाइट झुकती है, स्टार्स डबल दिखते हैं और गैलेक्सीज अपने ही मिरर इमेज बना देती हैं। ये वो फिनोमिना है जहां साइंस और उसकी थ्योरीज मिलकर एक बन जाते हैं और हमारे सामने जाता है एक नई दुनिया का दरवाजा, एक नया नजरिया। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे ग्रेविटेशन लेंसिंग ने हमें ये बताया है कि यूनिवर्स कितनी पुरानी है और कैसे हम इसके जरिए डार्क मैटर तक का अंदाजा लगा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम खोलने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग के राज, उसका मैकेनिज्म और ये स्पेस का मिरर इफेक्ट होता कैसे है इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन एफएम 107। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है। सोचिए आपके पास एक बड़ा सा ग्लास लेंस है। अगर आप उस लेंस के सामने एक लाइट रख दें तो वो लाइट बेंड हो जाती है और इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी लगती है। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम कुछ स्पेस में भी होता है साथियों, बस यहाँ लेंस कोई ग्लास नहीं बल्कि ग्रेविटी का होता है। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कोई गैलेक्सी या ब्लैक होल किसी दूर के ऑब्जेक्ट के लाइट के रास्ते में आ जाता है तो वो लाइट को बेंड कर देता है और ये बेंडिंग इतनी स्मूथ और प्रिसाइज होती है कि हम एक ही स्टार या गैलेक्सी को मल्टीपल इमेज में देख लेते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने अपनी ही मैजिक ट्रिक दिखाई हो। जरा सोचिए, आप टेलीस्कोप में एक स्टार को देख रहे हैं, ठीक है, और अचानक उस स्टार का डबल या ट्रिपल वर्जन आपके सामने आ जाता है। साथियों, ये कोई ग्लिच नहीं है सिस्टम का, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कमाल है और ये बेंडिंग इतनी एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट्स इसको एक नेचुरल कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज करते हैं। आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को आइंस्टाइन्स रिंग का नाम दिया था। ये तब होता है जब एक स्टार के आसपास की लाइट बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर शेप में हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है। वाह भाई, क्या कॉस्मिक ज्वेलरी है ना, एकदम शाइनिंग रिंग इन द स्काई जैसी। और साथियों, ये सिर्फ एक विजुअल ब्यूटी नहीं है, ये साइंटिफिक ट्रेजर भी है। यकीन जाने कि कुछ गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट नॉर्मली हम तक कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग उसकी लाइट हम तक ले आती है, जैसे कोई कॉस्मिक कुरियर सर्विस होना, बिल्कुल वैसे। और इस इफेक्ट के जरिए ही हम यूनिवर्स के उन छुपे हुए कॉर्नर्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं जिन्हें नॉर्मली हमारी आंखें नहीं देख सकती। और ये सिर्फ लाइट को देखने का तरीका नहीं है साथियों, साइंटिस्ट्स इस इफेक्ट का यूज डार्क मैटर का मैप बनाने के लिए भी करते हैं। डार्क मैटर यानी कि वो मिस्टीरियस सब्सटेंस जो ना दिखाई देता है ना ही महसूस।

होता है, लेकिन यूनिवर्स के ज्यादा हिस्से इसी से बने हुए हैं। जब हम टेलीस्कोप में एक गैलेक्सी के आसपास ट्विस्टेड और बेंड लाइट देखते हैं, तो हम फौरन समझ जाते हैं कि आहा, यहाँ कुछ हैवी है, कुछ इनविजिबल, लेकिन जरूर कोई प्रेजेंस है। साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें एक नई नजर देती है यूनिवर्स को देखने के लिए। हम यूनिवर्स के उन राजों को देखते हैं जो नॉर्मली हमें कभी नहीं दिखाई देते। ये कॉस्मिक स्पाई ग्लास है जो स्पेस के खोए हुए ट्रेजर्स हमारे सामने लाता है, और यही तो साइंस का मैजिक है भाई, जहाँ एक सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट हमें यूनिवर्स के गहरे राज तक ले जाती है। चलिए भाई, यहाँ तक तो मैंने आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे दी। साथियों, अब हम आते हैं कहानी के सबसे मैजिकल और इंटरेस्टिंग, हैरत अंगेज हिस्से पर। सोचिए, कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता था कि कुछ गैलेक्सीज और स्टार्स हमेशा के लिए खो गए हैं। उनकी लाइट इतनी फेंट या दूर थी कि वो टेलीस्कोप की पकड़ में आते ही नहीं थे, जैसे यूनिवर्स ने एक हाइड एंड सीक गेम शुरू कर दी हो और हमारी आंखें बस उन्हें ढूंढती ही रह जाती थीं। लेकिन फिर एक दिन, जैसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो भाई उस दिन से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया। एक जबरदस्त एग्जाम्पल उसकी दूं आपको, एक डिस्टेंट गैलेक्सी जिसका नाम है MACS0647JD। ये गैलेक्सी इतनी दूर है कि इसकी लाइट हम तक पहुंचने में तकरीबन 13 बिलियन साल लगाती है। जी हाँ, 13 बिलियन years, मतलब जब ये लाइट निकल रही थी तब अर्थ पे डायनासोर्स भी नहीं थे। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने क्या तो कमाल दिखाया भाई, उसने इस गैलेक्सी को मैग्नीफाई कर दिया, जैसे किसी ने टेलीस्कोप के सामने एक कॉस्मिक जूम बटन दबा दिया हो। और हमने एक ऐसी गैलेक्सी देखी जो प्रैक्टिकली यूनिवर्स के चाइल्डहुड में थी। सोचिए जरा, हम अपनी आंखों से यूनिवर्स के बचपन की फोटो देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मैजिक और भी हैरत अंगेज है। कुछ केसेस में तो एक ही स्टार मल्टीपल जगह पे दिखाई देता है, जैसे 2018 में साइंटिस्ट ने एक स्टार देखा जिसका नाम रखा गया था इकरस। ये स्टार नॉर्मली इतना दूर और फेम था कि हमारी आंखों को तो दूर की बात, मॉडर्न टेलीस्कोप्स के लिए भी ये प्रैक्टिकली इनविजिबल था। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने क्या तो कमाल दिखाया, उसकी ब्राइटनेस 2000 टाइम्स बढ़ा दी, मतलब एक इनविजिबल स्टार बन गया एक शाइनिंग सेलिब्रिटी। वाह वाह वाह, जहां यूनिवर्स की ग्रेविटी ने उसके लिए स्पॉटलाइट लगा दी। भाई, इस टेक्निक ने एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस डिटेक्टिव्स के लिए एक गोल्डन गिफ्ट तैयार कर दिया। भाई देखें, अब अगर कोई गैलेक्सी हाइड एंड सीक खेल रही हो, ग्रेविटी उसे छुपने नहीं देती, ऐसे जैसे कह रही हो कि लाइट छुप सकती है लेकिन ग्रेविटी से नहीं। और साथियों, ग्रेविटेशन लेंसिंग सिर्फ स्टार और गैलेक्सीज को देखने का तरीका नहीं, ये डार्क मैटर का प्रूफ भी प्रोवाइड करता है। डार्क मैटर वो मिस्टीरियस चीज है जो ना दिखाई देती है ना महसूस होती है, फिर भी यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना हुआ है। हम जब टेलीस्कोप में बेंड और ट्विस्टेड लाइट देखते हैं, तो हमें फौरन समझ आ जाता है, आहा, यहाँ कुछ हैवी चीज है, कुछ इनविजिबल, लेकिन दिखाई नहीं देती, हाँ प्रेजेंट जरूर है। इसी तरह लेंसिंग ने साइंटिस्ट को डार्क मैटर का एक रोड मैप भी दिया। और साथियों, यही नहीं, ग्रेविटेशन लेंसिंग से हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के क्लू भी मिलते हैं। जब हम डिस्टेंट गैलेक्सीज के लाइट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बेंड और डिस्टॉर्ट हो रही हैं, हम समझ पाते हैं कि यूनिवर्स का साइज कैसे बढ़ रहा है भाई, और वो कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। मतलब हम बेसिकली स्पेस के डिटेक्टिव बन जाते हैं, और हर बेंड लाइट हमारे लिए एक न्यू क्लू लेकर आती है। साथियों, इस लेंसिंग का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है, ये एक कॉस्मिक आर्ट फॉर्म भी है। जब लाइट और ग्रेविटी मिलते हैं, तो वो स्पेस के कैनवास पर एक मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। गैलेक्सीज और स्टार्स की ट्विस्टेड और मैग्निफाइड इमेजेस एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करती हैं, जो नॉर्मली हमारी आंखें कभी नहीं देख पाती। जरा ऐसे सोचिए ना, कि स्पेस ने हमें एक नेचुरल गैलरी दिखा दी है, जहां यूनिवर्स के हिडन ट्रेजर्स हमारे सामने अनफोल्ड हो रहे हैं। साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए हम सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज को नहीं देखते,
बल्कि यूनिवर्स की खोई हुई कहानी।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफएम 107 पर। अब हम आते हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी के उस जगह पर जहां हम फ्यूचर की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, और बिलीव इट और नॉट, ये जर्नी आपकी आंखों को लिटरली यूनिवर्स के परे ले जाएगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं, ये एक विंडो है आने वाले कल के यूनिवर्स तक की। जरा सोचिए, वो लाइट जो बिलियंस ऑफ इयर्स ट्रेवल करके हम तक आई है, अब हम उसे यूज करके यूनिवर्स के सबसे दूर और पुराने सीक्रेट्स देख सकते हैं। साथियों, नासा और ESA के नए और एडवांस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करके उन जगहों तक देख रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच पाए थे। ये टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स दिखाते हैं जहां स्टार्स की पैदाइश हो रही है और गैलेक्सीज अपनी पहली रोशनी फैला रही हैं। इसके जरिए हम देख पाएंगे पहली गैलेक्सीज कैसे बनी, कैसे ग्रो की, और उनके आसपास क्या एनवायरमेंट्स थे, क्या वहाँ लाइफ के लिए कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं? जी हाँ साथियों, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये अब रियलिटी में हो रहा है। साथ ही आपको याद है ना कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इक्वेशंस लिखी थी जो शायद उस वक्त सिर्फ थ्योरेटिकल लगती थी, लेकिन आज उनके इफेक्ट्स लाइव कैप्चर किए जा रहे हैं। एवरी बेंड रे ऑफ लाइट, एवरी मैग्निफाइड स्टार एंड गैलेक्सी हमें दिखाता है कि कैसे यूनिवर्स अपनी स्टोरी खुद लिख रही है और हम बस उस स्टोरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और साथियों, फ्यूचर में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के यूज से हम ब्लैक होल्स के अंदर के रीजन तक भी विजुअलाइज कर सकते हैं, वो जगह जहाँ टाइम और स्पेस दोनों डिस्टॉर्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए, हम उस रीजन को देख रहे हैं जहाँ लाइट इटसेल्फ और जहाँ ग्रेविटी का रूल यूनिवर्स के हर फंडामेंटल लॉ को ट्विस्ट कर देता है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नहीं, ये एक डायरेक्ट विंडो है उन कॉस्मिक मिस्ट्रीज के लिए जो हमेशा थ्योरेटिकल और अनसीन रहती हैं। और साथियों, यही नहीं, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सोप्लैनेट्स को भी लेंसिंग के जरिए डिटेक्ट कर लें, वो डिस्टेंट वर्ल्ड्स जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये चीज भाई सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि हमें ये भी दिखाती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का स्कोप इन्फिनिटी तक एक्सपेंड हो सकता है। तो भाई, हम बेसिकली यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट को रीड कर रहे हैं एक बेंड रे ऑफ लाइट के थ्रू। और साथ ही आपको बताए, सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ साइंस का टूल नहीं है, ये आर्ट का मीडियम भी है। एक तरफ ये हमें हार्ड डाटा और मेजरमेंट्स देता है, जैसे डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट और मास और ग्रेविटी के मैप्स, और दूसरी तरफ ये हमें यूनिवर्स को एक पेंटिंग की तरह दिखाता है जहाँ लाइट कर्व स्ट्रोक्स बनाती है, गैलेक्सीज ट्विस्ट और मैग्निफाई होती हैं, और हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक यूनिक ब्रश स्ट्रोक का काम करता है। जरा सोचिए, आप टेलीस्कोप से यूनिवर्स देख रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक कॉस्मिक मास्टरपीस एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, शायद एक दिन हम कह सके कि हमने सिर्फ यूनिवर्स को देखा नहीं, हमने उसे समझा भी है। हर डिस्कवरी एक नई इनसाइट, एक नई स्टोरी और एक नई कहानी हमारे सामने लेकर आती है। ग्रेविटेशन लेंसिंग ने हमें ये दिखाया है कि लाइट सिर्फ सीधी लाइन में नहीं चलती, वो कहानियों के रास्ते भी मोड़ सकती है। और शायद इसीलिए साइंस इतनी ब्यूटीफुल लगती है भाई, क्योंकि हर नई डिस्कवरी एक सरप्राइज, एक सेंस ऑफ वंडर हमारे सामने खोलती है। साथ ही फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एडवांस टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस के साथ हम यूनिवर्स के सबसे डिस्टेंट और प्योर स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे गैलेक्सीज इंटरैक्ट करती हैं और कैसे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर बेंड रे ऑफ लाइट एक मैसेज लेकर आती है साथियों, और हम बस उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साथियों, आज हमने ये जाना कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमेना नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन और आर्टिस्टिक विंडो है। ये हमें यूनिवर्स के हिडन कॉर्नर्स, अनऑब्जर्व्ड स्टार्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज तक ले जाती है, और साथ ही साथ हमारी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सपेंड करती है। हर बेंड और ट्विस्टेड लाइट हमारे लिए एक कॉस्मिक स्टोरी, एक मिस्ट्री और एक पॉसिबिलिटी लेकर आती है। तो साथियों, आज हमने बात की एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो पहले सिर्फ थ्योरी था और अब रियलिटी का हिस्सा बन चुका है, यानी ग्रेविटेशन लेंसिंग। इस फिनोमेना ने हमें ये दिखाया कि लाइट भी एक ट्रैवलर है, कभी सीधी कभी उलझी हुई, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचती हुई। साथियों, जैसे यूनिवर्स के हर राज को एक्सप्लोर करने के लिए लाइट यहाँ वहाँ सफर कर रही होती है ना, वैसे ही हमारी क्यूरियोसिटी हमें नए होराइजन की तरफ ले जाती है। और साथियों, इस सफर में हम एक और चीज जरूर महसूस करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत। और इंसान आखिर में यही कहता है कि सुभान अल्लाह, हर बेंड रे, हर शाइनिंग स्टार और हर मैग्निफाइड गैलेक्सी एक सबूत है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को जिस परफेक्शन और ब्यूटी के साथ बनाया है वो वाकई में लाजवाब है। और सबसे जबरदस्त बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को भी ये एबिलिटी दी है कि हम इस खूबसूरत क्रिएशन को एक्सप्लोर कर सकें, समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। साथियों, आइंस्टाइन की इक्वेशंस से लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक इंसानी क्यूरियोसिटी ने साबित किया है कि जब हम सवाल करते हैं ना क्यों, तो यूनिवर्स जवाब देती है, जैसे कि वो कह रही हो कि देखो जरा मैं क्या हूँ और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जरा सोचिए, ये जो बेंड और मैग्निफाइड लाइट हमारी आंखों तक आती है, ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है बल्कि अल्लाह के डिजाइन और विजडम का एक आईना है। हर ट्विस्टेड लाइट हमें यूनिवर्स के हिडन ट्रेजर्स और मिस्ट्रीज दिखाती है, और हर ऑब्जर्वेशन हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इतनी नॉलेज और इंटेलेक्ट दी है कि हम अपने आसमान और स्पेस को समझ सकें। भाई सुभान अल्लाह। तो भाई, आज की बात सिंपल है, हर चीज जो आपको इम्पॉसिबल लगे वो शायद सिर्फ एक नए नजरिए से देखी जा सकती है। जैसे लाइट बेंड होती है और नए पैटर्न्स क्रिएट करती है, वैसे ही जिंदगी के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी एक न्यू पर्सपेक्टिव से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर लाइट झुक कर ब्यूटी और इनसाइट्स क्रिएट कर सकती है, तो भाई हम अपनी सोच और अप्रोच क्यों नहीं बदल सकते भाई। और साथियों, ग्रेविटेशन लेंसिंग सिर्फ साइंस का टूल नहीं, ये कुदरत के आर्ट का कॉम्बिनेशन भी है। ये हमें डाटा और मेजरमेंट्स देता है, जैसे डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट और मास और ग्रेविटी के मैप्स। साथ ही ये हमें यूनिवर्स को एक कॉस्मिक पेंटिंग की तरह दिखाता है, जहां लाइट कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाती है, गैलेक्सीज ट्विस्ट और मैग्निफाई होती हैं, और हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक यूनिक ब्रश स्ट्रोक का काम करता है। साथियों, ये सब सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत से मुमकिन हुआ है। हमारे पास नॉलेज और इंटेलेक्ट है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, और हम इस कुदरत को समझकर और अप्रिशिएट कर सकते हैं। हर बेंड लाइट, हर शाइनिंग स्टार और हर गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया और यूनिवर्स को जिस परफेक्शन और ब्यूटी के साथ क्रिएट किया है वो वाकई में लाजवाब है। तो साथियों, आज हमने बहुत कुछ जाना बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में। याद रखिए, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, स्टार्स की ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं और यूनिवर्स के वंडर्स इमेजिन करते हैं, ये सिर्फ साइंस का मैजिक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और नेमत का सबूत है। हर बेंड रे ऑफ लाइट, हर शाइनिंग स्टार और हर गैलेक्सी हमें ये बताती है कि दुनिया और स्पेस की कुदरत कितनी जबरदस्त है। सुभान अल्लाह। तो भाई, ये था हमारा आज का एपिसोड एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के नुमाया स्क्वाश प्लेयर्स में से एक अब्दुल्ला अल मुतावा के बारे में। दोस्तों अब्दुल्ला अल मुतावा जो है टॉप प्लेयर्स में, कतर में टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल स्क्वाश टीम की अहम शख्सियत रहे हैं। उन्होंने कम उम्र से ही स्क्वाश खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कतर की जानिब कई मकामी और बैन अवकामी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। उनका मकसद हमेशा कतर का परचम बुलंद करना और स्क्वाश कोर्ट में मुल्क की पहचान मजबूत बनाना रहा है। अब्दुल्ला अल मुतावा ने जीसीसी चैंपियनशिप्स, अरब चैंपियनशिप्स और एशियन स्क्वाश टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की है।

0: आज अब्दुल्ला अल मुतावा कतर के उन एथलीट्स में शुमार होते हैं जो स्क्वाश को मुल्क में मजीद मकबूल बनाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उनका सफ़र नए खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई है और उम्मीद की जाती है कि वो मुस्तकबिल में भी कतर के लिए मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि हम अपनी समात को लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ज्यादा शोर वाली जगहों पर एयर प्लग या कानों के हिफाजती आलात जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, तामीराती मुकाम या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां मुसलसल शोर हो, तो हिफाजती हदायात पर ज़रूर अमल कीजिए। बच्चों को भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मोबाइल, टैबलेट्स या वीडियो गेम्स इस्तेमाल ना करने दें। कान साफ करने के लिए रुई की जो एक पतली सी तीली होती है या कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर ना डालिए, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कान में दर्द हो, रतूबत हो या अचानक कम सुनाई देना शुरू हो जाए या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो खुद से कोई भी इलाज करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग भी वक्त के साथ साथ समात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और जो सिगरेट से परहेज़ है, ना सिर्फ दिल बल्कि कानों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। बुज़ुर्ग अफराद और शोर वाले माहौल में काम करने वाले अफराद को वक्तन फ़वक्तन अपनी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, पानी हमारी जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत है, ये हम सबको पता है। खास तौर पर गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम सबको ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऑफिस हो, स्कूल हो, जिम हो, ट्रैवल हो, भाई कहीं पर भी हो, पानी की बॉटल हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि गर्मियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी पीने की हमारी आदत का एनवायरनमेंट पर भी असर होता है? जी हाँ, होता है। एक बार इस्तेमाल होने वाली वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, जो आप दुकान से खरीद लेते हैं, उसकी अननेसेसरी पैकेजिंग और पानी का वेस्ट, ये सब मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना आज हम इको स्विच में इसी के बारे में बात कर लें, यानी सस्टेनेबल हाइड्रेशन हैबिट्स, यानी पानी पीने की ऐसी आदतें जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाए। देखिए, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइड्रेशन जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। ऐसा तो नहीं कि रूखे सूखे पत्ते की तरह हम घूमते रहें, लेकिन जिस तरीके से हम पानी को कंज्यूम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए, सबसे पहला और मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने पता है क्या देखा है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हम अक्सर एक बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और फिर क्या करते हैं, वो बॉटल कहाँ गई? ये गई डस्टबिन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा पानी को बेवजह वेस्ट करना, जरूरत से ज्यादा बॉटल्ड ड्रिंक्स खरीदना, रीयूजेबल ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, ये सब छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन जब बहुत से लोग रोजाना ऐसी हरकतें करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है भाई। देखिए, पानी बहुत कीमती रिसोर्स है, इसलिए हमें सिर्फ पानी पीना नहीं है बल्कि उसकी कदर भी करनी चाहिए। हर घूंट के साथ एक कदर होती है भाई, हर घूंट की। तो भाई, इको स्विच सॉल्यूशन हमारे पास सस्टेनेबल हाइड्रेशन के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो हम सभी एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेंगे। पहली चीज ये कि रीयूजेबल वाटर बॉटल अपनाएं। सबसे आसान इको स्विच ये है कि अपनी रीयूजेबल बॉटल साथ रखें। स्टेनलेस स्टील हो गया या ड्यूरेबल बॉटल्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट इससे बहुत कम हो सकता है। दूसरी चीज ये कि बॉटल रिफिल करने की आदत अपनाएं। जहां पानी रिफिल की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहां नई बॉटल खरीदने के बजाय अपनी बॉटल को दोबारा रिफिल करें। ये सिंपल सी हैबिट होती है और अगर आप इसे रोजाना के तौर पर या हर टाइम रिफिल के तौर पर आप ये चीज अपनाएंगे तो इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज है, पानी वेस्ट ना करें। देखिए, सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि घर के तमाम कामों में पानी की कदर करना सीखें। अपने ग्लास में उतना ही पानी डालें जितने की जरूरत हो, बचा हुआ पानी आप प्लांट्स को दे सकते हैं या किसी और दूसरी तीसरी चीज में उसको स्टोर करके रखें और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है उसे। ऐसा नहीं है कि बचा हुआ पानी आप सिंक में फेंक दें। साथियों, चौथी चीज ये कि घर में पानी की बॉटल रेडी रखें। अगर घर से निकलते वक्त बॉटल साथ हो तो बाहर से प्लास्टिक बॉटल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आदत ट्रैवलिंग और डेली रूटीन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को पानी की कदर करना सिखाएं। बचपन से ही अगर बच्चों को पानी बचाने की या रीयूजेबल बॉटल्स यूज करने की आदत होगी ना, तो ये उनकी जिंदगी भर की हैबिट्स को अच्छा बना सकती है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आजकल बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में सस्टेनेबल हाइड्रेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज अपनी डेस्क पर रीयूजेबल बॉटल्स रखते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में अपनी वाटर बॉटल्स लेकर जाते हैं, फैमिलीज घर में रीयूजेबल बॉटल्स का सिस्टम बनाती हैं ताकि हर बार डिस्पोजेबल बॉटल्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। जरा सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ एक बॉटल पानी रोजाना कम यूज करे तो साल भर में कितना फर्क पड़ेगा भाई, लाखों करोड़ों। तो भाई, छोटी सी आदत लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज हमारा ये है कि अगले 7 दिन के लिए कोशिश करें कि बाहर जाते वक्त मेहरबानी करके अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल अपने साथ रखें ना, और हमें ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट वाटर बॉटल कौन सी है, स्टील बॉटल, ग्लास बॉटल या कोई कलरफुल रीयूजेबल बॉटल। मुझे तो वो स्टील वाला फ्लास्क अच्छा लगता है, उसके अंदर गर्म डालो गर्म रहता है, ठंडा डालो ठंडा रहता है। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, पानी की हर बूंद कीमती है और हर छोटी आदत एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aaj ka topic hai saada zindagi guzarne ki ahmiyat. Saada zindagi guzarne ka matlab ye nahi कि इंसान कुछ हासिल ना करे बल्कि ये है जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया जाए। अक्सर हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि इसी में खुशी है, लेकिन असल सुकून सादगी में होता है। इस्लाम हमें एतदाल और सादगी का दर्ज देता है। जब इंसान सिंपल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करता है तो उसका फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर होता है, जैसे इबादत, रिश्ते और इनर पीस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन स्ट्रेस का सबब बन जाते हैं, जबकि साथ ये सुकून देती है। आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी में से किसी एक अननेसेसरी चीज को कम करें और सिंपल सोच को अपनाएं। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107।

0: 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइंग कार्स एंड हाइपरलूप। देखिए, आज की दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रोजाना लाखों लोग कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स के जरिए अपना सफर तय करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के कई चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ट्रांसपोर्टेशन के नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप का। जी हाँ, फ्लाइंग कार्स एक ऐसे व्हीकल हैं जो रोड पर ड्राइव भी कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ सकती हैं। इनमें एडवांस इलेक्ट्रिक इंजन, AI सिस्टम और स्मार्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। कई कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और कुछ प्रोटोटाइप्स टेस्ट भी किए जा चुके हैं। यहाँ फ्लाइंग कार्स का सबसे बड़ा मकसद ट्रैफिक लोड को या ट्रैफिक कंजेशन को कम करना है और सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाना है। सोचिए, अगर आपको ऑफिस पहुँचने के लिए रोड ट्रैफिक में एक घंटा लगता है, तो फ्लाइंग कार शायद आपको 15-20 मिनट में आपकी मंजिल तक पहुँचा दें। वहीं हाइपर लूप क्या है? देखिए, हाइपर लूप एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें स्पेशली डिजाइन कैप्सूल्स लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ये स्पीड 1000 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा हो सकती है। सुन के आपको घबराहट हुई ना? जी हाँ, हाइपर लूप को फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन और एरोप्लेन दोनों के फायदे कंबाइन करता है। इससे शहरों के, मुल्कों के दरमियान फासले बहुत कम हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज्यादा है। फ्लाइंग कार्स और हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन किया जा सकेगा। दुनिया भर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन, वक्त का जाया होना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना सिर्फ सफर को फास्ट बना सकते हैं बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बना सकते हैं। अगर सफर का वक्त कम हो जाए तो लोग अपनी फैमिली को, एजुकेशन को और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकेंगे। बिजनेस भी शायद ज्यादा इफिशेंट हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले। वैसे इसके फायदे बहुत हैं। फास्टर ट्रैवल, जो हम और आप समझते हैं, दूर का सफर घंटों में, मिनटों में कवर करना, रोड्स पर व्हीकल कम होंगे, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे। वहीं बहुत से फ्यूचर मॉडल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा। वहीं रिमोट एरियाज और दूर शहरों को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद नई इंडस्ट्रीज, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। शुरू में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे हैं। हर शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा। फ्लाइंग कार्स के लिए हवा में ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक बड़ा चैलेंज होगा। वहीं हाइपरलूप के लिए नए ट्रैक्स और टनल्स की जरूरत होगी जिस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। वहीं पर टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग स्टेज में है और कई टेक्निकल मसाइल भी सॉल्व करना बाकी होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट्स को नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। वैसे फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप हमारी ट्रैवलिंग हैबिट को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ऑफिसेज दूर होने के बावजूद लोग आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की स्मार्ट सिटीज और ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगी। टाइम बचने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करे। तो देखिए, फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है बल्कि अब मुस्तकबिल की हकीकत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन टेक्नोलॉजीज में कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं लेकिन उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। अगर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाते हैं तो आने वाले सालों में सफर ज़्यादा फास्ट होगा, सेफ होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है। मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मंजिल तक पहुँचाने के जरिए नहीं होंगे बल्कि वो दुनिया को पहले से ज़्यादा कनेक्टेड और इफ़िशेंट बना देंगे। व्हाट डू यू से? अभी के लिए इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
0: One step to 2030. आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.
3: हाँ.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको आजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आए। हर आजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही के हम उन पर से आजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रौ और नमूना इबरत बना कर रख दिया।

और जूं ही कि इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं। हकीकत ये है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ न था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए उसे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हों, और वो यानी इब्ने मरियम दरअसल कयामत की एक निशानी है। बस तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा ना हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरीह निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी इस साफ तालीम के बावजूद ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया। पस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के आज़ाब से।

क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और जमीन का फरमारवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा, और वही हकीम व आलीम है, बहुत बाला तर है वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन व आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है, और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफाअत का इख्तियार नहीं रखते, इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल के इस कौल की कि ऐ रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अच्छा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा।

ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। ये बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग? हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी हैं। इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा और न कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे। वो जबरदस्त और रहीम है। जक्कूम का दरख्त गुनाहगार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा। पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगेड़ते हुए ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच और उंडेल दो इसके सर पर खौलते हुए पानी का आजाब। चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू। ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान और हम गोरी गोरी आहू चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। वहां मौत का मजा वो कभी न चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से उनको जहन्नुम के आजाब से बचा देगा। यही बड़ी कामयाबी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारी जबान में सहल बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी इंतजार करो, ये भी मुंतजर हैं।